सुप्रभात 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026 प्रातः के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। जीवन स्वरूप कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:10 से। आज आप सुनेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सूक्त 6 का वाचन। सुबह 7:20 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम। 8:00 आप सुनेंगे वतन का राग। कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पंडित हरिभाऊ उपाध्याय पर। सुबह 8:30 पर आमने सामने में आज आप सुनेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पर विषय विशेषज्ञ अविरल पवार से वार्ता। वागर्थ कार्यक्रम में सुबह 9:00 आप सुनेंगे रश्मि शर्मा का काव्य पाठ। 9:30 पर होगा कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज बात होगी प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र पर। 10:00 आप सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट में स्वर उत्सव और साथ ही साथ कार्यक्रम परिक्रमा। 10:30 पर हिंदुस्तान हमारा, जिसमें आज का शीर्षक भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। दिन में 11:00 कला कल्लोलिनी कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पंडित विनायक राव पटवर्धन पर। 11:30 पर होगा युग प्रवर्तक विवेकानंद। आज इस कार्यक्रम का 30वां भाग हम प्रसारित करेंगे। और श्रोताओं, आज है रक्षाबंधन का पर्व, आप सभी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है इच्छा शक्ति की ताकत। विकास एक सामान्य परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसके सामने बड़े सपने थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो महंगी पढ़ाई कर सके। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे ताकि विकास की पढ़ाई में मदद कर सकें। एक दिन विकास के स्कूल में टॉपर बच्चों को पुरस्कार देने का कार्यक्रम था। सब बच्चे और उनके माता पिता इकट्ठे हुए थे। जब विकास का नाम नहीं आया तो वो बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन बनाया कि वो और मेहनत करेगा और अगले साल टॉप करेगा। उसने खुद को दिन रात पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। कभी कभी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो लाइब्रेरी की मदद ले लेता था। दोस्तों के साथ खेलकूद भी कम कर दिया ताकि टाइम मैनेजमेंट कर सके। संघर्ष की ये राह बहुत कठिन थी, लेकिन विकास की आंखों में अपने सपने की चमक कभी कम नहीं हुई। अगले साल जब विद्यालय के पुरस्कार समारोह में उसका नाम टॉप पर आया तो सभी चकित रह गए। उसके माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। विकास ने साबित कर दिया कि तमाम मुश्किलों के बावजूद यदि मन में ठान लो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आज विकास एक प्रसिद्ध डॉक्टर है जो अपने गांव सहित आसपास के इलाकों के हजारों लोगों की सेवा करता है। उसकी कहानी से यही संदेश मिलता है कि हिम्मत और मेहनत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, जहां से हर कहानी आपके दिल तक जाती है। जीवन सौरभ।
0: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के छठवे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं सोमाहूति भार्गव, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री।
3: इमाम में अग्ने समिध मीमा मुपसदम वने हैं इमा उशुश्रुधि गिरह। हे अग्निदेव, आप हमारी इन समिधाओं तथा आहुतियों को स्वीकार करते हुए हमारे स्तोत्रों को भली भांति सुने। आयाते अग्ने विधे मोर्जो नपादश्वमिष्टे एना सूक्तेन सुजात। हे शक्ति को क्षीण न करने वाले, द्रुतगामी, साधनों में गति प्रदान करने वाले, उत्तम ख्याति वाले अग्निदेव, हमारी इस यज्ञ क्रिया तथा सूक्त से आप प्रसन्न हो। तम त्वा गीर्भिर् गिर्वर्णसम द्रविणस्युम द्रविणोदह सपर्येम सपर्यवह। हे ऐश्वर्य प्रदाता अग्निदेव, आपकी प्रतिष्ठा चाहने वाले हम आपके स्तुत्य तथा धन प्रदान करने वाले स्वरूप की स्तुतियों के द्वारा पूजा करते हैं। सबोधि सूरिर मघवा वसुपते वसुदावन युयोध्यस्मद द्वेषांसी। हे ऐश्वर्य प्रदाता धनाधिपति अग्निदेव, आप ऐश्वर्यवान तथा ज्ञानवान होकर हमारी कामनाओं को जानते हुए द्वेष करने वाले हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करें। स नो वृष्टिम दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम स नह सहस्रीणी ऋषः। अंतरिक्ष से वे अग्निदेव हमारे लिए वृष्टि करें, वे हमें श्रेष्ठ बल तथा हजारों प्रकार का अन्न प्रदान करें। ईडा नायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा यजिष्ठ होतरा गहि। बलशाली तथा अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुष्टों को पीड़ित करने वाले होता रूप हे अग्निदेव, आपके संरक्षण की कामना से स्तोत्र रूप वाणियों से हम आपका पूजन करते हैं, अतः आप हमारे पास आएं। अंतर यज्ञ ईयसे विद्वान जन्मो भया कवे दूतो जन्येव मित्र्यः। हे मेधावान अग्निदेव, आप मनुष्यों के हृदयाकाश में विद्यमान रहकर उनके दोनों वर्तमान तथा पिछले जन्मों को जानते हैं। आप मित्र तुल्य सभी के हितकारी हैं। स विद्वां अच पिप्रयो यक्षी चिकित्व आनुषक आ चास्मिन सत्सी बरिहिषि। हे अग्निदेव, आप ज्ञानी हैं, अतः हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। आप चैतन्यता युक्त हैं, अतः हमारे हविष्यान्न को यथा क्रम से देवताओं तक पहुंचाकर हमारे इस यज्ञ में प्रतिष्ठित हों।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के छठवें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
0: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ईश्वर वो अनुभूति है जो हमें तब होती है जब हमें सब छोड़ देते हैं, किंतु फिर भी हमारे भीतर से एक आवाज आती है कि मैं हूं ना। ईश्वर हमारे अंतस में विराजमान सबसे पवित्रतम

ईश्वर क्या है, उसकी अनंत परिभाषाएं हैं। जब हम बिना स्वार्थ किसी के लिए मदद करते हैं तो वो ईश्वर है। जब हम दुख में भी किसी को क्षमा करना चाहते हैं या क्षमा कर देते हैं, वो भी ईश्वर है।

ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, वो हमारी ही आत्मा का सबसे साफ प्रतिबिंब है, जिसे हम प्यार, करुणा और शांति के रूप में अनुभव करते हैं।

क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अतएव आप ही हमें रास्ता दिखाइए, हमारे मन को शांत करिए, हमें इतनी ताकत दीजिए कि हम अंदर से टूटे नहीं। सबका भला करिए जो हमें सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं।

श्रोताओं, हम अपने जीवन में अपने सिर पर भारी घड़ा लेकर चलते हैं, अपनी परिस्थितियों का, अपने संघर्षों का, अपनी विपदाओं का। लेकिन इस घड़े को छोड़ने का मतलब घड़ा फेंकना नहीं है, बल्कि इस घड़े को अपने आराध्य को पकड़ा देना है, ताकि हम हल्के होकर

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.5 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।
2: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
3: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
4: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
3: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
4: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
3: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

किसी भी राष्ट्र का इतिहास केवल युद्धों और तारीखों से नहीं बनता, वो बनता है उन लोगों से जिन्होंने अपने समय की आवाज सुनी और अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महान राष्ट्रसेवी थे पंडित हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने अपने शब्दों से जागरण का बीज बोया, गांवों में स्वावलंबन का सपना जगाया, खादी में अपना आत्मसम्मान संजोया और गांधी दर्शन को अपने जीवन का पथ बनाया। साहित्य से स्वाधीनता तक, पत्रकारिता से जनसेवा तक और गांधी जी के सानिध्य से राष्ट्र निर्माण तक उनकी पूरी जीवन यात्रा भारत को बेहतर बनाने की यात्रा थी। पंडित हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 24 मार्च सन 1892 को उज्जैन के पास स्थित भमरासा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सिद्धनाथ उपाध्याय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई और उसके बाद आगे की शिक्षा उज्जैन में हुई। वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के स्वाध्यायी छात्र थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों और हिंदी साहित्य से भी गहरा अनुराग था। उनकी शिक्षा में डॉक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर का विशेष योगदान था और फिर यही रास्ता उन्हें हिंदी साहित्य के उस विराट व्यक्तित्व तक ले गया जिनका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहीं से हरिभाऊ उपाध्याय के जीवन ने कलम को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया, उन्होंने यहीं से समाज निर्माण का दायित्व भी ग्रहण किया। उनकी शिक्षा जारी थी तभी उन्होंने औदुम्बर नामक मासिक पत्र के संपादन का दायित्व संभाला। इस तरह सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश राजनीति के माध्यम से नहीं बल्कि पत्रकारिता और साहित्य सेवा से हुआ। इसे ही उन्होंने भारत माता की सेवा का माध्यम बनाया।

औदुम्बर पत्रिका ने ही हरिभाव उपाध्याय को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तक पहुंचाया। सन 1915 में वो द्विवेदी जी के संपर्क में आए और प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में काम किया। सरस्वती के बाद उनका संबंध गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप से हुआ। वो प्रभा से भी जुड़े और आगे चलकर गांधी जी के हिंदी नवजीवन के संपादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह एक पत्रकार से एक राष्ट्र सेवक की उनकी यात्रा आरंभ हुई। पंडित हरिभाव उपाध्याय के जीवन पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने स्वयं लिखा है कि गांधी जी को उन्होंने पहली बार सन 1915 में लखनऊ अधिवेशन में देखा था और उस पहली झलक ने ही उनके भीतर जैसे बहुत कुछ बदल दिया। इसके बाद चंपारण से लौटते हुए गांधी जी को उन्होंने कानपुर में देखा। उनकी सादगी, सहजता और तेज ने हरिभाव उपाध्याय को भीतर तक प्रभावित किया और जब इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने गांधी जी को देखा तब तक ये आकर्षण श्रद्धा में बदल चुका था। सन 1921 में जब हरिभाव उपाध्याय की भेंट मुंबई में गांधी जी से हुई तब वो एक पत्र निकालना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उनके भीतर एक व्यापक संभावना देखी, हिंदी में गांधी जी के विचारों को जनता तक पहुंचाने की संभावना। इस तरह पंडित हरिभाव उपाध्याय का जीवन गांधी आश्रम की ओर मुड़ चला। उन्होंने यंग इंडिया और गुजराती नवजीवन को हिंदी में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हिंदी नवजीवन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन पर गांधी जी का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक तौर पर भी हुआ। सत्य, अहिंसा और खादी के विचार उनके भीतर गहरे उतरते चले गए और वो स्वयं को अहिंसक सेवा का सिपाही मानने लगे। गांधी जी के संपर्क ने उनके भीतर ये विश्वास पैदा किया कि स्वराज केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति का नाम नहीं है। स्वराज का अर्थ है कि गांव अपने पैरों पर खड़े हों, किसान अपने श्रम का सम्मान पाएं, स्त्री शिक्षा पाए, अस्पृश्यता छूटे, युवा चरित्रवान बने, खादी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने और साहित्य जनता की चेतना को जगाए। गांधी जी के निर्देश पर हरिभाव उपाध्याय ने अजमेर को अपनी कर्म भूमि चुना। हटुंडी में उन्होंने गांधीवादी कार्यों का केंद्र विकसित किया। सन 1927 में यहां गांधी आश्रम की स्थापना हुई। ये आश्रम केवल भवन नहीं था, ये विचारों की प्रयोगशाला था। यहां खादी, सेवाग्राम, सामाजिक सुधार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किए गए। महिला शिक्षा पर जोर देते हुए हरिभाव उपाध्याय ने हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। बिजौलिया मेवाड़ का वो क्षेत्र था जहां किसान लंबे समय से करों और विभिन्न प्रकार के शोषण से परेशान थे। विजय सिंह पथिक ने किसानों को संगठित किया था। ये आंदोलन लंबा चला। बिजौलिया किसान आंदोलन में आगे चलकर हरिभाव उपाध्याय भी किसानों के बीच पहुंचे। जमनालाल बजाज के साथ उन्होंने ऊपरमाल क्षेत्र के किसानों के प्रश्नों को समझा और समाधान का प्रयास किया। उनका रास्ता सत्य, अहिंसा, संवाद और न्याय का रास्ता था। ये गांधी जी का रास्ता था।

पंडित हरिभाव उपाध्याय ने सरस्वती, प्रताप, प्रभा, हिंदी नवजीवन और त्याग भूमि जैसे पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य तो किया ही, उनका एक और महत्वपूर्ण कार्य था सस्ता साहित्य मंडल। जमुना लाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला, हरिभाव उपाध्याय और उनके अन्य सहयोगियों ने उच्च स्तरीय राष्ट्रीय साहित्य को सामान्य जनता तक सस्ते मूल्य में पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। सन 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, परिणाम स्वरूप वो गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो गिरफ्तार हुए। इसी तरह इंदौर मजदूर आंदोलन और राजस्थान के विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। उनका एक और बड़ा योगदान था साहित्य को समाज की शक्ति बनाना। पंडित हरिभाव उपाध्याय मूलतः साहित्यकार थे, राजनीति उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है राष्ट्र सेवा, लेकिन साहित्य उनकी आत्मा में था। उनकी भाषा में अनावश्यक आडंबर नहीं था, उनकी भाषा सरल और प्रांजल थी, जिसमें विचारों की स्पष्टता थी, साथ ही जीवन के अनुभवों से निकली हुई संवेदना भी थी। उनकी रचनाओं में गांधीवाद केवल सिद्धांत के रूप में नहीं आता, वो जीवन की साधना बनकर आता है। साधना के पथ पर इस पुस्तक में अहिंसा के अनुभव हैं, गांधीवादी जीवन का स्पर्श करती उनकी किताब है बापू के आश्रम में। सर्वोदय की बुनियाद इस किताब में समाज के सर्वांगीण विकास की चिंता है और उनकी कृति स्वतंत्रता की ओर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करती है। भागवत धर्म, मनन, पुण्य स्मरण, दूर्वा दल, प्रियदर्शी अशोक, हमारा कर्तव्य और युगधर्म जैसी कृतियों में उनके विचारों की विविध दिशाएं दिखाई देती हैं। लेखन के साथ साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद भी किया, जिसमें गांधी जी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद भी शामिल है। पंडित हरिभाव उपाध्याय ने महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हटुंडी में स्थापित गांधी आश्रम के अंतर्गत उन्होंने जिस महिला शिक्षा सदन की नींव रखी थी, वो नारी शिक्षा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यहाँ लड़कियों को न केवल किताबी ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें खादी, कताई, बुनाई, गृह विज्ञान, हस्तशिल्प, संगीत, प्राथमिक चिकित्सा और गांधीवादी जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ से निकली महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम, शराबबंदी अभियानों और अन्य समाज सुधार आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सन 1952 में वो अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने और प्रशासन को गांधीवादी दृष्टि से जनसेवा का माध्यम बनाया। 1956 में अजमेर राज्य राजस्थान में विलीन हो गया। इसके बाद भी उन्होंने शिक्षा, पंचायत, खादी एवं ग्रामोद्योग, सामुदायिक विकास और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में विशेष कार्य किए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक वो साहित्य सृजन करते रहे तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वो लेख लिखते रहे। सन 1966 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 25 अगस्त सन 1972 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आमने सामने। आप सभी का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
0: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन यानी आपस में बातचीत करना, और स्किल यानी प्रभावी तरीके से, जिसे हम संचार कौशल कहेंगे। श्रोताओं, अपने विचारों, भावनाओं को या किसी सूचना को दूसरों तक प्रभावी ढंग से कहना, अपनी बात को रखना एक बड़ी कला है, ताकि सामने वाला आपकी बात को सुने और समझे। कई बार हम अपनी बात तो कह देते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो कार्यक्रम में आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं कि अपनी बात की बात कैसे बने। श्रोताओं, हमारी बातचीत में बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं, हमारे शब्द स्पष्ट हैं या नहीं, हमारी भाषा, हमारा लहजा कैसा है, समय, परिस्थिति, सामने वाले की मानसिक अवस्था, इतनी सारी चीजों का भी ध्यान तो रखना पड़ता है ना। तो आज कम्युनिकेशन स्किल पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत स्टोरी टेलर के फाउंडर श्री अविरल पवार। सर नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके शब्दों में कम्युनिकेशन स्किल को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे।
2: कम्युनिकेशन स्किल, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ
1: जी,
2: और बेहद सरल भाषा में अगर मुझे उसे परिभाषित करना हो, तो मैं कहूँगा अपनी बात एक बेहतर ढंग से और प्रभावशाली ढंग से अगले व्यक्ति तक पहुँचाना
1: जी,
2: इसको मैं कम्युनिकेशन स्किल मानता हूँ
1: जी।
2: उसके बहुत सारे पहलू हैं, बट सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल का, वह यह है कि क्या जिससे आप बात कर रहे हैं वह आपको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है
1: जी।
2: अगला व्यक्ति आपको ठीक से समझ पा रहा है, वो आपकी बात को समझ पा रहा है और आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है
1: जी।
2: तो मेरे लिए आसान सरल भाषा में अपनी बात को कहने की क्षमता को मैं कम्युनिकेशन स्किल मानता हूं।
1: सर, कहते हैं ना कि जितना हम बोलते हैं उतना ही ध्यान से, धैर्य से हमें सुनना भी चाहिए, ये भी एक व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना कितना जरूरी है?
2: मुझे लगता है कि जितना ध्यान से बोलना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना। तो हम भी अपने सेशंस में और कार्यक्रमों में हम इस बात पे बहुत अधिक जोर देते हैं कि हमें लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी है
1: जी।
2: और लिसनिंग को मैं एक आर्ट मानता हूँ, ध्यान से सुनना भी एक कला है।
1: बिल्कुल।
2: अक्सर जो लोग सुनते हैं वे आपको रिएक्ट करने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं। ठीक है, मैं सुन तो रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में एक दूसरी बात, जिस बात से मैं आपकी बात को काटूंगा, वो मेरे दिमाग में पहले ही चलती रहती है। तो अगर आप इस भावना के साथ अगर आप सुन रहे हैं, तो फिर उसे ध्यान से सुनना नहीं कहेंगे
1: जी।
2: और ये एक ध्यान से सुनना मुझे लगता है कि एम्पैथी का भी एक बहुत बड़ा, मैं इसको एलिमेंट मानता हूँ, कि अगर आप तब तक किसी से एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको ठीक से सुनेंगे नहीं। तो सुनना बेहद जरूरी है, ध्यान से सुनना। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से सुन नहीं पाता और सिर्फ धारा प्रवाह बोलने की क्षमता रखता है
1: जी,
2: तो मैं उसको एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं मानूंगा, क्योंकि आपके साथ कम्युनिकेशन फिर पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। अगर आप बोल रही हैं और मैं आपको बिना सुने सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश करूं, या मैं आपका प्रश्न ठीक से ना सुनूं और जो मेरे मन में है सिर्फ वही बोलता रहूं, तो फिर मैं भले ही कितनी अच्छी भाषा में बोलूं, कितने ही सुंदर शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं कहलाऊंगा, मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं बन पाऊंगा अगर मैं ठीक से सुनूं नहीं।
1: बिल्कुल।
2: तो सबसे जरूरी मैं तो मानता हूँ कि जितना बोलना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा सुनना जरूरी है। और हम तो अपनी ट्रेनिंग्स में भी ये कहते हैं कि अपनी भाषा को कम से कम शब्दों में कहने के लिए आपको ठीक से सुनना भी जरूरी है।
1: सर, हमारे समाज में अक्सर होता ही है कि हम शब्दों की ओर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान अक्सर कम ही जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बोलते वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज की कितनी भूमिका रहती है?
2: देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक वाइटल एलिमेंट, मैं कहूँगा एक बेहद जरूरी हिस्सा है कम्युनिकेशन का
1: जी,
2: क्योंकि आपकी बॉडी झूठ नहीं बोलती। आप अपने शब्दों से,
1: जी
2: बोल सकते हैं,
1: जी जी
2: आप किसी की झूठी तारीफ कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको आप झूठा नहीं कर सकते। मतलब हम अपनी ट्रेनिंग्स भी देते हैं कम्युनिकेशंस पब्लिक स्पीकिंग की, तो हम कहते हैं कि ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि जब आप बोलें तो आपके हाथ खुले हों, आप हाथ को बांध करके ना बैठें, या क्लैस्प करना जिसको कहते हैं हाथों को, या मुट्ठी बांधना, या हम क्रॉस आर्म होकर बैठ जाते हैं। तो जब भी हम मंच से बोलें या हम किसी से बात करें तो कहा जाता है कि ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ओपन इसलिए होनी चाहिए, अब मैं आपको इसका ऐतिहासिक पहलू बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पुराने जमाने में जब इतनी सुरक्षा नहीं होती थी, मैं कई हजार साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है, तब जब अपने दोस्तों से मिलते थे तो खुले हाथों से मिलते थे, खुली बाहों से आप मिलते थे। क्यों मिलते थे? आपके उस मित्र को या आपके उस साथी को ये बताने का तरीका होता था कि मैंने कोई हथियार नहीं छुपाया है, कि अगर मैं हाथ पीछे करके आपसे मिल रहा हूँ तो हो सकता है कि मैंने कोई हथियार छुपाया हो।
1: जी।
2: तो आज भी हमारी साइकोलॉजी में, हमारी साइकी में वो बात हमारे जहन में है कि अगर हम किसी को देखते हैं कि वो खुले हाथों से, खुले बाहों से हमसे मिल रहा है, तो हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए भी
1: जी
2: हमें ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसलिए आप किस तरह से स्टेज पे खड़े हैं, भले स्टेज नहीं, अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, आपके प्रश्नों के क्या उत्तर दे रहा हूँ, उसमें मेरे चेहरे के हाव भाव क्या हैं, तो ये सारी बातें बेहद जरूरी है। और बॉडी लैंग्वेज पे बिना ध्यान दिए कोई अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाएगा। तो ये एक और लिसनिंग के बाद मैं लगता है कि दूसरे नंबर पे मैं बॉडी लैंग्वेज को रखूंगा कि आपके क्या हाव भाव हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या जेस्चर्स हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं।
1: सर, जैसे आपने विश्वसनीयता की बात की कि खुले हाथों से मिलना जो है वो विश्वसनीयता को दिखाता है, हमारे आपस का जो विश्वास का भाव है, भरोसा है, हमें इंडिकेशन देता है। अब बॉडी लैंग्वेज में अगर हम गहराई से बात करें तो हमारे आव भाव, हमारी भाव भंगिमाएं, आई कॉन्टैक्ट हमारे शब्दों से पहले ही बहुत कुछ कह जाते हैं, और इसी से हमारा व्यक्तित्व भी बनता है। तो व्यक्तित्व निर्माण पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखिए, व्यक्तित्व निर्माण एक बड़ी ही सूक्ष्म प्रक्रिया है
1: जी,
2: जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं देखता हूँ कि कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास हो रही है, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण कोई 2 घंटे की क्लास से नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
2: मेरा व्यक्तित्व जैसा आपके सामने है वैसा ही मेरा व्यक्तित्व हर जगह होना चाहिए, तभी वो व्यक्तित्व निर्माण होगा।
1: बिल्कुल,
2: मैं आपके सामने बेहद शालीनता से बात करूं और बाहर निकल करके मैं दंड व्यवहार करूं तो मेरा व्यक्तित्व शालीन नहीं कहलाएगा। मैंने आपके सामने कुछ देर नाटक किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: वो मेरा अभिनय था आपके सामने। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी भाव भंगिमा आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। आप किस तरह से बैठते हैं
1: जी,
2: आप किस तरह से चलते हैं सड़क पे, आपका कैसा व्यवहार है, ये सब आपके व्यक्तित्व का ही हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
2: तो इसके लिए आप 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स या 2 महीने की क्लासेस करके आप अपना व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कहा कि एक सूक्ष्म प्रक्रिया है
1: जी,
2: और आपको धीरे धीरे धीरे धीरे वो कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि जब आप खड़े हैं तो आप कैसे खड़े हैं, जब आप बोल रहे हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपकी क्या भाव भंगिमा है। और वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, सटलनेस के साथ वो ग्रेजुअली वो आपका व्यक्तित्व उस तरह से बनेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप उस पाथ पर हैं, उस पथ पर हैं कि आपका व्यक्तित्व निर्माण की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको खुद में बदलाव दिखेगा। लेकिन वो बदलाव 2 या 3 महीने का बदलाव नहीं होगा, वो कई सालों का, कई वर्षों का बदलाव होगा।
1: बिल्कुल।
2: अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिली होती तो शायद मैं किसी अलग तरीके से बात कर रहा होता, और आज से आप 10 साल बाद मिलेंगी तो हो सकता है मुझमें और भी कुछ बदलाव दिखें।
1: बिल्कुल।
2: अब वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या अपने पॉजिटिव साइड में काम कर रहा हूँ या मैं नेगेटिव साइड में काम कर रहा हूँ, तो वो दोनों ही तरफ जाना संभव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: बट वो प्रक्रिया बहुत धीरे होती ही प्रक्रिया है, और उसको आपको, क्योंकि कैरेक्टर में आने के लिए आपको टाइम लगेगा। वो कहेंगे कि हाँ 21 दिन में आपकी हैबिट बदल जाएगी, हैबिट बदलना अलग चीज होती है, कैरेक्टर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिल्कुल ही एक अलग चीज है।
1: सर, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल पर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों में उच्चारण दोष होता है, जैसे हकलाना, तुतलाना, वाचिक एक समस्या होती है, तो इस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं कि शब्द जो हमारी जुबान में अटकते हैं, फंसते हैं, जैसे कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि स को श बोलना या श को स बोलना, या नींबू शब्द को लोग लींबू बोल जाते हैं, तो ना में ल का उच्चारण होना, तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सब अलग अलग व्यक्तियों की जुबान पर दिखते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं?
2: अगर कोई ऐसी समस्या है जो सिर्फ आपको है,
1: जी जी,
2: आपके घर में 4 लोग रहते हैं और सिर्फ आपको वो समस्या है, बाकी किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या नहीं है तो फिर तो स्पीच थेरेपी और भी अन्य उपाय होंगे जो आप प्रैक्टिस करके उसको ठीक कर सकते हैं। बट मुझे कई बार लगता है कि जैसे आपने बोला कि श को स बोलना
1: जी जी।
2: या शक्कर को शक्कर बोलना, ज को ज बोलना, ये कई बार कल्चरल भी होता है।
1: जी जी।
2: जैसे मैं बालाघाट जिले से आता हूँ, वहाँ की एक अपनी भाषा शैली है
1: जी।
2: सभी लोग हिंदी बोलते हैं बट हर जगह की भाषा में अपनी अलग एक बोली और उसका एक अलग इफेक्ट रहता है।
1: बिल्कुल।
2: तो एक तो एक कल्चरल प्रॉब्लम है, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, भले ये सोसाइटी का मैं कहूंगा कि सामाजिक समस्या है।
1: जी, जी।
2: समस्या भी नहीं है, वो एक एक तरीका है, उसको समस्या कहना भी ठीक नहीं।
1: हाँ,
2: जीवन में ढल गई है।
1: जी, जी।
2: अब किसी ने बचपन से ही शक्कर को शक्कर बोला है, उसे किसी ने टोका नहीं, स्कूल को स्कूल बोला है, फिर ये है तो ये सामाजिक समस्या।
1: बिल्कुल।
2: बट ऐसी समस्या तो नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सके। पहले तो अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें कॉन्शियस होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे अंदर वो अवेयरनेस आ गई है कि मुझ में मेरे उच्चारण में यह दोष है या मुझे यह शब्द बोलने में परेशानी होती है या मैं मिस प्रोनाउंस करता हूँ या उसका उच्चारण नहीं करता ठीक से, तो मैं अपने कॉन्शियस एफर्ट से उसको ठीक करूँ।
1: बिल्कुल।
2: अभी भी मुझे कई बार षटकोण का श जो है वो मुझे समझ नहीं आता कि शक्कर के श और षटकोण के श में क्या अंतर है।
1: बिल्कुल। हाँ।
2: तो कहते हैं कि उसमें ज्यादा हवा निकलती है, उसमें कम हवा निकलती है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: बट क्या हमारे अंदर इतना ठहराव है कि हम रुक करके इस अपने इस उच्चारण दोष को ठीक कर पाए। अब दोष में भी षटकोण का श है, बट कितने लोगों से आप बात करती हैं और आपको उनके उच्चारण में दोनों श के उच्चारण में अंतर या किसको पता है? तो बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो आपको ये अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी कि हाँ मेरे अंदर ये समस्या है। उसके लिए आप खुद को रिकॉर्ड करिए, आप सुनिए और फिर देखिए कि कहाँ मुझसे क्या त्रुटि हो रही है बोलने में। दूसरा जो इसका उपाय है जो मुझे लगता है कि अक्सर हमसे गलतियां या ये उच्चारण दोष इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, हम तेजी से बोलने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम थोड़ा रुक करके पॉजेस लेकर के बोलना शुरू करेंगे, अगर हम एक वाक्य बोलने के बाद थोड़ा रुकेंगे, अपने अगले जो मन में विचार आ रहा है जो बोलना है उससे पहले थोड़ा रुक करके अगर बोलेंगे, थोड़ा धीमी गति से बोलेंगे, तो हमारे उस दोष की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी कि वो गलती करने की संभावना हमसे थोड़ी कम हो जाएगी। तो पहली बात तो अवेयरनेस, और दूसरा उपाय मुझे लगता है कि आपको थोड़ा धीमे बोलने का फिर प्रयास करना चाहिए और फिर खुद को देखना चाहिए कि क्या मुझसे इस वाक्य को बोलने में या इस शब्द को या इस अक्षर को बोलने में कुछ गलती हो रही है। तो इस तरह से उच्चारण दोष ठीक किया जा सकता है। बट कुछ कुछ कई बार होता है कि व्यक्ति की जबान ही नहीं पलटती, तो वो कुछ एक चीजें हैं, फिर उसमें आप स्पीच थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। बट सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें गलती कर रहे हैं।
1: पता होगा तभी तो सुधार होगा।
2: हाँ, और फिर वो अपने जीवन की दौड़ भाग में इतना, क्योंकि देखिए उच्चारण दोष और ये सेकेंडरी चीजें हैं, ये आपके रोटी कपड़ा और मकान को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती अनलेस आपका करियर इस पे डिपेंडेंट हो।
1: बिल्कुल।
2: तो आप लोगों को देखेंगे कि जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस दोष से, वो ऐसे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन में उनको जरूरत ही नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के। तो ये भी एक पहलू है।
1: सर, यूं तो कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमें तब और ज्यादा लगती है जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो कैसे वहाँ पर पहले से हम अपनी ऐसी कुछ तैयारी रखें कि हम अपनी इस स्किल को डेवलप कर सकें कि हमारा जो वहाँ पर परफॉर्म है या प्रेजेंटेशन जो भी है वो हम अच्छे से दे सकें?
2: देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको धीरे धीरे खुद पे काम करना शुरू करना पड़ेगा कि अगर आपका इंटरव्यू एक हफ्ते बाद है तो आप आंसर्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बट अगर हम स्किल्स की बात करें तो किसी भी स्किल सेट को हमें एक्वायर करने में या उसको प्रभावशाली ढंग से अपनाने में समय तो लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जब आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई टूल्स आपके पास हैं, आप कोई भी एक एआई टूल लीजिए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए, उस फाइल को अपलोड करिए, एक सिंपल तरीका, और उसको एक प्रॉम्प्ट दीजिए, उससे प्रश्न पूछिए कि क्या मेरे इस बोलने में मैंने जो बात अपनी कही है इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, और आपको वो कुछ ना कुछ आपको एक रिस्पांस मिलेगा वहां से, और अच्छा रिस्पांस मिलेगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एआई टूल यूज कर रहे हैं। तो आपको सही एआई टूल यूज करके, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए तो हम देखते ही हैं
1: जी,
2: तो आप अच्छे कार्यक्रम देखिए ओटीटी में जो अच्छी सीरीज हैं जिसमें भाषा और संवाद अच्छा है, भले आप अंग्रेजी में खुद को निपुण करना चाहते हो अंग्रेजी भाषा में या हिंदी में करना चाहते हो या जिस भी भाषा में आप करना चाहते हैं, ये मैंने किया है
1: जी जी।
2: क्योंकि जब हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू किया, जब मैंने शुरू किया उस समय बहुत ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, जब मैं कॉलेज में था 2010-11 में, तब बहुत स्लो इंटरनेट था इंटरनेट रिवॉल्यूशन मेनली 2015-16 के बाद आया, मेरे लैपटॉप में कुछ वेब सीरीज रखी हुई थी तो मैं उसको देखता था। मेरे पास हमेशा एक डिक्शनरी होती थी कि मुझे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, तो मुझे कोई भी नया शब्द मिलता था तो मैं उसको फटाफट अपनी डिक्शनरी खोलता था और उसका मीनिंग देखता था। तो आपको धीरे धीरे ये काम करना पड़ेगा और आपके पास बहुत सारे अनेकानेक आई थिंक मेरे ख्याल से टूल्स हैं, आपके पास AI टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकती हैं, तो आपको खोजना पड़ेगा। और आप जो भी आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप दिन भर रील्स देख रहे हैं तो आप क्या कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपका कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, क्योंकि जो आप कंज्यूम करेंगे फिर उसी तरह से आप बात भी करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो एक कॉन्शियस एफर्ट अगर उस तरफ किया जाए तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
1: अच्छा सर, अब उच्चारण के बाद हम बात करते हैं आव भाव की भी, यानी दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो अपनी भाषा शैली में उच्चारण और हमारे आवभाव एक साथ हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मूला है या हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें कोई ट्रिक्स देना चाहेंगे आप?
2: देखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला और ट्रिक मुझे तो नहीं पता
1: जी,
2: हो सकता है हो भी, पर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कम फॉर्मूले और ट्रिक्स में, मैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के साथ काम करने में विश्वास रखता हूँ
1: जी जी,
2: तो उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले काम नहीं करते। बट एक जो मुझे तरीका समझ में आता है, जैसे अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं या आपको अपना डिक्शन सही करना है, उच्चारण सही करना है और आवभाव में भी काम करना है, आज हम सभी के पास स्मार्टफोन है।
1: बिल्कुल।
2: आप कोई भी एक किताब लीजिए, अखबार लीजिए, कैमरा को सेट करिए और आप कैमरे के सामने खुद को रिकॉर्ड करते हुए उसे पढ़िए और आप उस रिकॉर्डिंग को देखिए, आप उसमें ये देखिए कि आपके आवभाव में क्या आपको कमी दिख रही है, क्या वो चीज है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: इसमें कई बार हमारी कुछ आदत होती है कि हमारा चेहरा ट्वीक करेगा, कोई एक मसल हिलेगी, हम हाथों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: हम कई बार बात करते हुए बहुत सारे फिलर वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फिलर वर्ड्स मतलब
1: बिल्कुल,
2: क्रच वर्ड्स जिसको कहते हैं, जिसको बैसाखी की तरह लेते हैं कि हमें अगला शब्द नहीं पता या अगला विचार हमारे मन में नहीं आ रहा तो हम इस तरह के शब्दों को, और अंग्रेजी भाषा में जब हम बोलते हैं कई बार तो क्योंकि वो हमारी मातृभाषा नहीं है तो उसमें कई बार और भी हमसे इस तरह की त्रुटियां होती हैं। तो अगर आप खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, वो अपलोड करने के लिए आप रिकॉर्ड नहीं करें और कर भी लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है
1: जी,
2: पर आप खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करिए पढ़ते हुए बोलते हुए और खुद को देखिए कि क्या क्या कैसी आपकी भावभंगिमा है, क्या आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, आपको क्या चीजें हैं। और सबसे कठिन काम होता है खुद को देख करके खुद को सुनना।
1: बिल्कुल। स्वयं का आलोचक,
2: स्वयं का आलोचक होना और स्वयं को सुनना, मेरा बड़ा भय होता है, मैं कभी भी अपने पुराने रिकॉर्डिंग्स पे वापस नहीं जाता।
1: जी। अच्छा सर, एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि कुछ लोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए प्रश्न बहुत पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रश्न पूछना अच्छा माना जाता है?
2: प्रश्न पूछना तो अच्छा ही है क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, पर जरूरत से ज्यादा प्रश्न पूछना सही नहीं है
1: जी,
2: कम प्रश्न पूछना भी सही नहीं है, तो इसको ऑप्टिमाइज करना बड़ा जरूरी है। देखिए, आपने कहा कि ज्ञानवर्धन के लिए अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो तो अच्छी बात है, पर कई बार हम देखते हैं कि प्रश्न ज्ञानवर्धन के लिए नहीं पूछा जाता, कई बार सामने वाले को टेस्ट करने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है यह देखने के लिए कि क्या अगले व्यक्ति को यह बात आती भी है या नहीं आती।
1: जी जी।
2: तो देखिए, ये एक व्यवहारिक विषय है, ये बिहेवियरल इशू है कि आप किस तरह से पब्लिक स्पेस में बिहेव कर रहे हैं, कि अगर आप किसी सेमिनार में हैं तो आपको बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आप नहीं हैं और भी लोग हैं, तो प्रश्न सटीक हो, प्रश्न
1: सार्थक हो
2: और उस विषय से रिलेवेंट प्रश्न हो, ये बेहद आवश्यक है
1: जी।
2: और अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न किसी को नीचा दिखाने की दृष्टि से या ज्यादा एयर टाइम लेने की दृष्टि से, ज्यादा फुटेज लेने की दृष्टि से पूछा जाए तो फिर वो तो उसमें आपके लिए ही फिर वो नेगेटिव आपके अगेंस्ट हो जाता है, तो प्रश्न पूछना गलत नहीं है, बट कहाँ और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है यह बेहद आवश्यक है।
1: सर, सार्वजनिक रूप से किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जहाँ हम अपने आप को एक अच्छा श्रोता या वक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं?
2: अगर आप सार्वजनिक रूप से बात करें तो 3-4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बेहद जरूरी हैं। एक तो होता है आई कॉन्टैक्ट, क्या आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखते हुए बात कर रहे हैं, या आप ऊपर देख रहे हैं, सीलिंग पे देख रहे हैं, या आप नीचे देख रहे हैं, जो आपकी नर्वसनेस को दर्शाता है। अगर आप खुद को एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट आपकी ऑडियंस के साथ होना चाहिए, और अगर बड़ा हॉल है तो कोशिश करिए कि आप सब तरफ एक एक बार जाएं, तो वो आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है
1: जी।
2: वो आपसे जुड़ाव महसूस करती है जब आप उनकी तरफ देख कर बात करते हैं, उनकी आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं। बट उसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि किसी एक सेक्शन को या एक व्यक्ति को पकड़ के सिर्फ उसकी तरफ नहीं देखना है, कई बार इस तरह की गलती लोग करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना रखना है कि हर ऑडियंस, जितने भी आपके श्रोता हैं, उन सभी की तरफ आपकी नजरें जाएं। एक एलिमेंट है आई कांटेक्ट का, दूसरा है आपको साफ बोलना है
1: जी,
2: धीरे बोलना है, साफ बोलना है, ये एक दूसरा एलिमेंट मैं मानता हूँ। और डिपेंडिंग ऑन द इमोशन कि किस तरह का इमोशन है, अगर आप खुशी की बात कर रहे हैं तो आप धीरे नहीं बोलेंगे, अगर आप एक्साइटमेंट के साथ कोई न्यूज़ दे रहे हैं तो आपके

0: मूवमेंट में, बॉडी मूवमेंट में
1: जी
0: स्टेज पे बहुत ज़्यादा आपको चलना नहीं चाहिए, स्टेज का जो मूवमेंट है वो पर्पसफुल होना चाहिए, वो उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। कई बार मैंने वक्ताओं को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेज पे आगे पीछे चलते हैं बिना किसी कारण के, तो आपका स्टेज का मूवमेंट भी एक पर्पसफुल मूवमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है।
1: सर, हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं, कई बार कठिन परिस्थितियों में हमारे मुंह से गलत शब्द भी निकल जाते हैं। कई बार जैसे होता है कि हम अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते, फिर बाद में लगता है कि अरे मुझे तो कुछ और बोलना था और मैं कुछ और बोल गया। तो इस तरह की कुछ बातें, और जो आप समझाना चाहते थे वो सामने वाले ने समझा नहीं, उसके मन में गलतफहमी हो गई। तो इस तरह से जब परिस्थितियां बनती हैं तो कैसे आप अपनी भाषा से उसको सुधारें?
0: आपको एक चीज समझनी बड़ी आवश्यक है कि जब भी आप स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो वो आपकी बात है
1: जी,
0: आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपको बोलना कुछ और था और आपने कुछ और बोल दिया, पर ये आपके श्रोताओं को नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले थे।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आपने कुछ ऐसी कोई त्रुटि की है जिसमें आपको बोलना कुछ और था और आप कुछ और बोल गए, तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको ये बताना नहीं है श्रोताओं को कि मैंने कुछ और बोलना था, मैं कुछ और बोल गया हूँ। पहली बात ये समझिए, अनलेस वो बहुत ही जरूरी जानकारी थी जो कि गलत रूप से आ गई, तो फिर आपको करेक्ट करना ठीक है कि आप गलत मैसेज नहीं जा रहा है। अगर आपका मैसेज उससे परिवर्तित नहीं हो रहा, आपका जो संदेश आप देना चाहते हैं अपने भाषण से या जो, तो हम ये कहते हैं कि आप कभी भी अपने किसी एक शब्द को मिस कर जाने के लिए या कोई एक वाक्य अलग तरीके से बोलने के लिए माफी मत मांगिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है कि आपने गलत बोला है।
1: जी जी।
0: और दूसरा है अभद्र भाषा का प्रयोग
1: जी।
0: तो वो तो देखिए, वो तो आपके चरित्र को दर्शाता है। तो कठिन समय में व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। अच्छे समय में तो सभी लोग अच्छी बातें करते हैं, आपके सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, पूरी दुनिया आपके हिसाब से चल रही है, तो आप तो वैसे ही अच्छे से बर्ताव करेंगे। चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब आपके पास सामने विपरीत परिस्थिति आती है और फिर आप किस तरह से बर्ताव करते हैं, आपकी भाषा में संयम है या नहीं है, आप किस तरह से खुद को पेश कर रहे हैं, वो तो फिर आपका वो कैरेक्टर डेवलपमेंट का ही पार्ट है।
1: सर, किसी बड़े संस्थान में या एक बड़े समूह की हम बात करें, जब आप मंच पर होते हैं तो पूरा ऑडियंस आपके सामने होता है और मंच पर ऑडियंस फेस करने के भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, तो कैसे आप उस स्थिति में, जब क्योंकि मंच पर आप अकेले हैं और पूरा फोकस पूरा ऑडियंस का आपके ऊपर है, तो कैसे आप अपनी भाषा से अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि इंसान के अंदर डर हो जाता है या इंसान नर्वस हो जाता है, तो अपने आप को किस तरीके से वहां पर अडिग रखना है, आत्मविश्वास से भरा हुआ रखना और अपनी बात श्रोताओं तक कहना है?
0: ये स्टेज फ्राइट इसको कहा जाता है कि स्टेज फियर, और इसको बहुत लोग मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है, इट्स द बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। तो कभी भी जब आप मंच पे जाते हैं, जब भी आप किसी बड़े मंच पे एक बड़ी ऑडियंस के सामने बोलने जा रहे हैं, तो दो तीन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप जाकर के तुरंत बोलना शुरू ना करें
1: जी।
0: पहले आप वहाँ जाएं, कम से कम 2 से 3 गहरी सांसें लें
1: जी,
0: उसको शांत करें, ऑडियंस को देखें
1: जी,
0: सीधे खड़े हों और उसके बाद फिर अपनी बात रखना शुरू करें। और एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आप बड़ी ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं, तो हम कहते हैं उसको भाषा में हुक कहा जाता है, कि कैसे आप हुक करेंगे अपनी ऑडियंस को
1: जी।
0: वो आपस में बात कर रही होगी, हो सकता है कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड होंगे
1: जी।
0: तो आप एक प्रश्न के साथ शुरू करिए, जब आप प्रश्न करते हैं तो सबका ध्यान आपकी तरफ आता है, या कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आप शुरू करें
1: जी।
0: बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप भले ही जितने भी नर्वस हों, आपको नर्वस दिखना नहीं है। तो जो हमने कहा कि ओपन बॉडी लैंग्वेज, सीधे खड़े होना, आपके कंधे सीना चौड़ा हो, कंधे तने हुए हों, पैरों के बीच जितना गैप होना चाहिए उतना गैप हो
1: जी,
0: और आपके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं हो बोलने की, बात को रखने की, तो लोग आपको अपने आप ही समझेंगे कि हाँ ये आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इनको किसी भी बात का कोई डर नहीं है, ये नर्वस नहीं है
1: जी जी।
0: तो नर्वस आप भले ही अंदर से जितने भी हों, पर आपको दिखना जरूरी नहीं है कि आप नर्वस हैं।
1: बिल्कुल जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ बांटी है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स पर। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे भारत स्टोरी टेलर के फाउंडर श्री अविरल पवार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए और आपने अपना इतना समय हमारे साथ साझा किया, हमारे श्रोताओं के लिए साझा किया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।
2: आमने सामने।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आज होगा कहानी पाठ रश्मि शर्मा का।
1: मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ। रंजीता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है। इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजीता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजीता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की।
0: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वागर्थ में रश्मि शर्मा का कहानी पाठ।
1: भारत भवन भोपाल का धन्यवाद कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं सबसे पहले कहानी पढ़ना चाहूँगी, उसका शीर्षक है उसका जाना। चारों तरफ खामोश बेचैनी फैली है, आसपास के लोगों के चिंतामग्न चेहरे और उदास भाव मुझे और उदास कर रहे हैं। पिछली कई रातों से सोया नहीं हूँ। मन में बस एक बात ही घुमड़ती है कि अब क्या होगा। पता नहीं इस बार उनको लेकर घर लौट पाऊंगा भी कि नहीं। बस उम्मीद है किसी चमत्कार की, हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर कतई विश्वास नहीं करता। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिसे हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते और उनके बने रहने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। सब परेशान हैं। पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरों ने स्थायी डेरा डाल रखा है। छोटी बहन अनु कुछ नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, अभी उसकी उम्र ही ऐसी है। हाँ भैया थोड़ा प्रैक्टिकल है, कम से कम बाहर से टूटता नज़र नहीं आता। यहाँ दिल्ली में सारा इंतज़ाम उसी ने किया। बेशक वो पिछले बरस आया है, मगर यहाँ के माहौल और रास्तों से खूब परिचित हो गया है। और शायद महानगरों में रहने वालों की तरह उसका मन संवेदना के स्तर पर छिछला हो चला है, इसलिए मेरी तरह भावुक नहीं होता या हमारे सामने दिखता नहीं। डर से भरा हूँ बेतरह। माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ाव मेरा ही रहा है। कई बार माँ कहती है, तुम कभी बड़े नहीं बनोगे क्या प्रियम? हर बात काम में मामा की रट लगाए रहते हो। मैं हंसकर कहता, माँ के लिए बच्चा कब बड़ा होता है? मुझे तुम्हारा आंचल पकड़कर घूमना अच्छा लगता है। माँ हंस पड़ती और कहती, आ जाओ मेरे पास, और मैं लाड़ जताते हुए उनके गले में बाहें डाल देता। आज उनकी चौथी केमो है, बहुत सारे बाल गिर गए हैं। अब लंबे घने केश कंधों तक छोटे हो गए। कितने घने केश हुआ करते थे माँ के, उन्हें अपने बालों से मोह भी था बहुत। जब भी उनका ध्यान अपने बालों पर जाता वो रुवासी हो जाती है। मैं सोचता हूँ क्या लोगों को वही वस्तुएँ ज़्यादा प्रिय होती हैं जो किस्मत उनसे छीन लेने को तैयार बैठी रहती है। माँ का कैंसर जब तीसरे स्टेज पर पहुँच गया तब हमें मालूम हुआ। ऐसा कुछ बाहर से बिल्कुल पता नहीं चला हमें न उन्हें। बस कमजोरी की शिकायत थी और बार बार बुखार होता था। कौन जानता था ऐसी गंभीर बीमारी से घिरी हुई हैं वो। अब तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। कई बार बड़ी बेबस निगाहों से देखती है मुझे तो रोने का मन हो आता है। वह घर से दूर यहाँ आना भी नहीं चाहती थी दिल्ली, उन्हें अपना मोहल्ला और शहर ही पसंद। स्मृति की गलियों से बाहर आकर मैं माँ को खाना खिलाना चाहता हूँ तो वो मना करती हैं। ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश में कई बार घुड़क देता हूँ उन्हें। दूसरे ही पल लगता है कि मेरे नहीं खाने पर माँ कितना पीछे पड़ी रहती थी, पर उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं गुड़का मुझे, बस मनाती रहती पुचकारती रहती। खा लो जरा सा, अच्छा चावल नहीं पसंद तो रोटी बना देती हूँ। ठीक है बाबा, आज हलवा खा लो, कल खीर बना दूंगी ढेर सारा किशमिश डालकर। मन को काटने लगा कोई। बाहर निकल आया हूँ कैंटीन की तरफ। मैं अपनी हताशा उनके सामने प्रकट करना नहीं चाहता। सोचता हूँ मेरा चुलबुलापन बरकरार रहे, हंसता हंसाता रहूँ सबको। ओह मैं तो अपनी क्लास भी मिस कर रहा हूँ। अभी मास कम्युनिकेशन में दाखिला हुआ है, ग्रेजुएशन में टॉप आने की खुशी भी नहीं शेयर कर पाया। दाखिले के बाद मुश्किल से 8-10 दिन ही क्लास कर पाया और माँ के साथ दिल्ली सफदरजंग अस्पताल आना पड़ा। सपना, हाँ सपना ही नाम है उस लड़की का। मेरे होठों पर उसकी याद ने मुस्कुराहट ला दी। पहली क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज पहुँचा था। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट दूसरे तल्ले पर था। खूब भीड़ भाड़ चारों तरफ, नए चेहरे जो शहर के विभिन्न कॉलेजों और आसपास के शहरों से आगे पढ़ने की इच्छा लिए आ गए थे। पत्रकारिता में सभी अनजाने थे सिवाय मेरे मोहल्ले की एक लड़की भावना की, जो स्कूल में भी मेरे साथ थी। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मगर मुझे पता है कि क्लास नोट उससे मिल ही जाएंगे सभी। बस माँ को लेकर एक बार लौट तो जाऊँ, मुझे लगा कोई घूर रहा है। पलट कर देखा तो दो लड़कियों की पीठ दिखाई दी जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुँचा। ग्रिल के पास सारे स्टूडेंट जमा थे, एक दूसरे से परिचय का दौर चल रहा था। सब ऐसे चहक रहे थे जैसे सुबह के वक्त ढेर सारी चिड़ियाँ पेड़ पर एक साथ चहकती। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र दूर से आती हुई भावना पर पड़ी। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की चली आ रही थी। गोल चेहरा, दरमियाना कद और खिलता रंग। उसने गुलाबी रंग का पारदर्शी सूट पहना था। सब चुप होकर कभी मेरी ओर तो कभी उस लड़की की ओर ताकने लगी। वो लड़की भी बौचकी होकर मेरा मुंह देखने लगी। हम नहायत अजनबी थे, आज से पहले न कभी एक दूसरे को देखा और न ही कुछ और भी जानते थे। मुझे एहसास हुआ कि बहुत गलत बात निकल गई मेरे मुंह से। अब तो तभी भावना ठिठाकर हंस पड़ी, कहा, तुम वाकई कभी नहीं सुधरोगे प्रियम। फिर अपनी सहेली को मेरा परिचय दिया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रियम, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ऐसे ही उठपटांग हरकत करता रहता है। मैंने देखा सपना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई और भावना के साथ क्लास की तरफ चली गई। मेरी जान में जान आई, लगा आज अगर भावना न होती तो पिटाई निश्चित थी। पता नहीं क्यों यह लड़की सपना पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक बात गौर की मैंने कि सपना पर हर रंग अच्छा लगता है। आज वो पीले रंग की कुर्ती और ब्लू जींस में थी। कपड़े की पीली आभा से उसका चेहरा और ज़्यादा खिला लग रहा था। वाकई बेहद खूबसूरत और समझदार है वो। सुंदर तो मेरी माँ भी बहुत लगती हैं। अब इन दिनों जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ज़रूर चेहरा बहुत उतरा है। वैसे माँ बहुत चटक रंग पसंद नहीं करती हैं, अक्सर वो ग्रे कलर या नेवी ब्लू कलर की साड़ी खरीद ले आती। पापा से इस बात पर मीठी नोकझोंक हो जाती। चटक रंग पहनने के इसरार पर वो कहती, नई नेवी ली दुल्हन नहीं हूँ मैं जो रोज़ केवल लाल पीला पहन कर घूमूं, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मगर उन पर फकते थे सारे रंग। पूजा पाठ के अवसर पर अक्सर गाढ़ा रंग पहनती थी। मुझे याद है मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर हुई उनकी झड़प। माँ ने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहनी और मोतियों की माला के साथ बेहद खूबसूरती से तैयार हुई थी शाम को बाहर जाने के लिए। पापा ने त्योरियाँ चढ़ा ली थी यह देखकर। मैंने बाद में पापा को कहा भी था, पापा माँ को जो रंग पसंद है उन्हें वही पहनने से आप क्यों रोकते हैं। पापा जवाब में खामोश रहे। अचानक सब गड़मट हो गया, सपना और माँ। मैं कहीं खोया हूँ इसका तब पता चला जब नंदू काका की दुकान में भावना ने मेरी बाँह झंझोड़ कर कहा कि क्लास का टाइम हुआ, हम जा रहे हैं, चाय खत्म कर तुम भी आओ। मैं अपने घर और कॉलेज के बीच उलझा सा चल पड़ा। उस रोज घर आकर भी उदासी छाई रही। मैं बेमन से खाना खाते हुए सोच रहा था कि जल्दी ही माँ के पास चला जाऊँ, अभी शुरुआत में उतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्लास मिस कर दिया तो भी ज़्यादा हर्ज नहीं होगा, एक बार मिल रहा हूँ माँ से तब आकर गंभीरता से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। तभी लैंडलाइन पर पापा का फ़ोन आया। माँ के बारे में सभी बातें बताई उन्होंने, कहा कीमो तो चल रहा है, वो बहुत तकलीफ़ होती है माँ को, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी, 15 दिन के लिए तुम दिल्ली आ जाओ, मैं रांची आ रहा हूँ कुछ काम से। जी मैं कल ही करा लेता हूँ टिकट, माँ से मिल सकूँगा इसकी बेहद खुशी हो रही थी मुझे। बस अब कल कॉलेज चला जाऊँ और वहाँ मेहता जी के पास 15 दिनों छुट्टी का एप्लीकेशन दे दूँ, फिर कल ही रेलवे स्टेशन जाकर टिकट करा लूँगा। सुबह कॉलेज गया, पीआर की पहली क्लास थी, मैम पढ़ाने आई। हल्की बैंगनी साड़ी और बड़ी सी कत्थे बिंदी में वो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। कक्षा में आती उन्होंने नोट्स लिखवाना शुरू किया। जब पीरियड समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ लो। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, उन्होंने मुझे खड़ा किया और कहा, बोलो क्या कहना है, क्या समझ नहीं आया। मैंने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मैम कहना यह था कि आप बहुत खूबसूरत है। पूरा क्लास ठहाकों से भर गया। मैम ने भी मुस्कुराते हुए अपना रजिस्टर उठाया और निकल गई। कुछ दोस्तों ने पीठ पर धौल लगा मेरे साहस को शाबाशी दी तो लड़कियों ने घूरा, मगर यह महसूस किया कि सब समझने लगे हैं मुझे और मेरी इन हरकतों को अन्यथा नहीं लेते। घर के लिए निकलते वक्त भावना और सपना को अपने दिल्ली जाने की बात बता दी और नोट संभाल कर रखने की ताकीद भी कर दी। तीसरी सुबह मैं अस्पताल में था। माँ बड़ी निरीह सी दिख रही थी, बदन की तकलीफ चेहरे पर उभर आई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, माथे पर हाथ फिरा, प्यार किया, पूछा, पहली बार अकेले रहे हो ना, डर तो नहीं लगा तुम्हें? मैं झेंक गया। माँ आप भी समझती हैं कि मैं अकेले में डरता हूँ, सच तो यह है कि मैं अकेला रहना नहीं चाहता। माँ कहीं ना जाए मुझे छोड़कर, इसलिए कहता था उनसे कि आप साथ रहो। मुझे डर लगता है अकेले में, मगर यह तो बहुत पुरानी बात हुई, तब स्कूल में था मैं। क्या माँ की यादों में वक्त छलांग लगा कर पीछे जा रहा है इन दिनों? अब रोज की दिनचर्या वही हो गई, दिन भर माँ के पास। माँ कह रही थी उस दिन कि प्रथम की शादी हो जाती तो थोड़ी जिम्मेदारी कम होती मेरी, मगर पापा का कहना है कि भैया की अभी अभी नौकरी लगी है, उसे कुछ दिन तो काम करने दो, फिर गृहस्थी का भार उठाना ही है। मगर अब तो जिंदगी की कोई भी बात बहुत पीछे, बस माँ है सामने, उनका स्वास्थ्य और हमारी जिंदगी जुड़ गई है, सब कुछ उनके मुताबिक। अस्पताल में माँ के पास कभी मैं तो कभी भैया रात को रुकते, बचपन के किस्से सुनाकर माँ को हंसाते। माँ जीने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, अभी जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पर, जानती हैं इसलिए जल्दी ठीक होकर घर वापस आना चाहती हैं। उन्हें अपने तुलसी के पौधों का भी पूरा ध्यान है, ऐसे में आते ही पूछा था, मेरे तुलसी के पौधों में रोज पानी देता है ना प्रियम? जवाब में हाँ मिलने पर मुस्कुरा पड़ी थी वो। आज शाम की ट्रेन से चला जाऊँगा, पापा 15 दिन के बजाय 10 दिनों में ही लौट आए हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा रांची, टिकट ले लिया। मैं माँ को उनके हवाले कर दिल्ली के आकाश से अपने शहर की आकाश की तुलना करता हुआ बहुत देर से यादों की गलियों में घूमता रहा हूँ। माँ के पास कुछ देर रह लूँ फिर तो चला ही जाऊँगा। माँ मुस्कुराती है मुझे देखकर, सोचता हूँ पीड़ा से उपजी मुस्कान दिल को भेद देती है। माँ को लगता है कि वो मेरे सामने खुश रहेंगी तो मैं भी उतना ही खुश रहूँगा। सच है कि मैं उनका भ्रम तोड़ना नहीं चाहता और वो मेरा, हम दोनों दर्द की लहरों पर तैर रहे हैं, मगर मेरा दर्द मानसिक है और माँ मन के साथ साथ तन के दर्द को भी अपने से दूर करने के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं ऐसा जताता हूँ कि माँ जानबूझकर यहाँ है और रांची वापस चलने के लिए बहाना कर रही हैं, हम दोनों एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, सब अच्छा हो जाएगा, मगर दोनों को पता है कि शायद डॉक्टर्स भी खुलकर कुछ नहीं कहते। लौटा हूँ वापस अपने शहर, सूना घर काटने को दौड़ता है। माँ पापा भाई बहन सब वहीं हैं, मुझे घर भेज दिया गया है कि जाओ घर खाली है, किसी न किसी को देखभाल के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरी कक्षाएँ भी छूट रही थी, सोचता हूँ छोटी अनु भी तो आ जाती यहाँ, उसका भी तो स्कूल छूट रहा है, मेरा मन भी लगा रहता, मगर उसे छोटी होने का फ़ायदा मिला है, पापा उसकी भी देखभाल करते हैं माँ के साथ साथ। कितनी लकी है अनु, माँ के पास है, केवल मैं ही इस बार दिल्ली से लौटने के बाद सपना के घर पहली बार गया अकेले। भावना को कुछ काम था इसलिए वह नहीं आई मेरे साथ। मुझे सपना की माँ बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, खूब प्यार से बातें की, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी पूछा। जरूर सपना ने सब बताया होगा, हमने स्कूल कॉलेज के किस्से कहे, हमारी बातचीत में सपना का छोटा भाई भी शामिल था, चंचल सा गोल मटोल बच्चा जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हमारी हर बात में बीच में टांग अड़ाता, सपना जितना उसे दूर भगाती वो हमारे बीच आकर बैठ जाता। आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, छोले आलू की सब्जी, सत्तू वाली कचौरी और खीर। अचानक मेरे मुंह से निकला, माँ मुझे खीर बहुत पसंद है और दो ना, कहकर मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे कह गया, जाने इस बात का क्या अर्थ लगाएगी सपना। मैंने तुरंत कहा, आंटी आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना? अवचेतन में माँ इन दिनों हमेशा मेरे साथ होती है, या ये भी हो सकता है कि मैं उनसे इतना जुड़ा हूँ कि हमेशा पास होने का एहसास होता है। आंटी ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम मुझे अब माँ ही कहना, तब से उन्हें मैं माँ ही कहने लगा। माँ के दिल्ली जाने के बाद की वह दोपहर बहुत अच्छी गुजरी, बिल्कुल घर सा माहौल, सबका एक साथ खाना खाना, चहलबाजी और सपना की माँ का भी इसमें शामिल रहना। मैं बिल्कुल भूल गया कि माँ से मैं अपनी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ती हुई अस्पताल के बेड पर होगी। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब माँ की बात कर रहे थे। मैं एक कोने में दुबका बैठा हूँ, दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से माँ को घर लाया जा रहा है, लोग अंतिम दर्शन के लिए बेकरार हैं। अचानक रंजिता का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मैं चिंक उठा, वह चाय लेकर आई है, कहती है पी लो ज़रा, माँ के आने में देर है, खुद को संभालो। मैं एकटक देखता हूँ उसके चेहरे की तरफ, माँ होती तो कहती, देख प्रियम रंजिता की बात माना कर, बहुत समझदार लड़की है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है, इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई, अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजीता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की। तभी सुबुकने की आवाज़ आई। देखा, बुआ जोर जोर से रो रही, पापा की इकलौती बहन है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ अचानक, रंजीता कहाँ गई, बुआ क्यों रोई। समझ नहीं आता कि मैं वर्तमान में हूँ या अतीत में। तभी हलचल मची, बॉडी आ गई। मेरी जीती जागती माँ बॉडी में कैसे तब्दील हो सकती है, मैं देखना चाहता हूँ माँ कहाँ है। माँ तो अभी यहीं थी, मुझे खीर परोसती हुई, किसमिस वाली ठंडे की। अभी तो माँ ने सीने से लगाया था, चाय का प्याला पकड़ाते हुए कह रही थी, जा जरा रंजीता की माँ को बुला ला, ऊन के लच्छे देने हैं, गोला बना देगी तो अन्नू के लिए स्वेटर बुनूंगी। माँ ने गुलाबी रंग ड्रेस पहना है। माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। माँ कहाँ हो माँ, मुझे नहीं जाना रंजीता के घर, कॉलेज को देर हो रही। नंदू काका ने अभी गर्म समोसा निकाला है, माँ एक खा लो। सपना कहाँ जा रही हो तुम, भावना पीआर की क्लास नहीं है क्या आज। बुआ आकर कंधे पर हाथ रखती है, जाओ प्रियम माँ को अंतिम प्रणाम कर लो। मुड़कर देखता हूँ पापा के चेहरे की तरफ, बेहद उदास, शून्य में विलीन हो जैसे। माँ को देखा, आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी माँ ने। पापा कहाँ है, मैं आवाज़ देता हूँ, पापा पापा। चटाख की आवाज़ से तंद्रा टूटी, कपाल क्रिया संपन्न हुई। मैं ठहरा हूँ यहीं, रुकूंगा उतनी देर जब तक चिता की राख ठंडी ना हो जाए। मित्रों के हाथ अपने कंधे पर पा रहा हूँ, सांत्वना के बोल कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सब जानते हैं इनका कोई असर नहीं होगा मुझ पर, जबकि कोई अपना हमेशा के लिए साथ छोड़ गया हो। लोग पीठ पर हाथ धरते और वापस मुड़ जाते। पापा ने भी सबकी तरह आकर कहा, चलो अब सब खत्म हुआ। मैं कहता हूँ, आप जाइए, मैं कुछ और देर रहना चाहता हूँ यहाँ। पापा समझते हैं मुझे, कहते हैं ठीक है, मैं भी बैठा हूँ, साथ चलेंगे वापस। धीरे धीरे चिंगारियों का ताप कम होता जा रहा है, सन्नाटा है सबूर, सांझ खिराई है, सफ़ेद बादल जाने कहाँ चले गए। चिता से उठते धुएं की एक मोटी परत समूचे परिवेश में फैली हुई है। स्वर्णरेखा नदी की पतली धार किसी पगडंडी से दिख रही है। दूर जहाँ आसमान का नीला छोर धरती से मिलकर हरा हो जाता है, वहाँ जैसे गुलाबी साड़ी में लिपटी माँ खड़ी है। मैं झटके से खड़ा होकर पुकारता हूँ, माँ माँ, पर माँ के कदम रुकते नहीं, अपनी सीध में बढ़ते जाते हैं। मेरी पुकार की विकल प्रतिध्वनियाँ जैसे दसों दिशाओं से लौट कर मुझ तक वापस आ रही हैं। पापा ने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। जाती हुई माँ को उनकी पसंद के रंग की साड़ी में देख मेरे भीतर की बेचैनी हौले से तड़पती है। मेरे हाथ पर पापा की पकड़ और मजबूत हो गई है। माँ को उनके पसंद की रंग की साड़ी में देख हमारी हथेलियाँ सुकून की उष्मा से भर उठी वजह से। धन्यवाद।

0: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: ये राख

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है रक्षाबंधन। प्रकृति के लिए भी एक रक्षा सूत्र जरूरी है।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। सावन का महीना है, बाहर बारिश की रिमझिम है, पेड़ धुले धुले से लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। सच कहूं तो सावन आते ही मन भी जैसे हरा हरा हो जाता है। भाग दौड़ के बीच भी मन करता है कि थोड़ी देर रुक कर बारिश को देखें, पेड़ों के पास बैठें और इस मौसम को महसूस करें। तो बस आज स्टूडियो में मैंने सोचा क्यों ना हम सावन के इस बहुत ही सुंदर से रंग को और सावन में आने वाले एक और भी सुंदर त्योहार को आप सब बच्चों के साथ मनाएं। तो बच्चों, रक्षाबंधन का तो बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार रहता ही है, और जब ये त्यौहार आने वाला है और हम इसे मना रहे हैं, तब ये ज़रूरी है कि हम कुछ कुछ बातें और सोचें। और आपको ये भी पता है कि जब भी बाल सभा होती है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा, कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, कुछ ना कुछ ऐसा फूड ज़रूर तैयार करती हूँ जो आपके दिमाग के लिए हो, विचारों के लिए हो, क्योंकि बच्चों सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचने से दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो एक वो गाना था ना एक फिल्म में, सोचो सोचो क्या ये पेड़ है, तो वही वाली बात है कि हम ज़रा चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से सोचें तो बच्चों हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो आज हम लोग जो सोचने वाले हैं वो यही कि क्या रक्षाबंधन हम जैसे मनाते हैं उसमें हम कुछ थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा ट्विस्ट दे सकते हैं क्या, क्योंकि बहनें तो इंतज़ार कर रही हैं भाई को राखी बांधने के लिए और उससे कोई सुंदर सी गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन हम आपको ऐसे रक्षाबंधन की बात बताने वाले हैं बच्चों, जो आपको गिफ्ट में हो सकता है उस समय कुछ ना दे, लेकिन जीवन भर बहुत कुछ देता रहेगा। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ सुनाने वाले हैं जो मुझे एक बच्चे ने लिख कर भेजी थी। उसने लिख कर भेजा था कि रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, हरियाली की आई कहानी, पेड़ हंसे और धरती मुस्काए, सावन सबके मन को भाए। ये बच्ची है मेदिनी और वो आ जाने वाली थी। उसने मुझे ये छोटी सी कविता लिख के भेजी, लेकिन वो क्या हुआ ना, सावन में भीग गई, और भीग गई तो तबीयत खराब हो गई बच्चों। तो बस मैंने कहा जो तुमने छोटी छोटी सी कविताएं लिखी हैं वो मुझे भेजो, मैं आज बच्चों को सुनाऊंगी। अब क्या होता है बच्चों कि हम बाकी दिनों में कितनी भी चीज़ों में उलझे रहें, स्कूल, पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, घर का काम, लेकिन बारिश आते ही हम और आप खिड़की के बाहर झांकते ज़रूर हैं, पेड़ों को देखते ज़रूर हैं, बारिश की आवाज़ सुनते ज़रूर हैं, मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं। यानी हमें प्रकृति थोड़ा रुकना सिखाती है ना, और इसी को बच्चों माइंडफुल लिविंग कहा जाता है। यानी हम जिस पल में जी रहे हैं उसे हमें ध्यान से जीना है, और प्रकृति इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, अच्छा लगता है ना, पत्तियां हिलती हैं, कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं बच्चे तो भी ऊपर से पत्तियां गिर रही होती हैं, और कभी कभी हवा चलती है तो बच्चों को और मज़ा आ जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो हमारे मन को बहुत सुकून देती हैं, जैसे किसी पेड़ के पास बैठना, उसे छूना, उसकी छाया में सांस लेना, ये सब हमें प्रकृति से जोड़ता है। और पता है बच्चों, कुछ लोग तो पेड़ों को गले भी लगाते हैं, जैसे हम किसी अपने से मिलकर गले लगते हैं ना, वैसे ही। और इसे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस होता है। आप पता है, आज जब मैं यहाँ आ रही थी, बहुत झिमिर झिमिर, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा कुछ बच्चे एक जगह पानी भर गया था, तो उस जगह ना बहुत तेजी तेजी से उछल रहे थे, और वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे कि उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं। बस यही बचपना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए आज जो बात मैं करने वाली हूँ आपसे रक्षाबंधन की, वो ये है कि बच्चों, रक्षाबंधन पे हम भाई को राखी बांधते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन या फिर कभी भी आपको जब लगे, तब एक रक्षा सूत्र किसी पेड़ को, किसी पौधे को बांध कर देखिए। इसलिए क्योंकि वो आपका प्रकृति से एक अलग तरह का रिश्ता बनाएगा बच्चों। क्योंकि रक्षा सूत्र, अगर हम रक्षा के लिए कहें तो पेड़ और प्रकृति भी तो कितनी चीजों से हमारी रक्षा करती है। ये पेड़ हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, और उससे बड़ा क्या है बताइए। और जब हम उनको रक्षा सूत्र बांधेंगे, तब हमारा एक रिश्ता कायम होगा पेड़ के साथ। कुछ बच्चे तो पौधों में पानी देते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई फूल ना तोड़े, कोई फल ना तोड़े, कोई पत्थर ना मारे पेड़ पर, ये सब ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, अगर आम लगा हुआ है तो फट से कंकड़ मार देंगे और आम तोड़ लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। हाँ, तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, पेड़ को एक रक्षा सूत्र बांधना है, और हो सके तो कुछ और बच्चों को भी ले जाइए अपने साथ। जब आप ढेर सारे बच्चे लेकर पेड़ के पास जाएंगे, उसको तिलक करेंगे ऐसे सांकेतिक रूप से, और रक्षा सूत्र बांधेंगे, और कॉलोनी और मोहल्ले के बच्चों को जब आप ये बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन हम प्रकृति के साथ भी मनाएंगे, है ना, तो फिर आप देखेगा कि आपका उस पेड़ के साथ कितना गहरा नाता हो जाएगा, उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। अब एक बहुत सुंदर सी बात है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्म देने वाली माँ और हमें पालने पोषण करने वाली मातृभूमि, दोनों का स्थान स्वर्ग के सुखों से भी ऊपर और महान होता है। तो बच्चों, इस धरती के लिए, इस जन्मभूमि के लिए अगर हम बच्चे कुछ सबसे अच्छा कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अपनी प्रकृति की रक्षा और सेवा। ऐसे ही एक और गतिविधि मैंने देखी कि कुछ लोग नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं, कलश में जल भरते हैं और जल पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। और बच्चों, यही देखने के बाद आज मैंने आपसे ये बात कही है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जब वो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो एक खुद से संकल्प भी लेते हैं कि अब से हम जल को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। नर्मदा नदी आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, सालों से, लाखों वर्षों से ये नदी बह रही है बच्चों। और खास बात यह है बच्चों कि इस नदी के पास कोई ग्लेशियर से पानी नहीं आता। जो ये जंगल, जो ये बड़े बड़े पेड़, जो बहुत सारे जंगल मिलकर जो पानी को बचाते हैं, अपनी जड़ों में जो पानी को सोखते हैं, वो पानी धीरे धीरे रिस कर इस नदी में आता है, और फिर ये जाने कितने लोगों को जीवन देती हुई बहती है। तो कितनी बड़ी भूमिका है ना पेड़ों की। तो इस बार आप याद रखिए कि आपको पेड़ों के साथ, जल के साथ और प्रकृति प्रदत्त हर चीज के साथ रक्षा सूत्र का एक बंधन मन ही मन जरूर बांधना है, ताकि आप प्रकृति की सेवा करने का एक संकल्प अपने भीतर जरूर लें। और जो बच्चे ऐसा करेंगे वो मुझे बाल सभा में बाद में भी बता सकते हैं। आप लोगों को तो मैं मिलती ही रहती हूँ, कभी आपके स्कूल से निकलते वक्त, कभी आपकी कॉलोनी, कभी आपके मोहल्ले, बहुत सारी जगह आप मुझसे मिल सकते हैं। और मुझसे ही क्या, आप अपनी माँ को बता सकते हैं, पिताजी को बता सकते हैं कि हमने इस बार रक्षाबंधन पर प्रकृति की जितनी भी संसाधन है, चाहे वो जल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, किसी ना किसी को रक्षा सूत्र बांधिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा, या नल खुला देखूंगा तो बंद कर दूंगा, और पेड़ों के साथ भी ये वचन निभाऊंगा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा या रक्षा करूंगी। कुछ बच्चे मुझसे बता रहे थे कि हम पेड़ों को पानी रोज देते हैं, लेकिन मैडम क्या होता है ना, कुछ बच्चे आकर वहाँ बहुत कचरा कर देते हैं, घर का सारा कचरा लाकर पेड़ के पास फेंक देते हैं। तो मैंने बोला ये चीज कि बच्चों सब लोग मिल जाओ और एक छोटा सा क्लब बना लो, कॉलोनी का, मोहल्ले का, वो क्या होगा, आपका किड्स क्लब हो जाएगा, वो आपका बच्चों का क्लब हो जाएगा, और उसमें यही सब शिकायतें आए, आप लोग कहानियों की किताबें पढ़ो और उन्हीं कहानियों को फिर आप डिस्कस करो। कम से कम सप्ताह में एक बार तो मिलो सारे लोग मिलकर। फिर अगर कोई बच्चा कंकड़ पत्थर फेंक रहा है पेड़ों के पास, या पेड़ों के पास अपने घर का कचरा लाकर फेंक रहा है, तो उस आपकी जो समिति या क्लब बनाओगे बच्चों का, उसमें उन चीजों को डिस्कस करो। फिर आप में धीरे धीरे सिर्फ ये डिस्कशन ही नहीं होगा, आप में धीरे धीरे लीडरशिप आएगी, आप धीरे धीरे अपनी बातों को ओन करना शुरू करोगे, आप में गंभीरता आएगी, आप चर्चा करोगे उन बातों की, और बच्चों वो कॉन्फिडेंस अलग होता है जब आप कोई निर्णय लेते हो, जब आप सबके साथ बैठते हो, कुछ अच्छी बातें करते हो, खुद से प्रॉमिसेस करते हो, उन्हें निभाते हो, तो बड़ा मजा आता है बच्चों। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि एक बच्चों का क्लब जल्दी से बनने वाला है और फिर मुझे आप लोग बताने वाले हो? एक कहानी सुना दूं इसी बात पर आप लोगों को, एक ईमानदार बच्चे की कहानी सुनाती हूं, ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। माता पिता की इकलौती संतान, बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। बटुआ समझते हो, जो हाथ में लोग लेकर चलते हैं ना, बटुआ कपड़े का भी बनता है और उसमें वो पैसे रखे रहते हैं, मतलब पर्स समझ लीजिए आप एक तरह से। तो जैसे ही रामू ने बटुए को देखा, उसने बटुए को उठाया, उसने क्या देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही है। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उसी दिशा में चल पड़ा। वो पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि उसमें सभी पैसे बहुत सुरक्षित थे। वो रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया हूँ। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के स्वरूप कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। तब रामू के पिता ने कहा कि मुझे इसे आगे की पढ़ाई करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उस व्यापारी ने कहा कि जब आप इतनी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, तो इतनी मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूं कि अब से रामू की पढ़ाई लिखाई सब का खर्च मैं उठाऊंगा। फिर क्या था, उस व्यापारी ने रामू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, और देखते ही देखते रामू ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की और एक दिन बड़ा होकर वो एक सफल डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो फिर गांव लौटा और उसने जाकर उस व्यापारी के पैर छुए और कहा कि अगर आप ना होते तो मैं आज डॉक्टर ना होता। उस व्यापारी ने पता है क्या जवाब दिया? उस व्यापारी ने जवाब दिया, रामू, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे माता पिता की परवरिश का आज ये रिजल्ट मिला है तुम्हें, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुमने मेरे पैसे लौटाए थे तब मैं चकित था कि कोई बच्चा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है कि इतने सारे पैसे देखने के बावजूद उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया। ऐसे बच्चे की मदद तो मुझे करनी ही थी। रामू ने उसके पैर छुए और वहां से निकल गया। फिर उसी गांव में गांव वालों के लिए एक क्लिनिक खोला। तो बच्चों, सुना आपने कि किस तरीके से छोटी सी घटना आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल देती है। अगर उस दिन रामू पैसे वापस ना करता और उनसे नहीं मिलता तो क्या वो पढ़ने के लिए शहर जा पाता? हो सकता है चला जाता, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि नहीं जा पाता, क्योंकि उनके माता पिता के पास बच्चों इतने पैसे नहीं थे। वो गांव के ही किसी स्कूल में फिर आगे पढ़ाई करने के लिए भेजते नहीं भेजते, ये सब भविष्य के हाथों में था। लेकिन उस दिन की एक घटना ने रामू का भविष्य ही बदल दिया। तो कई बार आपके अच्छे काम का अंजाम हो सकता है आपको बच्चों उस वक्त दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होता है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जो बार बार मैं आप लोगों से बच्चों बात करती हूँ ना कि आप अपने विचारों को बहुत अच्छा रखिए, अपनी बातचीत का लहजा, अपने बातचीत की तहजीब, बड़ों के प्रति सम्मान, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, बच्चों ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपका हर दिन, हर पल, हर प्रतिपल आप जो व्यवहार करते हो बच्चों, आपको उसका ही रिजल्ट मिलता है। तो जिस तरह रामू अपनी ईमानदारी के बल पर इतना अच्छा व्यक्ति बनकर निकला, उसी तरह आप लोग भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए बच्चों। और फिर से हम उसी बात पर लौटते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी है, और इस रक्षाबंधन हमको क्या करना है, रक्षा सूत्र पेड़ों को या जल के कलश को भी बांधने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों। रक्षा का जो भाव होता है वो केवल हमारे परिवार तक क्यों रहे, हमारे जीवन में पेड़ हैं, नदियां हैं, जल हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए प्रकृति के नाम यदि हम रक्षा सूत्र बांधें तो हमको उस समय ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ धागा बांध रहे हैं, इससे एक कदम और आगे बढ़िए। एक छोटा सा वादा करिए कि इस पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसको पानी देंगे, इसको बड़ा होते हुए देखेंगे। जब आप लोग अपने आप वादा करेंगे, और वो जो किड्स क्लब की बात मैंने कही, एक छोटी सी समिति बच्चों की बनाइए, वहाँ भी जब ये बात रखेंगे तो और बच्चों को भी समझाइएगा, और मिलकर अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई जगह आपको खाली दिखे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मिट्टी है और खाली जगह है, वहाँ पौधे लगा दीजिए। क्योंकि बच्चों पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी जगह, और बदले में कितना कुछ देते हैं। एक आम का पौधा बड़ा होकर जब बड़ा आम का वृक्ष बनता है तो कितने लोगों को आम के फल देता है, देता है कि नहीं देता है। आपने सुबह सुबह देखा है नीम के पेड़ से कितने सारे आंटी अंकल जब निकल रहे होते हैं तो पत्तियां तोड़ते हुए चबाते हुए जाते हैं, कोई नीम की पत्तियां उबाल कर नहाने के लिए ले जाता है, क्योंकि नीम बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, हमारी सेहत की बेहतरी के लिए भी। ऐसे कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं बच्चों, जो बहुत अच्छी गिलोय की बेल होती है बच्चों, जो अगर हम उसके पत्ते खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है गिलोय। ऐसे कितने पेड़, कितने फूल, कितने फल हैं जिनकी कहानियां अगर मैं आपको सुनाने बैठूं तो वो बच्चों खत्म ही ना हो। गुलाब के फूल तो आपने देखे ही हैं। टीचर्स डे हो या कोई भी खास दिन हो, आप बाहर से लेकर जाते हो, सोचो खरीदते हो आप, कितने लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही पौधे लगे हों और खूब सारे फूल आ रहे हों तो बस पौधे से जरा सी विनती कीजिए और एक छोटा सा फूल ले लीजिए। लेकिन इन सब के लिए हल्की फुल्की मेहनत तो लगती है, थोड़ा आपका डिटर्मिनेशन लगता है, थोड़ा आपका खुद के प्रति ईमानदारी लगती है कि अब आप पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अच्छा, मुझे एक बच्चा ये भी बता रहा था पिछली बार कि जब वो स्कूल में होता है हमेशा हाथ धोता है और भाग जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है। घर में होता है, मम्मी डांटती है तो बंद कर देता है, और ये बात उसने खुद ही एक्सेप्ट की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कि देखिए गलती कर रहा है लेकिन स्वीकार भी कर रहा है। तो क्या आप में से भी कोई बच्चा है क्या बच्चों जो नल खुला छोड़ने की आदत है?

0: पूछ लिया आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के, बोल दिया क्या? अब मैं बताती हूँ, फायदे ये होंगे, एक तो हर बार बच्चों जो प्लास्टिक की बॉटल आप खरीद रहे हो ना, वो नहीं आपको लेनी पड़ेगी, वो बड़ी बड़ी लंबे समय तक परेशान करने वाली चीज़ है। और दूसरी बात, आपके पैसे भी खर्च होते हैं हर बार जब आप पानी खरीदते हो। कभी किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ आपका पानी ख़त्म हो गया है, वहाँ ठीक है, लेकिन एक आदत डालिए कि अपने घर से जब भी निकलेंगे तब हम पानी की बोतल लेकर ही निकलेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो प्लास्टिक की ना हो। कोशिश ये भी करेंगे कि जब हम कुछ खरीदने जाएंगे, या आपकी मम्मी या आपके पापा कुछ खरीदने जाएंगे, तो क्या बोलेंगे आप, आपने थैला लिया या नहीं? क्योंकि जब हम घर से कपड़े का थैला लेकर चलते हैं ना बच्चों, तब फिर हमें वो पॉलीथिन नहीं लेनी पड़ती जो सामान के साथ बेवजह हमारे घर में आ जाती है। और एक पॉलीथिन, एक जो वो पन्नी भी बोलते हैं, पॉलीथिन भी बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली भी बोलते हैं, उस एक पॉलीथिन को डिस्ट्रॉय होने में बहुत लंबा समय लगता है बच्चों, बहुत लंबा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो ज़मीन में बरसों बरस पड़ी रहती है, नष्ट नहीं होती, और उसके कारण कई बार जानवरों को बहुत नुकसान होता है। कई बार जब नदी में आप जाते हैं और पॉलीथिन कोई छोड़ आते हैं, अपना सामान जो आप पॉलीथिन में लेकर आते हैं, तो जो जलीय जीव हैं उनको बहुत नुकसान होता है बच्चों। कई ऐसे रिसर्च हैं बच्चों, कई। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत थोड़े से दिन पहले की बात है, बच्चे कुछ बात कर रहे थे कि महासागर, अगर हम नदी को गंदा कर रहे हैं तो क्या महासागर भी गंदे हो जाएंगे? हाँ, एक छोटी सी की जाने वाली गलती बहुत लंबे समय तक, कई कई वर्षों तक वो गलती ही रहती है। जैसे नदी में अगर आप पानी गंदा कर रहे हैं, तो आप सिर्फ नदी में नहीं कर रहे हैं, वो समुद्र तक, फिर समुद्र से महासागर तक, वो सब कुछ पहुंच रहा है। कहते हैं ना कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा भाग पर जल है ना बच्चों? तो उस जल को सुरक्षित रखने के लिए, उस जल को स्वच्छ रखने के लिए, हमारी नदियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है हमको? हमको नदियों के पास केमिकल यूज़ नहीं करना है। जब हम नदियों के पास जाएं तो हमें साबुन से नहीं नहाना है, है ना, जो साबुन में भी केमिकल होते हैं और वो नदी के पानी को ख़राब करते हैं बच्चों। केमिकल फ्री साबुन, अब आप सोचोगे कि केमिकल फ्री साबुन कैसे ले जाएं? तो बच्चों, जो मुल्तानी मिट्टी होती है और जो खुद नदी की मिट्टी होती है, वो भी बड़ी अच्छी होती है। आप चाहें तो नदी में आप वैसे ही पानी से नहाकर आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि कोई गंदगी नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ना, अगर उनको आप अपनाएंगे तो आप थोड़े से और समृद्ध हो जाएंगे, आपका व्यक्तित्व और बेहतर हो जाएगा। तो बस इस बार त्योहारों के इस मौसम में हमें अपनी प्रकृति के किसी भी संसाधन को, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, आपको किसी ना किसी को रक्षा सूत्र जरूर बांधना है। ध्यान रखिए, जल को कलश में लेकर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं आप। और जब आप बांधेंगे तो खुद से एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कि हम प्रकृति के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब चलिए थोड़े से संकल्प ले लेते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। आज के बाद मैं कभी भी जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा या बहाऊंगी। रक्षा का रिश्ता इंसानों के अलावा प्रकृति के साथ भी निभाऊंगा या निभाऊंगी। अपनी नदियों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। मैं प्रकृति से प्रेम करूंगी या करूंगा। अब एक आखिरी संकल्प, जहां तक संभव हो घर से थैला लेकर निकलेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। बस अब आंखें खोल लीजिए, हल्के हल्के से अपने दोनों हाथों को मलिए और अपनी आंखों पर लगा लीजिए। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगता है बच्चों। जब भी हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दो पल ठहर कर कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही लगता है। अब बस आज से नई शुरुआत और रक्षाबंधन के लिए भी एक नया विचार। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगी आपसे कुछ और बातें करने के लिए। लेकिन अभी के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बालसभा। आज बालसभा का विषय था प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां बुधवार की शाम स्वर उत्सव कार्यक्रम के तहत कलाकारों ने अपने गायन की दिलकश प्रस्तुतियां दी।

कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

एकता मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी रंगमंच द्वारा 16वें एकता नाट्य समारोह का आयोजन 5 सितंबर से होगा। ये रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप सभागार में होगा। 9 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में 5 नाटकों का मंचन किया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष सुमित द्विवेदी ने बताया कि वरिष्ठ रंगकर्मी अमीन दुबे और भानु प्रकाश तिवारी को एकता सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान समारोह के पहले दिन रहेगा। 5 दिन में नाटक जुकाम, 6 सितंबर को दिल की दुकान, 7 को एक मशीन जवानी की, 8 को कोमल गंधार और 9 सितंबर को हास्य नाटक बाप रे बाप का मंचन किया जाएगा। आइए अब चलते हैं मानव संग्रहालय, जहां माँ के तदर्श के तहत लोग नारियल के खोल से बनी मनसा बाड़ी देख सकेंगे। मानव संग्रहालय में शुक्रवार को इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तेलंगाना के भद्राचलम ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर बी राहुल इसका उद्घाटन करेंगे। ये पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के कोडकुनी गांव से संकलित कलाकृति है, जो नारियल के खोल से निर्मित है। इसे संग्रहालय की असिस्टेंट कीपर डॉक्टर सुदीपा रॉय ने जुटाया है। शिल्प नाग देवी मनसा की पूजा, स्थानीय लोक आस्था और पारंपरिक कारीगरी का ये नमूना है। खोल पर पारंपरिक आकृतियों को उकेरा गया है। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं ITBP सेंटर में, जहां रक्षाबंधन मनाया गया। श्रोताओं, रक्षाबंधन केवल सरहदों के भीतर तक ही सीमित नहीं है, ये उन जवानों को याद करने का दिन भी बना जो दिन रात देश की हिफाजत में सीमाओं पर तैनात हैं। इस भावना के साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के तत्वाधान में गुरुवार को कोकता बाईपास स्थित ITBP सेंटर में भारत रक्षा पर्व 2026 का आयोजन हुआ। ITBP के जवानों की कलाई बहनों ने रक्षा सूत्र बांध कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सरहदों पर तैनात जवानों के लिए जब बहनों ने राखी बांधी तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। यहां आधुनिक शस्त्र और ड्रोन प्रदर्शनी भी रही। आधुनिक हथियारों, सुरक्षा उपकरणों, हाईटेक ड्रोन तकनीक को लोगों ने करीब से जाना। ITBP के महानिदेशक अजयपाल सिंह, उप महानिरीक्षक अमित कटियार, शौर्य फाउंडेशन के अध्यक्ष अंशुमान खरे, सचिव अभिषेक खरे ने कहा कि पूरा देश हर कदम पर जवानों के साथ खड़ा है। वाकई श्रोताओं, रक्षाबंधन सिर्फ धागों और वचन का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो एक दूसरे को जोड़ रहा है। यह एहसास दिलाता है कि सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी हम कैसे अदा करें। भाई बहन के बीच धागों की इस डोर का रिश्ता व्यापक होकर शहर के प्रति एहसास का है। शहर में ऐसे उपकरण सामने आए जिन्होंने बदलाव की नई कहानी बताई। युवा से लेकर बुजुर्ग तक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ किसी के संघर्ष ने बेहतर शहर की मिसाल पेश की तो कोई पर्यावरण और पेड़ों को बचाने की प्रेरणा दे रहा है, वहीं खून की कमी से जूझ रहे लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। उमाशंकर तिवारी समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। ये बताते हैं कि हरियाली से उनका अटूट रिश्ता है। पिछले 25 वर्षों से वे काम कर रहे हैं। शहर की कम होती हरियाली को बचाने के लिए अपने स्तर पर काम शुरू किए गए हैं। इसके सहारे उन्होंने कई सारे लोगों को जोड़ा है। समाज सेवी और शिक्षक उषा खरे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचाने के काम में जुटी हैं। महिलाओं के रोजगार के लिए उन्हें एक चेन से जोड़ा है, जिसके सहारे ये न केवल एक दूसरे से जुड़ी हैं बल्कि ग्लोबली पहुंच बनी हैं। स्थानीय महिला कामगारों को वैश्विक पहचान और रोजगार भी वे दिलवा रही हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत सप्ताह महोत्सव का गुरुवार को समापन हुआ। यहाँ शिक्षा और साहित्य में योगदान के लिए संस्कृत भूषण सम्मान से विद्वानों को नवाजा गया। इस आयोजन में तकनीक से लेकर परंपराओं पर बात हुई, कई एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। समापन के मौके पर अतिथियों ने बताया कि युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीक, नवाचार और डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जो इन्हें नई पहचान दिलाएगी। आयोजन में हमीदिया कॉलेज के प्रोफेसर जगत नारायण त्रिपाठी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर पवन व्यास को संस्कृत भूषण सम्मान प्रदान किया गया। संस्थान में बताया गया कि ऐसे आयोजन से युवाओं में भाषा के प्रति गौरव और संस्कार जागेंगे।

श्रोताओं, मुकेश पार्श्व गायक मुकेश की पुण्यतिथि मनाई गई। जी हाँ, 50वीं पुण्यतिथि में आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी और सजन रे झूठ मत बोलो जैसे सदाबहार और दर्द भरे गीतों से गुरुवार की शाम गूंजी। मौका था पार्श्व गायक मुकेश की 50वीं पुण्यतिथि का। कायस्थम मध्य प्रदेश ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। गायकों ने मुकेश के गीतों को आवाज देकर उन्हें याद किया। दर्द भरे और प्यार भरे गीतों की तान ने माहौल को मुकेशमय बना दिया। बड़ी संख्या में यहाँ श्रोता उपस्थित थे। इस मौके पर कायस्थम कला अकादमी की घोषणा की गई। यहाँ प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के गायक भी मौजूद रहे।

सहाय ने मुकेश के शुरुआती दिनों के संघर्ष को बताया। उन्होंने कहा कि शोमैन राज कपूर के करियर को आगे बढ़ाने में मुकेश की गीतों की भूमिका अहम रही है। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें आप सुन रहे थे भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप हमारे कार्यक्रमों को निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इतिहास, इस देश का इतिहास जो आ पहुंचा है आपके पास आपको सुनाने फिर से एक वीर की गाथा। लेकिन तारीख कहाँ है? अरे तारीख, तुम वहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी तारीख, आपकी अपनी तारीख जो यहां आ पहुंची है देने इतिहास का साथ। और आज तो इतिहास से पहले ही आ गई हूं मैं।
1: क्या बात है, आज तो बड़े उत्साह में दिखाई पड़ती हो। भाई बात क्या है, हम भी तो जाने।
2: बिल्कुल सही कहा, मैं तो हूँ ही उत्साहित। अब भाई आखिर मैं तारीख हूँ, उत्साहित नहीं रहूंगी क्या? लेकिन आज मेरे उत्साह का एक और कारण है।
1: अच्छा, तो हम सबको भी तो बताओ वो कारण।
2: इतिहास, आपने ही तो कहा था कि आज आप ऐसे नायक के बारे में बताएंगे जिसे राजनीति में ऋषि का प्रादर्श कह सकते हैं।
1: बिल्कुल तारीख, देखो राजनीति का ऋषि पहले एक प्रादर्श क्रांतिकारी होता है, इसलिए ये कहना चाहिए कि क्रांति नायक राजर्षि।
2: ओ हाँ, अब याद आया, आप आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में हम सबको बताने वाले हैं, है ना? जिन्हें राजर्षि की उपाधि स्वयं जनता ने दी है।
1: वाह, तुम्हें याद है, बहुत खूब तारीख। भाई मान गए तुम्हें, देर से ही सही लेकिन तुम्हें याद तो आया।
2: अरे आप मेरी तारीफ छोड़िए और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में बताइए।
1: ये तो मेरा सौभाग्य होगा तारीख, तुम्हें पता है उनके लिए एक कविता हमेशा कही जाती है।
2: वाह कविता, अरे मैं क्या, हम सब सुनना चाहेंगे इतिहास, जरूर सुनाइए।
1: तो सुनो, दे राजर्षि की उपाधि देश ने जिनका था सम्मान किया, निरासक्त उन महतापी ने क्या था अपना नहीं दिया, व्रति भीष्म सदृश थे वे शिव सामान अवढर थे, पुत्र भारती का हो कोई उनके सबके हितकर थे।
2: सुना है वो हिंदी की उन्नति के लिए भीष्म थे और हरीशचंद्र की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आज हिंदी अगर राष्ट्रभाषा के पद पर है तो वो उन्हीं की साधना का फल है।
1: हाँ तारीख, बिल्कुल सही सुना है तुमने। चलो अब हम और हमारे साथी सुनते हैं एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत।

0: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1882 की 1 अगस्त को प्रयाग के खुशहाल पर्वत नामक मोहल्ले में हुआ था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के पिताजी का नाम सालिग्राम और माताजी का नाम बिट्टन देवी था, जो कि बाद में राधास्वामी धर्म में दीक्षित होने के चलते शरण देवी हो गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रारंभिक शिक्षा घर पे लेने के बाद 1897 में गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और 1899 में कायस्थ पाठशाला कॉलेज से इंटर और उसके पश्चात 1904 में म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए और फिर 1906 में वकालत की परीक्षा पास की। इसके साथ ही साथ वकालत की पढ़ाई करते हुए उन्होंने इतिहास में एमए भी किया।
1: हाँ, और 1899 में ही उनका विवाह चंद्रमुखी देवी से करवा दिया गया था और चंद्रमुखी देवी ने भी कस्तूरबा जी की ही तरह हमेशा अपने पति के सिद्धांतों का अनुसरण किया। इस प्रकार चंद्रमुखी देवी भी ऋषि पत्नी होने का एक प्रादर्श हैं।
0: वकालत करते करते राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का संपर्क महामना मालवीय जी से हुआ। 1914 में मालवीय जी ने राजर्षि को पंजाब के नाभा राज्य के दीवान के पद पर नियुक्ति दिलवाई, लेकिन उसे अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के प्रतिकूल पाकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने जल्द ही उस पद से मुक्ति ले ली।
1: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जन्मजात देशभक्त तो थे ही, साथ ही साथ जन्मजात रूप से अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध निडर होकर खड़े होने वाले योद्धा भी थे। जब वे एक विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी देशभक्ति के चलते कांग्रेस का साथ मिला और वो कांग्रेस के साथ हो लिए।
0: हाँ, तारीख कांग्रेस पार्टी में वे सबसे पहले 1905 में वाराणसी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए और उस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद 1908 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि।

0: वो समय आ चुका था जबकि भारत का इतिहास करवट बदल रहा था। शांतिपूर्वक भारत का शासन भारतीयों को देने के वादे से अंग्रेज सरकार मुकर गई थी। और तो और इससे भी बढ़कर एक जो बहुत ही बुरी बात हुई थी वो ये कि रोलेट एक्ट कानून भी पास कर दिया गया था। क्रांतिकारी कांग्रेस सरकार ने उसे काला कानून नाम दिया और इस कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन छिड़ गया।
1: इसी समय की बात है, देश में जलियांवाला कांड भी हो चुका था। कांग्रेस ने इस क्रूर कांड की जांच समिति बनाई जिसके एक सदस्य पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि भी नियुक्त किए गए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। पुरुषोत्तम दास टंडन भी राजसी आय वाली वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। सारे ठाट बाट छोड़कर उन्होंने अपने परिवार को भी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। वे गांव गांव घूमकर विदेशी कपड़ों की होली जलाते, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते, चरखे का प्रचार, अदालतों का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते और इस तरह आजादी की अलख जगाने में जुट गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1.5 बरस का कारावास हुआ।
0: कितने महान होते थे वो वीर सपूत जो अपनी सारी सुविधाएं भूलकर भारत माता की आजादी के लिए जेल जाने में अपना सुख खोज लेते थे। कितने खुशनसीब थे वो जेल जिनमें ऐसे सपूतों के चरण पड़ते थे।

0: समय धीरे धीरे करवट ले रहा था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए गए थे।
1: इस दौर में पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि की पत्नी चंद्रमुखी जी ने अपने पति को दिए वचन का पालन करने के लिए न किसी की मदद ली और न ही याचना की।
0: जेल से निकलने के बाद लाला लाजपत राय ने उनकी प्रचारक क्षमता को ध्यान में रखते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन को अछूतोद्धार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए उन्हें 500 रुपए मासिक वेतन देने का वायदा भी किया। लाला जी चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ जाए। बस राजर्षि इस बात को भांप गए और मदद न लेने की अपनी नीति के चलते उन्होंने लाला जी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि का मानना था कि देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए।
1: वाह, क्या विचार थे! देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए। हाँ, परंतु लाला जी ने भी हार नहीं मानी होगी, है ना?
0: हाँ, लाला जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। आखिरकार लाला लाजपत राय ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी को लाहौर बुलाकर उनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक के सचिव के पद पर करवा ही दी। यहाँ राजर्षि लाला जी का लिहाज करके काम भी करते रहे। लेकिन 1928 में जब लाला जी इस दुनिया को त्याग कर चले गए, तब पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी अपने पद का त्याग कर दिया और ये नौकरी छोड़ दी। और फिर राजर्षि लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष के रूप में फिर से इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के सहयोग में नमक कानून तोड़ा, जिसके फलस्वरूप वे अंग्रेज शासन द्वारा पुनः जेल भेज दिए गए। 1935 में गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन वापस ले लिया और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट गए।
1: इस दफे पुरुषोत्तम दास टंडन ने किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनकी कोशिशों से इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री वल्लभ भाई पटेल ने की।
0: उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें बतौर स्पीकर चुना, लेकिन 1940 में उन्होंने इस पद को भी त्याग दिया। कांग्रेस ने देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें राजर्षि की सक्रियता को देखकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और 1945 तक वे जेल में ही रहे।
1: कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, उन्हें कांग्रेस ने आर्थिक सहायता भी पहुंचाई, लेकिन राजर्षि की पत्नी ने ये सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया।
0: फिर कांग्रेस की सरकार बनी और 1945 में पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट कर आए और पुनः चुनाव जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन राजर्षि विभाजन के विरुद्ध थे। जब सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एकांत में बैठकर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वो ये विभाजन कभी नहीं चाहते थे।

0: 1950 में भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित समिति में एक सदस्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उन्हीं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1952 में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए और 1955 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया।
1: अंततः एक निरासक्त कर्मयोगी ने 1 जुलाई 1932 में बीमारी के चलते अपनी अंतिम सांस ली। वे एक सिद्ध के आशीर्वाद स्वरूप इस धरती पर जन्मे थे और एक सिद्ध के रूप में ही दूसरों के लिए सोचते करते चिर निद्रा में लीन हुए। एक सिद्ध योगी के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इतिहास में भी अपना नाम सिद्ध पुरुष के रूप में दर्ज करा गए।
0: उन्होंने अपने जीवन में जितने काम किए दूसरों के लिए ही किए। दूसरों की खुशियों, दूसरों के सुख से ही स्वयं सुख की अनुभूति पाने वाले उस कर्मवीर को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। सच्चे शब्दों में सदा उन्हें राजर्षि के रूप में याद किया जाएगा। क्रांति नायक राजर्षि।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी कला प्रेमियों, संगीत साधकों और रसिकों का कला कल्लोनिनी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। आज हमारे शब्दों में ग्वालियर घराने की शुद्धता है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की तपोभूमि की सौंधी खुशबू है और नाट्य संगीत की वो अद्भुत ठसक है जिसे पूरी दुनिया पंडित विनायक राव पटवर्धन के नाम से जानती है।
1: पंडित विनायक राव पटवर्धन भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो स्तंभ जिन्होंने न केवल रागों की शुद्धता को जीवित रखा बल्कि संगीत के शिक्षण को एक संस्थागत रूप देकर घर घर तक पहुंचाया। आज की ये विशेष प्रस्तुति उस महान विभूति की जीवन यात्रा, उनके कड़े रियाज, उनकी गुरु भक्ति और उनकी अमर गाथा को समर्पित है। तो चलिए श्रोताओं, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक में।

0: तारीख 22 जुलाई 1888 और स्थान महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर मिरज। मिरज जो अपनी मिट्टी में ही संगीत की तरंगें समेटे हुए था, जहां के तानपुरे पूरी दुनिया में अपनी गूंज के लिए जाने जाते थे, इसी मिरज के एक बेहद सुसंस्कृत और पारंपरिक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में बाल विनायक का जन्म हुआ।
1: विनायक के पिता और उनके चाचा संगीत के गहरे पारखी थे। विनायक का बचपन जब मिरज की गलियों में बीत रहा था, तो उनके कानों में हर समय तानपुरे का सुर और तबले की थाप गूंजती थी। बचपन से ही इस बालक की एकाग्रता अद्भुत थी। जब भी घर में या पास के मंदिर में भजन कीर्तन होता, विनायक खेल कूद छोड़कर घंटों वहां बैठ जाते और उनकी आंखें सम्मोहन में बंद हो जाती। उनके चाचा ने भांप लिया था कि इस बालक के भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि संगीत का कोई महान साधक छुपा है।
0: लेकिन नियति ने इतनी कम उम्र में ही विनायक की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। अनाथ बालक के सामने जीवन का अंधकार था, लेकिन उनके चाचा नारायण राव ने विनायक को अपनी संतान से बढ़कर पाला। नारायण राव खुद मिरज के प्रसिद्ध गायक पंडित बाल कृष्ण बुवा इचल करंजीकर के शिष्यों के संपर्क में थे। उन्होंने तय किया कि विनायक के जीवन की नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो संगीत है।
1: और तभी मिरज की उस पावन भूमि पर एक युगांतकारी घटना घटी। भारतीय संगीत के पुनरुद्धारक महान संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का मिरज आगमन हुआ। पलुस्कर जी उस समय पूरे भारत में संगीत के प्रचार प्रसार और उसे कुलीन समाज में सम्मान दिलाने के लिए एक महान अभियान पर निकले थे। जब नारायण राव बाल विनायक को लेकर पलुस्कर जी के सामने पहुंचे, तो पलुस्कर जी ने बालक के चेहरे के तेज और उसकी सुरीली आवाज को एक ही नजर में पहचान लिया।
0: जी हाँ, पलुस्कर जी ने कहा, ये बालक मुझे सौंप दो, ये संगीत की सेवा करेगा और पूरी दुनिया में ग्वालियर घराने का नाम रोशन करेगा। और इस तरह मात्र 9-10 वर्ष की आयु में विनायक राव पटवर्धन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रथम शिष्यों में शामिल हो गए। ये केवल एक गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत थी।
1: श्रोताओं, उस दौर में गुरु के आश्रम में रहना कोई आसान काम नहीं था। वह महज एक संगीत विद्यालय नहीं, बल्कि एक कठोर तपोभूमि थी। विनायक राव को लाहौर के गंधर्व विद्यालय में ले जाया गया, जिसकी स्थापना पलुस्कर जी ने की थी। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, बालक विनायक को अपने गुरु के साथ खरज यानी मंत्र सप्तक का रियाज करने बैठना पड़ता था। ठंड के दिनों में भी ठंडे पानी से स्नान करके सूती कुर्ता पहने तानपुरा लेकर बैठना और लगातार 4 घंटे तक केवल सा का अभ्यास करना, यह थी वो तपस्या जिसने विनायक राव के कंठ को फौलादी और सुरीला बनाया।
0: लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भारतीय संगीत के इतिहास का वो मील का पत्थर था, जहां पहली बार संगीत को किसी बंद कोठरी या राजा के दरबार से निकलकर एक आधुनिक पाठ्यक्रम के तहत ढाला जा रहा था। विनायक राव यहां न केवल संगीत सीख रहे थे, बल्कि वो संगीत के प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों को भी आत्मसात कर रहे थे। पलुस्कर जी अपने शिष्यों को केवल गायक नहीं, बल्कि संगीत का प्रचारक बनाना चाहते थे।
1: विनायक राव ने अपने गुरु के हर आदेश को शिरोधार्य किया। रियाज के साथ साथ आश्रम की सफाई करना, गुरु के कपड़े धोना, भोजन की व्यवस्था करना और गंधर्व महाविद्यालय की पत्रिकाओं के संपादन में हाथ बटाना, विनायक राव हर काम में अव्वल रहते थे। इसी कठिन दिनचर्या ने उनके भीतर विनम्रता और अनुशासन का वो बीज बोया जो जीवन भर उनके साथ रहा। उन्होंने यहाँ रहकर संगीत के साथ साथ संस्कृत, साहित्य और कला के सैद्धांतिक पक्षों का भी गहन अध्ययन किया।
0: श्रोताओं, 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र में संगीत नाटक यानी म्यूजिकल थिएटर का दौर अपने चरम पर था। बाल गंधर्व जैसी विभूतियां मंच पर उतरती थीं, तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने का ये सबसे सशक्त माध्यम था। जब विनायक राव पटवर्धन की शिक्षा पूरी हुई तो उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उन्हें एक नया निर्देश दिया। उन्होंने कहा, विनायक जाओ और नाट्य मंच पर शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराओ।
1: और फिर गुरु की आज्ञा पाकर विनायक राव पटवर्धन सुप्रसिद्ध गंधर्व नाटक मंडली में शामिल हो गए। मंच पर उनका आगमन किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। उनकी बुलंदी, साफ और तीन सप्तकों में आसानी से घूमने वाली आवाज ने नाट्य प्रेमियों को दीवाना बना दिया। उन्होंने शाकुंतलम, सौभद्र, मृच्छकटिक और संशय कल्लोल जैसे नाटकों में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जब वे मंच पर गाते थे तो नाट्य गृह का एक एक कोना उनकी आवाज से गूंज उठता था। बिना किसी लाउडस्पीकर या माइक के हॉल के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक उनकी तान का एक एक कण स्पष्ट सुनाई देता था।
0: बिल्कुल सही। श्रोताओं, जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? बाल गंधर्व जैसी महान हस्तियों के साथ मंच साझा करते हुए भी विनायक राव ने कभी अपनी शास्त्रीय शुद्धता से समझौता नहीं किया। वे नाटक के गीतों में भी ग्वालियर घराने की ताने, गमक और मीड़ का ऐसा बेजोड़ प्रयोग करते थे कि नाटक देखने आए आम लोग भी शास्त्रीय संगीत के रस में सराबोर हो जाते थे। उनके गाए हुए नाटक गीत आज भी मराठी संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं।
1: जब बात शास्त्रीय गायन की आती है तो पंडित विनायक राव पटवर्धन का नाम इतिहास में तराना विधा के पर्याय के रूप में दर्ज है। तराना जिसमें शब्दों के बजाय तनों, दरें, दानी, तदिम जैसे निरर्थक लगने वाले बोलों के जरिए राग के पूरे सौंदर्य को एक अत्यंत तेज गति में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी भी गायक के फेफड़ों, उसकी सांस के नियंत्रण और उसकी जीभ की गति की अंतिम परीक्षा होती है।
0: श्रोताओं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मानते थे कि विनायक राव जैसा तराना गायन किसी के बस की बात नहीं है। जब वे अपनी द्रुत लय में तराना शुरू करते थे तो उनकी उंगलियां तानपुरे पर उनके स्वर हवा की गति से मुकाबला करते थे, लेकिन इस गति में भी कहीं कोई कटुता नहीं होती थी। स्वरों का माधुर्य और ग्वालियर घराने की गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। भारत के महान संगीत समीक्षकों ने उन्हें तराना का जादूगर की उपाधि दी।
1: नाट्य मंच पर अपार सफलता, धन और कीर्ति कमाने के बाद भी विनायक राव के मन में एक छटपटाहट थी। उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था और लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भी कई संकटों से गुजर रहा था। विनायक राव को लगा कि उनकी कीर्ति तब तक अधूरी है जब तक वे अपने गुरु के मिशन को आगे नहीं बढ़ाते। सन 1932 में उन्होंने नाट्य दुनिया को अलविदा कह दिया, एक ऐसे समय पर जब वे सफलता के शिखर पर थे।
0: श्रोताओं, ये कितना बड़ा त्याग था। लोग पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं और वहीं विनायक राव पटवर्धन ने पुणे का रुख किया और 8 मई 1932 को पुणे में भारतीय संगीत प्रसारक मंडल के तहत गंधर्व महाविद्यालय की पुनर्स्थापना की। ये कोई व्यवसायिक स्कूल नहीं था, बल्कि संगीत का ऐसा मंदिर था जहां गरीब से गरीब बच्चा भी आकर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकता था।
1: विनायक राव खुद साइकिल चलाकर स्कूल आते थे। वे बच्चों को जमीन पर बैठकर सिखाते थे। उन्होंने संगीत के पाठ्यक्रम को इतना सरल और सुलभ बनाया कि आम परिवारों के बच्चे भी शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने संगीत शिक्षा के लिए राग विज्ञान नामक एक विशाल पुस्तक श्रृंखला लिखी। 7 भागों में प्रकाशित यह ग्रंथ आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों के लिए बाइबल माना जाता है। इसमें उन्होंने रागों के लक्षण, उनकी बंदिशें और उनकी बारीकियों को इतनी सरलता से समझाया है कि कोई भी जिज्ञासु इसे आसानी से समझ सकता है।
0: एक सच्चे गुरु की पहचान उसके अपने गायन से तो होती ही है, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान इस बात से होती है कि उसने समाज को कैसे शिष्य दिए हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन इस मामले में बेहद भाग्यशाली और महान थे। उनके शिष्यों की सूची भारतीय संगीत जगत के दिग्गजों की सूची है। उनके सबसे प्रमुख और लाडले शिष्य थे पंडित डीवी पलुस्कर, यानी दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, जो उनके गुरु पलुस्कर जी के सुपुत्र थे।
1: जी हाँ, जब पलुस्कर जी का अवसान हुआ तो बालक दत्तात्रेय बहुत छोटे थे। विनायक राव ने अपने गुरु पुत्र को अपनी संतान की तरह पाला और उन्हें संगीत की वो बारीकियां सिखाई कि आगे चलकर पंडित डीवी पलुस्कर ने संगीत जगत में एक अमर स्थान बनाया। उनके अलावा पंडित विनायक राव के अन्य महान शिष्यों में पंडित नारायण राव व्यास, उनके बेटे पंडित राव पटवर्धन के साथ ही कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने देश विदेश में ग्वालियर घराने की गायकी को फैलाया।
0: पंडित विनायक राव पटवर्धन केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। आजादी के बाद जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा था, तब भारत सरकार ने पंडित जी को एक सांस्कृतिक दूत के रूप में चुना। सन 1954 में वो एक भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ, पोलैंड और चीन की यात्रा पर गए।
1: सोवियत संघ के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉलों में, जहां पश्चिमी ओपेरा और क्लासिकल संगीत सुनने वाली भीड़ बैठती थी, जब धोती कुर्ता पहने माथे पर तिलक लगाए इस भारतीय मनीषी ने तानपुरा संभाला और अपनी बुलंद आवाज में भारतीय रागों का चमत्कार दिखाया, तो विदेशी समीक्षक अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बिना किसी भारी ऑर्केस्ट्रा के केवल एक कंठ और तीन तारों की झनकार से कैसे पूरे हॉल को सम्मोहित किया जा सकता है। इस तरह विनायक राव ने साबित कर दिया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा सार्वभौमिक है।
0: श्रोताओं, तात्कालीन सोवियत अखबारों और सांस्कृतिक पत्रिकाओं ने लिखा था कि पंडित जी का कंठ नियंत्रण मानव क्षमता से परे प्रतीत होता है। विदेशी मीडिया ने लिखा कि केवल एक तानपुरे और तबले की संगति में एक अकेला गायक पूरे हॉल को अपनी गूंज से भर देता है। उनकी आवाज में वो प्राकृतिक बल है जिसके आगे पश्चिमी ओपेरा गायक भी नतमस्तक हो जाएं। इसके साथ ही विदेशी संगीत पत्रिकाओं ने उनके ताल और लय के साथ खेले जाने वाली चक्करदार तानों की तुलना पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक के जटिल रिदम पैटर्न से की। उनके लय ज्ञान की बहुत प्रशंसा हुई।
1: और हम यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा भी बताना चाहेंगे। हुआ यूं कि कार्यक्रम के बाद जब सोवियत नेता उनसे मिलने पहुंचे, तो उन्होंने अचरज में पंडित जी से पूछा था कि क्या आपने अपने मुंह या गले में कोई यांत्रिकी उपकरण यानी मैकेनिकल डिवाइस छिपा रखा है जो इतनी तेज गति से आवाज निकाल रहा है। और श्रोताओं, 1984 की इस यात्रा की कवरेज करते हुए सोवियत और पूर्वी यूरोपीय समाचार पत्रों ने पंडित विनायक राव पटवर्धन और उनके दल को प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवंत ध्वजवाहक करार दिया। मीडिया का कहना था कि भारत केवल दर्शन और अध्यात्म का देश नहीं है, बल्कि उसके पास संगीत की एक अत्यंत वैज्ञानिक, अनुशासित और समृद्ध परंपरा है।
0: पंडित जी का पूरा जीवन सादगी और उच्च विचारों का एक जीवंत उदाहरण था। अपार धन और सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। पुणे के लोग गवाह हैं कि पंडित जी जीवन के अंतिम पड़ाव तक एक साधारण नागरिक की तरह ही रहते थे। वो कभी किसी तामझाम या अहंकार में नहीं रहे। उनके घर का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहता था जो संगीत सीखने का इच्छुक हो।
1: और उनकी वैचारिक दृढ़ता ऐसी थी कि उन्होंने संगीत के व्यवसायीकरण का हमेशा विरोध किया। वे मानते थे कि संगीत एक विद्या है, कोई वस्तु नहीं, जिसे बाजार में बेचा जाए। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय के जरिए जो भी कमाया उसे वापस संगीत के विकास और गरीब छात्रों की फेलोशिप में लगा दिया। उनकी इसी निष्काम सेवा के कारण उन्हें संगीत जगत में एक संत का दर्जा प्राप्त था।
0: दोस्तों, पंडित जी को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों और अलंकरणों से विभूषित किया गया। उसमें से यदि हम प्रमुख सम्मानों की बात करें तो 1964 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 1962 में हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक एकेडमी से, 1967 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एकेडमी का सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य, 1972 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया।
1: दोस्तों, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने अपने जीवन काल में रंगमंच, संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी पर कई ऐतिहासिक प्रस्तुतियां दी। गंधर्व नाटक मंडली के दिनों में उन्होंने बाल गंधर्व के साथ शाकुंतलम, सौभद्र, संशय कल्लोल और मृच्छकटिक जैसे ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और साथ में गाया।
0: 1930 से 1950 के दशकों में पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास की जोड़ी शास्त्रीय संगीत सम्मेलनों में बहुत प्रसिद्ध थी। दोनों गुरु भाई मिलकर जब ग्वालियर घराने की बंदिशें और तराना गाते थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के ऐतिहासिक आर्काइव में मौजूद सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान और तबला वादक पंडित प्रेम वल्लभ जैसे दिग्गज संगीत दाताओं के साथ राग केदार, राग मालगुंजी, राग नायकी कांधड़ा जैसी कालजयी रिकॉर्डिंग्स आज भी संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर हैं। लेकिन श्रोताओं, समय की गति अबाद है। जो सुर उसे एक दिन अनंत के मौन में विलीन होना ही था, 23 अगस्त 1975 का वो दिन भारतीय संगीत इतिहास के लिए एक गहरा शोक लेकर आया। 77 वर्ष की आयु में सुरों के इस महान शिल्पी गंधर्व महाविद्यालय के इस अथक सारथी ने पुणे में अपनी अंतिम सांस ली।
1: विनायक राव पटवर्धन जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में एक ऐसा सम्मानित स्थान था कि उनके समकालीन दिग्गज, उनके शिष्य और समकालीन संगीतकारों और दिग्गज संगीताचार्य उनका नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर से लेते थे। ग्वालियर घराने की शुद्धता और गंधर्व महाविद्यालय के जरिए संगीत सेवा के लिए महान कलाकारों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, अब हम आपको ये बताते हैं। मराठी नाट्य संगीत के महान ध्वजवाहक बाल गंधर्व का कहना था कि जब विनायक राव मंच पर गाते हैं तो वे केवल अभिनय या गाना नहीं गाते, बल्कि पूरे नाट्य गृह को शास्त्रीय संगीत की पवित्रता से भर देते हैं। उनकी आवाज को किसी बनावटी साधन की जरूरत नहीं, वह सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं।
0: और बाल गंधर्व जी, जिनके साथ विनायक राव जी ने गंधर्व नाटक मंडली में वर्षों काम किया, पटवर्धन जी की इस बात के मुरीद थे कि उन्होंने व्यावसायिक नाटमंच पर रहते हुए भी कभी अपने शास्त्रीय संगीत की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया। और भारतीय संगीत के महान गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि विनायक राव जी की आवाज में पहाड़ जैसी स्थिरता और बहती नदी जैसी शुद्धता है। तराना और द्रुत लय की गायकी पर उनका जो अधिकार है, वैसा हमारी पीढ़ी में किसी अन्य कलाकार के लिए हासिल करना असंभव है।
1: श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के वरिष्ठ गुरु भाइयों के रूप में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन जी ने देश भर में संगीत का प्रचार किया। ओंकारनाथ जी उनकी बेजोड़ लयकारी और तान की सटीकता की हमेशा सराहना करते थे और उनके शिष्य एवं गुरुपुत्र पंडित डीवी पुलस्कर तो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे कहते थे कि आज संगीत जगत में मैं जो कुछ भी हूं उसका सारा श्रेय पंडित विनायक राव पटवर्धन जी को जाता है। मेरे पूज्य पिता के जाने के बाद उन्होंने न केवल मुझे संगीत सिखाया बल्कि एक पिता की तरह मेरा पालन पोषण भी किया। उनके जाने से ग्वालियर घराने का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या पंडित विनायक राव पटवर्धन सचमुच चले गए? नहीं, जब तक इस देश में गंधर्व महाविद्यालय की किसी शाखा में कोई छोटा बच्चा अपना पहला सा साधेगा, जब तक राग विज्ञान के पन्नों को पलटकर कोई शोधकर्ता किसी बंदिश की तान को सुधारेगा और जब भी भारतीय संगीत के इतिहास में तराना विधा की बात चलेगी, पंडित विनायक राव पटवर्धन अपने शुद्ध स्वरों और अपनी अमर विरासत के साथ हमारे बीच जीवित रहेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, सुर कभी मरते नहीं, वो केवल अपना माध्यम बदल लेते हैं। श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष एपिसोड को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के अनमोल पन्नों के साथ। लेकिन इस कार्यक्रम के समापन से पहले हम अपने उन सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन और प्रयास से ये कड़ियां आप तक पहुंच रही हैं।
1: इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और श्रोताओं मैं था आपके साथ दानिश,
0: और मैं थी मनीषा।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।
2: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि विवेकानंद कन्याकुमारी, रामेश्वरम आदि स्थानों की यात्रा करके मद्रास गए थे। वहां श्री सुंदर राम के घर पर ठहरे थे। उन्होंने स्वामी जी को कई संभ्रांत लोगों से मिलवाया था। मद्रास पहुंचने के थोड़े ही दिनों बाद स्वामी जी की विद्वत्ता और प्रतिभा की ख्याति शिक्षित समाज की चर्चा का विषय बन गई। थोड़े दिनों बाद वे मन्मथ बाबू के पास रहने चले गए। मन्मथ बाबू का घर शीघ्र ही धर्म चर्चा का एक केंद्र बन गया।
1: ये जानकर कि विश्वविद्यालय के सर्वोच्च उपाधिधारी युवकगण स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, मद्रास नगर के सुप्रसिद्ध नास्तिक क्रिश्चियन कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक श्री सिंगरावेलु मुदलियार अपने हंसी रोक न सके और एक दिन दल बल के साथ उन्होंने स्वामी जी को तर्क युद्ध में आह्वान किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वामी जी किसी भी तरह युक्तियों का खंडन नहीं कर सकेंगे, परंतु थोड़े ही समय में वे चुप होने के लिए बाध्य हो गए और उनके अनुगत भक्त हो गए।
0: स्वामी जी उन्हें विशेष स्नेह करते थे और उनका नाम किड़ी यानी बालक रखा था। वे किड़ी से मजाक करते हुए कहते,
2: जूलियस सीजर ने कहा था, विनी वीसी वीडी, यानी मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया, किंतु यहाँ तो किड़ी आया, उसने देखा और वो पराजित हो गया।
1: कुछ काल के उपरांत किड़ी ने स्वामी जी के कार्य के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था तथा बाद में स्वामी जी की इच्छा अनुसार मद्रास में जब प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका प्रकाशित हुई तब वे उसके अवैतनिक व्यवस्थापक हुए थे। इसके उपरांत वे संसार त्याग कर तपस्या में लीन हुए और साधु के रूप में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया।
0: मद्रास के एक युवक श्री वी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा है,
3: हम लोग मजाक करने के लिए अपने कुछ सहपाठी युवकों को साथ लेकर भट्टाचार्य महोदय के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि स्वामी जी हुक्का पी रहे हैं, जैसे किसी गहन चिंतन में लीन हो। मैं उन दिनों क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र था और ईसाई धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा रखता था, यहां तक कि हम एक बार धर्म ग्रहण करने के इच्छुक भी हो गए थे। स्वामी जी के पास आने के पहले ही हम लोगों ने अनेक सवाल तय कर लिए थे और इन सवालों के पक्ष और विपक्ष में जो कुछ कहना संभव हो सकता है वो सब सोच रखा था, ताकि अचानक हारना ना पड़े। स्वामी जी को उस रूप में देखकर हम संकोच में पड़े थे। तभी एक युवक अपेक्षाकृत साहस दिखाकर पूछ बैठा, महाशय भगवान किसे कहते हैं? स्वामी जी मानो कुछ सुन नहीं पाए, पूर्ववत अपने ही धुन में हुक्का पीते रहे, फिर मानो उत्तर देने के लिए आंखें खोल कर कहा,
2: अच्छा बच्चा बता सकते हो कि ऊर्जा या शक्ति क्या है? चुप क्यों हो? ये कैसी बात है? तुम लोग जिस शक्ति शब्द का जीवन में प्रतिक्षण व्यवहार करते हो उस साधारण शब्द तक की परिभाषा नहीं बता सकते, परंतु मुझे भगवान की परिभाषा बताने कहते हो।
0: उन लोगों ने और भी बहुत से प्रश्न किए थे, किंतु स्वामी जी ने उन लोगों को निरुत्तर कर दिया। अंत में सबके चले जाने पर भी अय्यर महाशय स्वामी जी की कथावार्ता से मुग्ध हो बैठे रहे और स्वामी जी जब समुद्र तट पर संध्या भ्रमण के लिए बाहर निकले तब अय्यर भी उनके साथ चले। हठात स्वामी जी ने अय्यर से पूछा,
2: क्या तुम कुश्ती लड़ना जानते हो?
3: जी कुश्ती?
2: हाँ हाँ कुश्ती जानते हो?
3: जी थोड़ा बहुत।
2: तो चलो आओ थोड़ा लड़ा जाए।
0: दोनों समुद्र तट पर रेत में ही कुश्ती लड़ने लगे। स्वामी जी के व्यायाम कौशल और मांसपेशियों की मजबूती देखकर अय्यर आश्चर्यचकित हो गए और बाद में स्वामी जी का नाम रखा पहलवान स्वामी।
1: स्वामी जी ने एक बार गौर किया कि मैसूर के महाराजा ने उन्हें जो हुक्का दिया था उसे भट्टाचार्य महाशय का रसोईया बड़ी ही ललचाई नजरों से देख रहा है। उन्होंने तुरंत उससे पूछा,
2: इधर आओ, तुम्हें ये हुक्का पसंद है?
4: जी हाँ बहुत अच्छा है।
2: तुम्हें चाहिए?
4: जी हम गरीब लोग हैं, ये तो बहुत महंगा होगा।
2: तो क्या हुआ, ये लो इसे रख लो।
4: अरे पर ये तो आपकी बहुत पसंद की चीज है।
2: हाँ है तो पसंद की चीज, पर तुम्हें भी तो पसंद है ना? लो रख लो इसे।
1: रसोईया अभिभूत हो गया। ऐसे ही थे स्वामी जी, अगर कोई उनकी किसी चीज की तारीफ करता तो वे उसे तुरंत ही वो चीज दे देते।
0: एक बार की घटना है, स्वामी जी को भूतों ने घेर लिया था। कैसे छूटे तो सुनिए। मद्रास प्रवास में उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेतात्माओं के उत्पात का अनुभव किया। वे उन्हें तरह तरह की उल्टी सीधी सूचनाएं देते और स्वामी जी परेशान हो जाते। थोड़े दिन तो वे उत्पात सहते रहे, फिर रौद्र रूप धारण कर बोले,
2: देखो तुम लोग अब इस दुनिया में नहीं हो, अपने प्रेत लोक में जाकर क्यों नहीं रहते? यहां का मोह क्या अब तक नहीं छूटा? चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अपनी तपस्या के बल से मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
0: भूतों ने उन्हें बताया कि वे बड़े कष्ट में हैं, स्वामी जी उनका उद्धार करें। स्वामी जी सोच विचार कर समुद्र तट पर गए और तिल चावल की जगह मुट्ठी में रेत भर भर कर पिंडदान किया और तब से भूतों का उत्पात भी रुक गया।
1: ऐसा ही एक और अनुभव उन्हें हुआ था, पर उसका नतीजा अच्छा ही हुआ था। मद्रास में मन्नाथ बाबू के घर पर रहते समय स्वामी जी ने सपने में देखा कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। वे सुबह जागकर व्यथित हो गए। मन्नाथ बाबू ने समाचार जाने के लिए कलकत्ते में तार भेजा। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि पास ही एक पिशाच सिद्ध व्यक्ति रहता है, वो गणना करके भूत भविष्य की बातें बता सकता है। लोगों के बार बार कहने पर स्वामी जी वहां जाने के लिए राजी हो गए। उनके साथ मन्मथ बाबू, आला सिंगा और इंडिया बैंक के मैनेजर श्री बालाजी राव भी चल पड़े। वो स्थान शमशान के पास था। एक काला कलूटा विशालकाय व्यक्ति को यज्ञ कर रहा था। उस व्यक्ति के साथियों ने उस तांत्रिक पिशाच सिद्ध से उन लोगों का परिचय करवाया। पहले तो उसने ज्यादा आग्रह नहीं दिखाया। जब स्वामी जी लौटने के लिए मुड़े तो उसने उन्हें रोका, इशारे से बैठने को कहा और लकड़ी से जमीन पर कुछ रेखाएं खींच दी। फिर उसने स्वामी जी के पुरखों के नाम बताए, उनके बीते दिनों की बातें बताई और फिर कहा कि उनकी माँ स्वस्थ हैं, ठीक हैं। घबराने की जरूरत नहीं, विदेश यात्रा की बात भी उसने कही थी। सभी लोग निश्चित होकर लौट आए। तार का जवाब भी आ गया था, माँ ठीक थी। इस पिशाच सिद्ध व्यक्ति का नाम था गोविंद चेट्टी। कहते हैं अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी जी की मुलाकात उनसे फिर कुंभकोणम में हुई थी। स्वामी जी ने उसका आलिंगन किया था। स्वामी जी के प्रभाव से उसने तंत्र विद्या छोड़ दी थी।
0: मद्रास में स्वामी जी का प्रभाव किस प्रकार फैल रहा था, इसे बताने के लिए श्री के व्यास राव ने उन दिनों की बातों को याद कर लिखा था।
4: उन सन्यासी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया था। उनका मस्तक मुंडित था, अत्यंत सुंदर रूप था, परिधान में गेरुआ वस्त्र था। वे अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते थे। विरोधी की बातों का जवाब देने की अतुल्य क्षमता रखते थे। मुक्त कंठ से सुललित स्वर में जब गाना शुरू करते थे तब लगता था मानो विश्वात्मा के साथ वे एक हो चले हैं।
1: वे स्वस्थ एवं दीर्घदेही थे, रसिक थे। वे सिद्धाई के प्रदर्शन से घृणा करते थे, सुस्वादु भोजन से आनंदित होते थे। हुक्के के प्रति और तमाकू सेवन में उन्हें विशेष प्रीति थी, तथापि ऐसी सरलता से वैराग्य की बातें करते कि लोग मुग्ध हो जाते थे। कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी, लाठी भांजना उन्हें खूब अच्छे से आता था। बात बात में हंसी मजाक करते थे, पर इन सबसे ऊपर था उनका विशुद्ध देश प्रेम। यही गुण सबको मोह लेता था।
0: जिन युवक ने सांसारिक समस्त संबंधों को तोड़ दिया था एवं बंधन मुक्त हो गए थे, उनकी एकमात्र प्रेम की वस्तु थी स्वदेश, और एकमात्र विषाद का कारण था उसी स्वदेश का पतन। व्यास राव जी और भी लिखते हैं कि
4: इन विषयों में चिंता मग्न होकर वे ऐसी बातें कहते जिनसे श्रोतागण मंत्रमुग्धवत बैठे रहते। हुगली नदी से ताम्रपर्णी नदी तक का पर्यटन करने वाले स्वामी जी का यही स्वरूप था। वे मुक्त कंठ से हम युवक वर्ग की कायरता पर दुख व्यक्त करते तथा उसकी निंदा करते। उनकी वाणी फौलाद की भांति राह चीर कर चलती। वे सबके प्राणों में उत्साह का संचार करते। अनेकों लोगों के हृदय में विश्वास का दीप उन्होंने प्रज्वलित कर दिया था।
1: कई विद्वानों के लिखे हुए संस्मरण हमें प्राप्त हुए हैं। स्वामी जी भारतीय दर्शन, योग और संस्कृति के मूर्त विग्रह थे। उनके विचारों में पश्चिमी दर्शन और वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी जगह बनाई थी। अपने पांडित्य के लिए विख्यात कुछ व्यक्तियों ने उस समय उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात लिखा था,
3: स्वामी जी के मन तथा ज्ञान का प्रसार देखकर मैं स्तंभित और विमोहित हो गया। ऋग्वेद से रघुवंश तक वेदांत के दार्शनिक चिंतन से आधुनिक कांट और हीगेल तक प्राचीन और आधुनिक हर प्रकार का साहित्य, कला, संगीत, नीतिवाद एवं प्राचीन योग शास्त्र की सूक्ष्मता से आधुनिक प्रयोगशाला के जटिल विषयों तक सभी विषय जैसे उनकी दृष्टि के सामने स्पष्ट थे। इसी ने मुझे चमत्कृत कर दिया था और मुझे उनका दास बना दिया था।
2: उन्हें अक्सर प्रश्नकर्ता के स्तर पर उतरकर उसी की भाषा में अपने उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को व्यक्त करना पड़ता था, जैसे पहले से ही प्रश्नकर्ता के प्रश्नों को जानते हों और इस तरह उसका जवाब देते कि दूसरा प्रश्न किए बिना ही प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा शांत हो जाती। यदि कोई ये जानना चाहता कि वे कैसे पहले से ही प्रश्न जान जाते हैं, तब वे मुस्कुराते हुए उत्तर देते, सन्यासी मनुष्य के मन के चिकित्सक होते हैं, इसीलिए दवा देने के पहले ही रोग का पता कर लेते हैं। किसी किसी मौके पर अनेक व्यक्तियों के विचार एक साथ ही उनके मन में कौंध जाते, वे एक साथ ही अनेक समस्याओं का समाधान कर जिज्ञासुओं को संतुष्ट कर देते। जिन लोगों के प्रति वे खुश थे, उन लोगों के प्रति उनका व्यवहार कोमल तथा प्यार भरा होता, पर दूसरों के लिए उनके समीप रहना मानो खतरनाक विस्फोटक पदार्थ के पास रहने के समान था। जिस क्षण किसी के मन में कुविचार उठता, उसकी भनक मानो उनके मन में हो जाती थी, और उस समय उनके ओंठों पर जो मृदु हंसी होती और बातों के क्रम में जो दो चार शब्द उनके श्रीमुख से निकल पड़ते, उससे ही उस व्यक्ति को जान पड़ता कि स्वामी जी को मालूम पड़ गया है।
0: मद्रास में स्वामी जी 3 सप्ताह ठहरे थे। उन दिनों वे बार बार विदेश यात्रा की बातें करते थे। भक्तगण उनकी मंशा जानकर 500 रुपए इकट्ठा कर लाए, किंतु रुपयों को देखकर स्वामी जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा,
2: ये धन तो विदेश यात्रा के लिए नगण्य है, किंतु विदेश यात्रा यदि विधाता की ही इच्छा है तो फिर आयोजन ऐसा तुच्छ क्यों? भक्तों का प्रयास इस प्रकार असफल क्यों? कहीं मैं अपनी इच्छा से तो नहीं चल रहा हूं? उत्साह से भरकर अपने को बहा तो नहीं दे रहा हूं? जिस प्रकार सोच रहा हूं और जैसी परिकल्पना कर रहा हूं, इसके भीतर कोई सच्चाई है या नहीं? मां, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? मां, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो, कहो मां, कहो।
1: उन्होंने भक्तों को बुलाकर कहा,
2: बच्चों, मैं मां की इच्छा उनसे ही जान लेना चाहता हूं, पर यह तो अंधकार में कूदकर गिरने के अलावा और कुछ नहीं है। अतएव मां को प्रमाण देना होगा कि ये उन्हीं की इच्छा है। यदि ये उनकी इच्छा है तो धन अपने आप आ जाएगा। अतः ये रुपए ले जाओ और गरीबों में बांट दो।
0: शिष्यों ने उनका आदेश सुनकर अवाक होने पर भी उसका पालन किया और स्वामी जी ने अनुभव किया मानो उनके कंधे से एक बोझ उतर गया। उनका इस समय का मनोभाव हैदराबाद से अपने शिष्य आलासिंगा को लिखित एक पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। पत्र से ज्ञात होता है कि वे अमेरिका जाने के लिए उत्सुक थे, पर घटना चक्र से जाने की व्यवस्था न होने के कारण उसे भगवान का विधान समझकर किसी को दोष नहीं देना चाहा। पत्र का अंश इस प्रकार है,
2: अत्यंत दुख के साथ तुम्हें यह सूचित कर रहा हूं कि इस समय मेरे लिए पुनः राजपुताना लौटना संभव नहीं है। अभी से यहां अत्यंत गर्मी पड़ रही है, पता नहीं राजपुताने में और भी कितनी भीषण गर्मी होगी, और मैं गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। अतः इसके बाद यहां से मुझे बंगलोर जाना पड़ेगा। और ऊटक मंड जाकर मुझे गर्मी बिताना है। गर्मी में मानो मेरा दिमाग खोल जाता है। अतः मेरी सारी योजना काफूर हो गई और इसलिए मैं पहले ही मद्रास से जल्दी चल देने के लिए व्यग्र था। तब मुझे अमेरिका भेजने के लिए उत्तरी भारत के किसी राजा का सहयोग प्राप्त करने के लिए महीनों का समय मिल जाता, किंतु क्या करूं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। पहले तो ऐसी गर्मी में कहीं दौड़ धूप न कर सकूंगा, ऐसा करने से मुझे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा, और दूसरे राजपुताने के मेरे घनिष्ठ मित्र मुझे पाकर अपने पास से हिलने न देंगे और मुझे वे पश्चिम देश में जाने भी न देंगे। अतः अपने मित्रों से न मिलकर उसी नए व्यक्ति का आश्रय लेने का मेरा विचार था, परंतु मद्रास में विलंब हो जाने के कारण मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। अत्यंत दुख के साथ अब उस प्रयास को त्याग देना पड़ा। ईश्वर की जो इच्छा हो वही पूर्ण हो, किंतु तुम प्रायः निश्चित समझो कि मैं जल्दी ही दो एक दिन के लिए मद्रास आकर तुम लोगों से मिलने के बाद बंगलोर और फिर वहां से ऊटक मंड जाऊंगा। देखूं यदि मैसूर के महाराजा मुझे भेज दें।
1: बातों बातों में हम लोग हैदराबाद आ गए हैं, पर अभी मद्रास का विवरण खत्म नहीं हुआ। धन संग्रह की चेष्टा विफल होने पर स्वामी जी ने पुनः धर्म चर्चा में मन लगाया। स्वदेश प्रेमी सन्यासी उन दिनों मानो असहाय बालक की तरह माँ की पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें मालूम था माँ की जो इच्छा होगी वही होगा, उनके आदेश के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता।
0: मद्रास के भक्तों से स्वामी जी के गुणों का समाचार पाकर हैदराबाद के लोग उन्हें अपने बीच पाने के लिए उत्सुक हो उठे। ये आमंत्रण स्वामी जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया। श्री मन्मथ भट्टाचार्य ने निजाम राज्य के अधीक्षक अभियंता अपने मित्र श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय को तार द्वारा सूचित किया कि स्वामी जी 10 फरवरी को हैदराबाद पहुंचकर उनके अतिथि होंगे। संवाद प्रचारित होते ही लोग उत्साह से भर गए। स्वामी जी हैदराबाद स्टेशन पर उनके स्वागतार्थ मौजूद लगभग 500 लोगों की भीड़ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। स्टेशन जयकारे से गूंज उठा।
1: इन लोगों में थे राजा बहादुर श्रीनिवास राव, महाराजा बहादुर रंभा राव, पंडित रतनलाल, कैप्टन रघुनाथ, शमसुल उलेमा, सैयद अली बिलग्रामी, नवाज बहादुर इमाद, नवाज जंग, नवाब बहादुर सिकंदर नवाज जंग, मिस्टर एच दोराबजी, मिस्टर एम एस मांडन, राय हुकुमचंद, सेठ चतुर्भुज, सेठ मतिलाल एवं श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय तथा उनके पुत्र श्री कालीचरण बाबू, जो स्वामी जी को उनके कलकत्ता रहने के समय से ही पहचानते थे, अतः उन्होंने ही आगे बढ़कर सबसे उनका परिचय करा दिया। फिर स्वामी जी को पुष्पमालाओं से लाद दिया गया। उस दिन वहां उपस्थित एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा था,
5: स्वामी जी उस समय एक परम बलिष्ठ युवक परम हंस की वेशभूषा में हाथ में कमंडल धारण किए हुए प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतरे। उन्हें मधुसूदन बाबू के बंगले में ले जाया गया और अनेक संभ्रांत नागरिक उनके साथ साथ वहां गए। जो लोग स्टेशन नहीं जा सके थे वे बंगले में उनका दर्शन करने आए। निश्चित ही हम लोगों ने हैदराबाद में किसी सन्यासी का स्वागत करने उमड़ी ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक भव्य स्वागत समारोह था, बिल्कुल एक प्रतापी राजकुमार के उपयुक्त।
0: 11 फरवरी के प्रातःकाल सिकंदराबाद के लगभग 100 लोग फल मिठाई और दूध लेकर उनके समीप उपस्थित हुए और वहां के महबूब महाविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए उनसे अनुरोध किया। स्वामी जी 13 फरवरी को व्याख्यान देने को राजी हुए। उसके बाद वे कालीचरण बाबू के साथ गाड़ी पर गोलकुंडा का इतिहास प्रसिद्ध किला देखने गए। अपने निवास स्थान में लौटकर उन्होंने देखा कि हैदराबाद के महाराजा के साले नवाब बहादुर सर खुर्शीद जाह, अमीरी ई कबीर, KCSI के प्राइवेट सेक्रेटरी ने अपने एक नौकर को पत्र के साथ उनके पास भेजा है। इस पत्र में ये अनुरोध किया गया है कि वे दूसरे दिन प्रातःकाल राजप्रसाद में आने की कृपा करें। यथा समय कालीचरण बाबू के साथ वहां पहुंचने पर नवाब बहादुर के एड डी कैंप ने उनका स्वागत किया। नवाब खुर्शीद जाह धर्म के संबंध में अत्यंत उदारवादी थे तथा वे हिमालय से कन्याकुमारी तक हिंदुओं के सभी प्रमुख तीर्थों का श्रद्धापूर्ण हृदय से दर्शन कराए थे। उन्होंने स्वामी जी का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन लोगों में 2 घंटों तक हुई बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्मों के सार तत्व के संबंध में गंभीर चर्चा की। नवाब बहादुर हिंदुओं की साकार उपासना के विरोधी और एक पक्के मुस्लिम की तरह निराकार उपासना के पक्षधर थे। स्वामी जी ने इस विरोध के समाधान की भी चेष्टा की।
1: नवाब के साथ स्वामी जी की घंटों चर्चा हुई। नवाब बहादुर उनकी विद्वता देख मुग्ध हो गए। विचारों के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर स्वामी जी ने नवाब के मन में ये विश्वास उत्पन्न किया।

0: सभी जीवों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अध्यात्म से प्रभावित मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ही संसार के सारे उच्च तत्वों का आविष्कार हुआ है तथा उसके सहारे ही मनुष्य अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देवत्व में प्रतिष्ठित हुआ है।
1: अंत में उन्होंने पाश्चात्य देश जाकर सनातन धर्म के प्रचार की अभिलाषा व्यक्त की। नवाब बहादुर ने उनकी वाग्मिता और कथनों से मुग्ध होकर कहा था,
2: स्वामी जी, आपके इस प्रयत्न के लिए मैं 1,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ।
3: पर स्वामी जी ने पैसे नहीं लिए, कहा कि यात्रा की सारी प्रस्तुति हो जाने पर ले लेंगे।
1: इसके बाद 12 फरवरी को उन्होंने हैदराबाद के कई दर्शनीय स्थानों, मक्का मस्जिद, चार मीनार, फलकनामा, बशीरबाग, निजाम के राजमहल और अन्य अनेक दर्शनीय महलों आदि का दर्शन किया। 13 फरवरी सुबह उन्होंने तय व्यवस्था के अनुसार हैदराबाद के प्रधानमंत्री सर आसमान जाह, KCSI, राज्य के पेशाकार महाराज नरेंद्र कृष्ण बहादुर एवं महाराजा शिवराज बहादुर से मुलाकात की। इनमें से प्रत्येक ने उनके अमेरिका में प्रचार के लिए सहायता प्रदान करने का वचन दिया। शाम को महबूब महाविद्यालय में मेरी पाश्चात्य यात्रा का उद्देश्य विषय पर उनका व्याख्यान हुआ। पंडित रतनलाल ने उस सभा की अध्यक्षता की। अनेक यूरोप वासियों के साथ 1,000 से अधिक श्रोता सभा में उपस्थित थे। अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़, उनका ज्ञान, शब्द विन्यास का माधुर्य और भाव भंगिमा देखकर सबके सब प्रभावित हो गए।
3: दूसरे दिन बेगम बाजार के व्यापारियों ने सेठ मोतीलाल के नेतृत्व में उनसे साक्षात्कार किया और कहा वे उनकी सहायता करने को तैयार हैं। स्थानीय थियोसोफिकल सोसाइटी एवं संस्कृत धर्म मंडल सभा के कोई कोई सदस्य भी मिलने आए। 15 फरवरी को पुणे से उनके नाम एक तार आया। उस तार के द्वारा पुणे की विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें वहां आने का अनुरोध किया था। उत्तर में स्वामी जी ने सूचित कर दिया कि उनके लिए तत्काल जाना संभव नहीं होगा, भविष्य में वे आने का प्रयास करेंगे।
1: 16 फरवरी को स्वामी जी ने मंदिरों के खंडहरों, बाबा सरफुद्दीन का मजार और सर सालार जंग के महल को देखा। 17 फरवरी को मद्रास से लौटते समय रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। श्री कालीचरण बाबू ने लिखा है, उनकी पवित्र सरलता, सतत आत्मसंयम एवं गहन भाव ने हैदराबाद वासियों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दी थी और उसके बाद वे मद्रास चले गए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की

कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम यूं ही जारी रहेंगे, मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। मिक्सलार एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। तो बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम तराने आजादी के।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन।
2: नमस्कार, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आदि शंकराचार्य रचित गंगा स्तोत्रम से। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे।

0: अब इसके बाद राग भोपाली में संक्षिप्त आलाप और एक प्रकृति की रचना है, प्रकृति की पूजा है।
1: एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि भोपाली भू को पालने वाली।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रही हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ज्वालामुखी।

डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता था, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं। किताबों को तो मैंने ना छूने की कसम खा ली थी। जिस दिन गजट में अपना नाम देखा, उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया। मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को देखा करता। जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी। मेरे दादा या परदादा ने किसी अंग्रेज को गदर के दिन बचाया होता, अथवा किसी इलाके का जमींदार होता, तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता। पर मेरे पास कोई सिफारिश न थी। शोक, कुत्ते, बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी, पर बीए पास का कोई पुरसा हाल न था। महीनों इसी तरह दौड़ते गुजर गए, पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर न आई। मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता था। ड्राइवर, फायरमैन, मिस्त्री, खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार न बैठना पड़ता। एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी। किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो। वेतन 1000 मासिक। मैं उछल पड़ा। कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती। उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया, पर अपने आत्मीय गणों में से किसी से इसका जिक्र ना किया कि कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाएं। मेरे लिए 30 रुपए मासिक भी बहुत थे। 1000 कौन देगा? पर दिल से यह ख्याल दूर न होता। बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता, फिर होश में आकर अपने आप को समझाता कि मुझमें ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है। मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूं, दुनिया से बेखबर। इस पद के लिए एक से एक विद्वान, अनुभवी पुरुष मुंह फुलाए बैठे होंगे। मेरे लिए कोई आशा नहीं। मैं रूपवान सही, सजीला सही, मगर पदों के लिए रूपवान होना काफी नहीं होता। विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूप आदमी की जरूरत नहीं, और ये उचित भी है, बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंचे पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता। मध्यम श्रेणी का तोंद, भरा हुआ शरीर, फूले हुए गाल और गौरव युक्त वाक्य शैली, ये उच्च पदाधिकारियों के लक्षण हैं, और मुझे इनमें से एक भी मयस्सर नहीं है। इसी आशा और भय में एक सप्ताह गुजर गया और मैं निराश हो गया। मैं भी कैसा ऊंचा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा। इसी को बड़कपन कहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, किसी दिल्लगीबाज ने आज के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए ये स्वांग रचा है। मुझे इतना भी न सूझा, मगर 8वें दिन प्रातः काल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। लपका हुआ आया, तार खोल कर देखा, लिखा था, स्वीकार है, शीघ्र आओ ऐशगढ़। मगर यह सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद न हुआ जिसकी आशा थी। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। किसी तरह विश्वास न आता था। जरूर किसी दिल लगीबाज की शरारत है, मगर कोई मुजायका नहीं। मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तार दे दूं कि 1 महीने की तनख्वाह भेज दो, आप ही सारी कलई खुल जाएगी। मगर फिर विचार किया, कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो दिल लगी ही सही, जीवन में यह घटना भी स्मरणीय रहेगी। इस तिलिस्म को खोल ही डालूं, ये निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो स्थान दक्षिण की ओर है। टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था। स्थान अति रमणीय है, पर जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं। हाँ, हष्ट पुष्ट नवयुवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता। दृश्य बहुत मनोहर है, पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं। यथा साध्य अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए। ये वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी। जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें, कहां नहीं है। मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा। आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला। पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि 2 ही 4 दिन में फिर अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तो सिगार और पत्रों में दिल बहलाता रहा, फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई। आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उषाकाल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, उन पर चरती हुई उजली उजली गाय और भेड़े सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी। जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती, जंगल के फल खाता, झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता।
यकायक दृश्य बदला। एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कमल खिले हुए थे, कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती चली जाती थी। ये दृश्य भी बदला। पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया, झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ, मानो शांति और संतोष ने यहां अपना निवास स्थान बनाया हो। कहीं बच्चे खेलते थे, कहीं गायों के बछड़े किलोल करते थे। फिर एक घना जंगल मिला, झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़ियां भरते दूर भाग जाते थे। ये सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे। उनमें एक अवर्णनीय शांतिदायिनी शोभा थी जिससे दृश्य में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे। आखिर ऐशगढ़ निकट आया। मैंने बिस्तर संभाला, जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया। मेरी छाती धड़कने लगी, गाड़ी रुकी। मैंने उतरकर इधर उधर देखा, कुलियों को पुकारने लगा कि इतने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप वहां से आ रहे हैं ना, चलिए मोटर तैयार है। मेरी बांछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य ना हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटेहाल में क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ, सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ था। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल संवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है, न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ क्योंकि अपने स्वामी के नाम से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विह्वल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील थी, और मैं, जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे, तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। उस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट ना हो जाएं और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर ना पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया। मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है। फूल में ठंडक है और सुगंध है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है, दीपक पर पतंगा जलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचोबी मसनत पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदर्य की प्रकाशमय ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना संभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वो नख शिख तक एक ज्वाला थी, वही दीपन, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभल कर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। यह स्थान पसंद आया? मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा।
हाँ, गाइडबुक देखने से विदित हुआ कि यहाँ की जलवायु जैसी सुखद प्रतीत होती है यथार्थ में वैसी नहीं। विषैले पशुओं की भी शिकायत थी। ये सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो ये चर्चा इसलिए कर दी थी कि जिससे प्रकट हो जाए कि यहां मुझे आने में कुछ त्याग करना पड़ा है, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पर क्षण भर में सूर्य मेघमंडल से बाहर आया और बोली, ये स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी होते हैं, और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो आप जैसे मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है। रहे विषैले जीव जंतु तो वह आपके नेत्रों के सामने विचर रही हैं। अगर मोर हिरण हंस विषैले जीव हैं तो निसंदेह है यहां विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न हो गया। गर्व से बोला, गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है। इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया और वो बोली, आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और ये मनुष्य का एक उच्च गुण है। मैं आपका चित्र देखते ही समझ गई थी। आपको ही सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास 100,000 से अधिक प्रार्थना पत्र आए। कितने एमए थे और कोई डीएससी था या कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था। मानो मुझे यहाँ किसी दार्शनिक विषय की जांच करानी थी। मुझे अब की ये अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी, मानो देश में लेखकों और पंडितों की ही आवश्यकता है। कालगति का लेशमात्र भी परिचय नहीं है। प्राचीन कर्म कथाएं अब केवल अंध भक्तों के रसास्वादन के लिए ही हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। यह भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे। कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थीं जिन्हें देखकर घंटों हंसी। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा दिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूं। मैं उस विद्या को रोग समझती हूं जो मनुष्य को वनमानुष बना दे। आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं। तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया। मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह्य गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं। और एक सुंदरी के मुखकंठ से वो चलते हुए जादू के समान है। मैं कह उठा, यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर ना मिलेगा। सुंदरी ने मेरी ओर प्रशंसा पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है। वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करती हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूं। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है। देखिए, ये आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस्क प्राप्त हो चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपयोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना खर रहा है। आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? इनको उत्तर दीजिए कि इस कूटनीति से काम लो। अपने भतीजे को कपट प्रेम से मिला लो और जब वो निशंक हो जाए उससे एक सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो। इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिखा लो। यदि 1 लगाकर 2 मिलते हों तो आगा पीछा मत करो। ये उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। नीति ज्ञान को धक्का सा लगा। सोचने लगा, ये रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है? ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को राय न देगा। उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला, ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, न्याय की भली कही आपने। ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है, संसार में इसका अस्तित्व नहीं। आप ऋण लेकर मर जाएं, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे, विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं, मैं घोर अत्याचार समझती हूं। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है। एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है,
लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं, किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितनों का गला दबाया और इस प्रकार संचय किया कि किसी को भी आंख दिखाने का साहस ना हुआ। डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। मैं इसे न्याय नहीं कहती। संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है, यही जीवन संग्राम है। यहां प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकें, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। ये देखिए, ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है। वो कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया, प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई बात भी नहीं पूछता। अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये केवल धार्मिक नियम है। 3 साल में घर की पूंजी भी खा चुका, अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं। मुझ हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनवाइए और झूठे दावे चलवाकर उनकी डिग्री करा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा। ये देखिए, एक और सज्जन कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है। जहां जाता हूं लोग दहेज की गठरी मांगते हैं। यहां पेट की रोटियों का भी ठिकाना नहीं। किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं, चारों ओर निंदा हो रही है। जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए। वो दहेज लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं। शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और आजन्म वो आपका यश गाएंगे। मुझे यहां रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूं। इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहां से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य का ही आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में आ फंसा हूं। इन जिज्ञासुओं का इस रमणी से क्या संबंध है, ये भेद भी न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता था। उसके सम्मुख जाते ही मैं चेत सा हो जाता था। उसके चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था। मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छुपी हुई आंखों से उसे देखा करता था। पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक शांति का अनुभव होता था। उसकी चितवनें केवल हृदय को वाणी के समान छेदती थी। उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त रखते थे। शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है, वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था। वो एक सौंदर्य ज्वाला जलाने के सिवाय और क्या कर सकता है। तिस पर भी मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था। यही आकांक्षा होती थी कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल एक उपासक की भक्ति थी, काम और वासना से शून्य। कभी कभी जब वो संध्या समय अपनी मोटर बोट पर बैठकर सागर की सैर करती, तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश में तैर रहा है। मुझे इस दृश्य में अनुपम सुख प्राप्त होता था। मुझे अब अपने नियत कार्यों का खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता था। मालूम नहीं कि डाक से आता था, लिफाफों पर कोई मुहर न होती थी। मुझे इन जिज्ञासुओं में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी। बड़े बड़े विद्वान, लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहां तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वो सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को अपनी भाषा का स्तंभ समझता था, उनसे घृणा होने लगी। वो केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी, अनुवाद और कतर ब्योत पर निर्भर थी। जिन धर्मों के आचार्यों को मैं पूजता था, वो स्वार्थ तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे।
मुझे धीरे धीरे ये अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में समझता था कि मेरे बांकेपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया। यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था। जो ही मैं पहुंचा, उस लावण्यमय ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, पर मुखचंद्र कुछ मलिन था। मैंने अधीर होकर पूछा, सरकार का जी तो अच्छा है? उसने निराश भाव से उत्तर दिया, जी हां, एक कठिन रोग में फंस गई हूं। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं, पर अब रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि एक निर्दयी मनुष्य के पास है। वो मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, सांस बड़े वेग से चलने लगी। मैं एक उन्मत्तता का अनुभव करने लगा। निर्भय होकर बोला, संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो वो भी आपको ऐसा समझता हो और भय से मुख खोलने का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपनी हृदय की दहकती हुई विरह अग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है। मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे। मेरे पास वो साधन है जो आपकी कीर्ति को शिखर पर पहुंचा देंगे। समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूं। बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूं। आइए मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी। वो दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है, उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। उसकी इस प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया, जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों से सोने की ईंट लेते समय भयभीत हो जाए। मेरा चित्त एक अज्ञात शंका से कांप उठा। रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा, मानो किसी सिंहनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए, और सरोष होकर बोली, ये भीरुता क्यों? मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं, इस महान आदर का पात्र नहीं। रमणी बोली, आप मुझसे घृणा करती हैं? ये आपका मेरे साथ अन्याय है। मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं। आप दीपक हैं, मैं पतंग हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली, वास्तव में आप बहुत निर्दयी हैं। मैं ऐसा ना समझती थी। आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बीड़ी आपके पैरों से नहीं निकली। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया, और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। ये गुप्त शक्ति क्या थी? मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने झील के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी, पर चेहरा तेजमय था। वो कभी कभी महल में आया करते थे। रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी, मन में उनसे कुछ डरती थी, उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है। उसका मुख फीका पड़ जाता, जाकर अपना मुख छुपा लेती। मुझे उसकी यह दशा देखकर कौतूहल होता था। कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा की थी, परंतु अत्यंत अपमान के भाव से। वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती, और यदि कभी उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी। उधेड़ बुन में पड़ा हुआ था। कभी जी चाहता, आओ
आंख बंद करके प्रेम रसपान करें, संसार के पदार्थों का सुख भोगें, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं। फिर आप ही आप मन कुछ खींच जाता, घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था, परंतु उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महात्मा जी निश्चिंत होकर बोले, अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूं, तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि यहां से चले जाओ। मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस मायाजाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे। मेरा झोंपड़ा तुम्हारे सामने था, मैं भी कभी कभी यहां आया करता था, परंतु तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी। यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्त्रों मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते। निसंदेह यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की। अगर ये पिशाचिनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। वो जिस पर रीझती है उसकी वही गत बनाती है, यही इसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो, तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफत से बचे। ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया, तुरंत एक दरवाजा निकल आया। ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी, महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया, उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमरकवि डेंटी ने नर्क का जो दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी और नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर मनुष्य कैसे थे लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गीदड़ से, कोई बन बिलाव से, कोई सांप से। एक स्थान पर मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुख लगाए उसका रक्त चूस रहा था। एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठ उसका मांस नोच रहे थे। एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था पर बालक उसके गले में अटका हुआ था। दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी। दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी। वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था। मुझसे अब और न देखा गया, तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया। महात्मा जी मेरे साथ चले आए। जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा, इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा। ये तुम्हारी स्वामिनी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाचाभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है। ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे, पर उनकी ये दुर्गति हो रही है। अब तुम्हें यही सलाह देता हूं कि दम यहां से भागो, नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि न बचोगे। ये कहकर वो महात्मा अदृश्य हो गए। मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला। शीतल आनंदमय समीर चल रही थी। सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे, मेहंदी की सुगंधी उड़ रही थी। मैं चलने को चला पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था। इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खींचता था। मैं कई बार चला, कई बार लौटा, पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई। मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता, कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुंचा। यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ, मानो कोई चिड़िया बाज के पंजों से छूट आई हो।

यद्यपि मैं एक मास के बाद लौटा था, पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में जरा भी गर्द या धूल न थी। मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो मुझे अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बुलाया करते हैं। सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। महीना भर गायब रहने की तो बात ही क्या। इसलिए मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा हो। कुछ भी हो, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया। चाहे स्वप्न ही हो, पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं, क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी।

0: तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ज्वालामुखी। फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
2: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
4: अच्छा?
2: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
4: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
2: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
4: कौन सी?
2: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
4: ये तो ठीक है।
2: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
4: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
2: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
4: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
2: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
4: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
2: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
4: बिल्कुल,
2: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
4: कौन से श्लोक?
2: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
4: अच्छा।
2: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
4: क्या?
2: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
4: भाई वाह, क्या बात है।
2: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
4: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
2: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
4: बिल्कुल।
2: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
4: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगाड़दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
2: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
4: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
2: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
2: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यही हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
4: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
2: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
4: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
2: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
4: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
2: कौन सा?
4: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
2: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दे कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
2: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
4: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन हैं, निराकार हैं। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
2: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
4: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
2: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
4: हाँ,
2: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
4: बिल्कुल,
2: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
4: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शानो शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
2: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में 80 नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
4: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
2: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
4: कौन सी?
2: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
4: बिल्कुल,
2: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
4: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाए, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
2: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
2: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
4: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
2: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
4: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
2: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
2: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा, सड़क पर जाम लगा है कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
4: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
2: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
4: बिल्कुल,
2: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
4: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियां, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
2: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
4: अच्छा,
2: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
4: जी।
2: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
4: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
2: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
4: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
2: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
4: हाँ।
2: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
4: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाई के पान बनारस वाला आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं।
2: हाँ।
4: श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
2: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
4: बिल्कुल।
2: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
4: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
4: बिल्कुल।
2: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
4: हाँ।
2: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
4: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
2: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति

0: जिसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
1: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे। सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही बीएचयू के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का बीएचयू की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है, वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन।

अब जो बंदिश सुना रहा हूँ इसमें साहित्यिक शब्दों का उपयोग नहीं है। स्वरों को इस प्रकार से गठन किया है, वो शब्द का काम भी करते हैं। यमन कल्याण में

बोल हैं, नीर गगरी गिरी नार से, नीर नीरे गगरी गगरे गिरी गरे नार नार नीरे सा, सिर सगरी गंगा मग गिर परी, नीर गगरी गिरी नार से।

ये इस बंदिश की खास बात यही है कि अलग से शब्दों का उपयोग नहीं है, केवल स्वरों को इस प्रकार से योजनाबद्ध किया है कि वही शब्द का काम भी करते हैं।

अंतिम प्रस्तुति चैती की है जो परंपरागत है। इसके बोल हैं, हथवा लगत कुमलाय गैल रामा

आज के इस कार्यक्रम में आपने पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के छठवें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं सोमाहूति भार्गव, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री।
3: इमाम मे अग्ने समिध मीमा मुपसदम वनेह, इमा ऊषुश्रुधि गिरह। हे अग्निदेव, आप हमारी इन समिधाओं तथा आहुतियों को स्वीकार करते हुए हमारे स्तोत्रों को भली भांति सुने। आयाते अग्ने विधे मोर्जो नपादश्वमिष्टे एना सूक्तेन सुजात। हे शक्ति को क्षीण न करने वाले, द्रुतगामी, साधनों में गति प्रदान करने वाले, उत्तम ख्याति वाले अग्निदेव, हमारी इस यज्ञ क्रिया तथा सूक्त से आप प्रसन्न हो। तम त्वा गीर्भिर् गिर्वर्णसम द्रविणस्युम द्रविणोदः सपर्येम सपर्यवः। हे ऐश्वर्य प्रदाता अग्निदेव, आपकी प्रतिष्ठा चाहने वाले हम आपके स्तुत्य तथा धन प्रदान करने वाले स्वरूप की स्तुतियों के द्वारा पूजा करते हैं। सबोधि सूरिर मघवा वसुपते वसुदावन युयोध्यस्मद द्वेषांसि। हे ऐश्वर्य प्रदाता धनाधिपति अग्निदेव, आप ऐश्वर्यवान तथा ज्ञानवान होकर हमारी कामनाओं को जानते हुए द्वेष करने वाले हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करें। स नो वृष्टिम दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम स नह सहस्रीणी ऋषः। अंतरिक्ष से वे अग्निदेव हमारे लिए वृष्टि करें, वे हमें श्रेष्ठ बल तथा हजारों प्रकार का अन्न प्रदान करें। ईडा नायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा यजिष्ठ होतरा गहि। बलशाली तथा अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुष्टों को पीड़ित करने वाले होता रूप हे अग्निदेव, आपके संरक्षण की कामना से स्तोत्र रूप वाणियों से हम आपका पूजन करते हैं, अतः आप हमारे पास आएं। अंतर यज्ञ ईयसे विद्वान जन्मो भया कवे दूतो जन्येव मित्र्यः। हे मेधावान अग्निदेव, आप मनुष्यों के हृदयाकाश में विद्यमान रहकर उनके दोनों वर्तमान तथा पिछले जन्मों को जानते हैं। आप मित्र तुल्य सभी के हितकारी हैं। स विद्वां अच पिप्रयो यक्षी चिकित्व आनुषक आ चास्मिन सत्सी बरिहिषी। हे अग्निदेव, आप ज्ञानी हैं, अतः हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। आप चैतन्यता युक्त हैं, अतः हमारे हविष्यान्न को यथा क्रम से देवताओं तक पहुंचाकर हमारे इस यज्ञ में प्रतिष्ठित हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के छठवें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। भगवान की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती।

और सब घट व्यापक साइया अगम अपार अलेख। तो जो वह एक न जान

ईश्वर की पवित्र मंगलमय कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

परमात्मा को जो प्रसन्न कर सकता है वह संसार को भी प्रसन्न कर सकता है। प्रभु की कृपा होने पर संसार स्वयं अनुकूल हो जाता है।

इसी रचना के साथ आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
2: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
3: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
4: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
3: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
4: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
3: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

किसी भी राष्ट्र का इतिहास केवल युद्धों और तारीखों से नहीं बनता, वो बनता है उन लोगों से जिन्होंने अपने समय की आवाज सुनी और अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महान राष्ट्रसेवी थे पंडित हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने अपने शब्दों से जागरण का बीज बोया, गांवों में स्वावलंबन का सपना जगाया, खादी में अपना आत्मसम्मान संजोया और गांधी दर्शन को अपने जीवन का पथ बनाया। साहित्य से स्वाधीनता तक, पत्रकारिता से जनसेवा तक और गांधी जी के सानिध्य से राष्ट्र निर्माण तक उनकी पूरी जीवन यात्रा भारत को बेहतर बनाने की यात्रा थी। पंडित हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 24 मार्च सन 1892 को उज्जैन के पास स्थित भमरासा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सिद्धनाथ उपाध्याय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई और उसके बाद आगे की शिक्षा उज्जैन में हुई। वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के स्वाध्यायी छात्र थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों और हिंदी साहित्य से भी गहरा अनुराग था। उनकी शिक्षा में डॉक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर का विशेष योगदान था और फिर यही रास्ता उन्हें हिंदी साहित्य के उस विराट व्यक्तित्व तक ले गया जिनका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहीं से हरिभाऊ उपाध्याय के जीवन ने कलम को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया, उन्होंने यहीं से समाज निर्माण का दायित्व भी ग्रहण किया। उनकी शिक्षा जारी थी तभी उन्होंने औदुम्बर नामक मासिक पत्र के संपादन का दायित्व संभाला। इस तरह सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश राजनीति के माध्यम से नहीं बल्कि पत्रकारिता और साहित्य सेवा से हुआ। इसे ही उन्होंने भारत माता की सेवा का माध्यम बनाया।

औदुम्बर पत्रिका ने ही हरिभाव उपाध्याय को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तक पहुंचाया। सन 1915 में वो द्विवेदी जी के संपर्क में आए और प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में काम किया। सरस्वती के बाद उनका संबंध गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप से हुआ। वो प्रभा से भी जुड़े और आगे चलकर गांधी जी के हिंदी नवजीवन के संपादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह एक पत्रकार से एक राष्ट्र सेवक की उनकी यात्रा आरंभ हुई। पंडित हरिभाव उपाध्याय के जीवन पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने स्वयं लिखा है कि गांधी जी को उन्होंने पहली बार सन 1915 में लखनऊ अधिवेशन में देखा था और उस पहली झलक ने ही उनके भीतर जैसे बहुत कुछ बदल दिया। इसके बाद चंपारण से लौटते हुए गांधी जी को उन्होंने कानपुर में देखा। उनकी सादगी, सहजता और तेज ने हरिभाव उपाध्याय को भीतर तक प्रभावित किया और जब इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने गांधी जी को देखा तब तक ये आकर्षण श्रद्धा में बदल चुका था। सन 1921 में जब हरिभाव उपाध्याय की भेंट मुंबई में गांधी जी से हुई तब वो एक पत्र निकालना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उनके भीतर एक व्यापक संभावना देखी, हिंदी में गांधी जी के विचारों को जनता तक पहुंचाने की संभावना। इस तरह पंडित हरिभाव उपाध्याय का जीवन गांधी आश्रम की ओर मुड़ चला। उन्होंने यंग इंडिया और गुजराती नवजीवन को हिंदी में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हिंदी नवजीवन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन पर गांधी जी का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक तौर पर भी हुआ। सत्य, अहिंसा और खादी के विचार उनके भीतर गहरे उतरते चले गए और वो स्वयं को अहिंसक सेवा का सिपाही मानने लगे। गांधी जी के संपर्क ने उनके भीतर ये विश्वास पैदा किया कि स्वराज केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति का नाम नहीं है, स्वराज का अर्थ है कि गांव अपने पैरों पर खड़े हों, किसान अपने श्रम का सम्मान पाए, स्त्री शिक्षा पाए, अस्पृश्यता छूटे, युवा चरित्रवान बने, खादी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने और साहित्य जनता की चेतना को जगाए। गांधी जी के निर्देश पर हरिभाव उपाध्याय ने अजमेर को अपनी कर्म भूमि चुना। हटुंडी में उन्होंने गांधीवादी कार्यों का केंद्र विकसित किया। सन 1927 में यहां गांधी आश्रम की स्थापना हुई। ये आश्रम केवल भवन नहीं था, ये विचारों की प्रयोगशाला था। यहाँ खादी, सेवाग्राम, सामाजिक सुधार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किए गए। महिला शिक्षा पर जोर देते हुए हरिभाव उपाध्याय ने हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। बिजौलिया मेवाड़ का वो क्षेत्र था जहाँ किसान लंबे समय से करों और विभिन्न प्रकार के शोषण से परेशान थे। विजय सिंह पथिक ने किसानों को संगठित किया था। ये आंदोलन लंबा चला। बिजौलिया किसान आंदोलन में आगे चलकर हरिभाव उपाध्याय भी किसानों के बीच पहुंचे। जमनालाल बजाज के साथ उन्होंने ऊपरमाल क्षेत्र के किसानों के प्रश्नों को समझा और समाधान का प्रयास किया। उनका रास्ता सत्य, अहिंसा, संवाद और न्याय का रास्ता था। ये गांधी जी का रास्ता था।

पंडित हरिभाव उपाध्याय ने सरस्वती, प्रताप, प्रभा, हिंदी नवजीवन और त्याग भूमि जैसे पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य तो किया ही, उनका एक और महत्वपूर्ण कार्य था सस्ता साहित्य मंडल। जमनालाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला, हरिभाव उपाध्याय और उनके अन्य सहयोगियों ने उच्च स्तरीय राष्ट्रीय साहित्य को सामान्य जनता तक सस्ते मूल्य में पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। सन 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, परिणाम स्वरूप वो गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो गिरफ्तार हुए। इसी तरह इंदौर मजदूर आंदोलन और राजस्थान के विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। उनका एक और बड़ा योगदान था साहित्य को समाज की शक्ति बनाना। पंडित हरिभाव उपाध्याय मूलतः साहित्यकार थे। राजनीति उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है राष्ट्र सेवा, लेकिन साहित्य उनकी आत्मा में था। उनकी भाषा में अनावश्यक आडंबर नहीं था, उनकी भाषा सरल और प्रांजल थी, जिसमें विचारों की स्पष्टता थी, साथ ही जीवन के अनुभवों से निकली हुई संवेदना भी थी। उनकी रचनाओं में गांधीवाद केवल सिद्धांत के रूप में नहीं आता, वो जीवन की साधना बनकर आता है। साधना के पथ पर इस पुस्तक में अहिंसा के अनुभव हैं, गांधीवादी जीवन का स्पर्श करती उनकी किताब है बापू के आश्रम में। सर्वोदय की बुनियाद इस किताब में समाज के सर्वांगीण विकास की चिंता है और उनकी कृति स्वतंत्रता की ओर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करती है। भागवत धर्म, मनन, पुण्य स्मरण, दूर्वा दल, प्रियदर्शी अशोक, हमारा कर्तव्य और युगधर्म जैसी कृतियों में उनके विचारों की विविध दिशाएं दिखाई देती हैं। लेखन के साथ साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद भी किया, जिसमें गांधी जी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद भी शामिल है। पंडित हरिभाव उपाध्याय ने महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हटुंडी में स्थापित गांधी आश्रम के अंतर्गत उन्होंने जिस महिला शिक्षा सदन की नींव रखी थी, वो नारी शिक्षा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यहां लड़कियों को न केवल किताबी ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें खादी, कताई, बुनाई, गृह विज्ञान, हस्तशिल्प, संगीत, प्राथमिक चिकित्सा और गांधीवादी जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती थी। यहां से निकली महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम, शराबबंदी अभियानों और अन्य समाज सुधार आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1952 में वो अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने और प्रशासन को गांधीवादी दृष्टि से जनसेवा का माध्यम बनाया। 1956 में अजमेर राज्य राजस्थान में विलीन हो गया। इसके बाद भी उन्होंने शिक्षा, पंचायत, खादी एवं ग्रामोद्योग, सामुदायिक विकास और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में विशेष कार्य किए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक वो साहित्य सृजन करते रहे तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वो लेख लिखते रहे। सन 1966 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 25 अगस्त सन 1972 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आमने सामने। आप सभी का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन यानी आपस में बातचीत करना, और स्किल यानी प्रभावी तरीके से, जिसे हम संचार कौशल कहेंगे। श्रोताओं, अपने विचारों, भावनाओं को या किसी सूचना को दूसरों तक प्रभावी ढंग से कहना, अपनी बात को रखना एक बड़ी कला है, ताकि सामने वाला आपकी बात को सुने और समझे। कई बार हम अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो कार्यक्रम में आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं कि अपनी बात की बात कैसे बने। श्रोताओं, हमारी बातचीत में बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं, हमारे शब्द स्पष्ट हैं या नहीं, हमारी भाषा, हमारा लहजा कैसा है, समय, परिस्थिति, सामने वाले की मानसिक अवस्था, इतनी सारी चीजों का भी ध्यान तो रखना पड़ता है ना। तो आज कम्युनिकेशन स्किल पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत स्टोरी टेलर के फाउंडर श्री अविरल पवार। सर नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके शब्दों में कम्युनिकेशन स्किल को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे।
3: कम्युनिकेशन स्किल, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ
1: जी,
3: और बेहद सरल भाषा में अगर मुझे उसे परिभाषित करना हो, तो मैं कहूँगा अपनी बात एक बेहतर ढंग से और प्रभावशाली ढंग से अगले व्यक्ति तक पहुँचाना
1: जी,
3: इसको मैं कम्युनिकेशन स्किल मानता हूँ
1: जी।
3: उसके बहुत सारे पहलू हैं, बट सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल का, वह यह है कि क्या जिससे आप बात कर रहे हैं वह आपको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है
1: जी।
3: अगला व्यक्ति आपको ठीक से समझ पा रहा है, वो आपकी बात को समझ पा रहा है और आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है
1: जी।
3: तो मेरे लिए आसान सरल भाषा में अपनी बात को कहने की क्षमता को मैं कम्युनिकेशन स्किल मानता हूं।
1: सर, कहते हैं ना कि जितना हम बोलते हैं उतना ही ध्यान से, धैर्य से हमें सुनना भी चाहिए, ये भी एक व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना कितना जरूरी है?
3: मुझे लगता है कि जितना ध्यान से बोलना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना। तो हम भी अपने सेशंस में और कार्यक्रमों में हम इस बात पे बहुत अधिक जोर देते हैं कि हमें लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी है
1: जी।
3: और लिसनिंग को मैं एक आर्ट मानता हूँ, ध्यान से सुनना भी एक कला है।
1: बिल्कुल।
3: अक्सर जो लोग सुनते हैं वे आपको रिएक्ट करने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं। ठीक है, मैं सुन तो रहा हूँ बट मेरे दिमाग में एक दूसरी बात, जिस बात से मैं आपकी बात को काटूंगा, वो मेरे दिमाग में पहले ही चलती रहती है। तो अगर आप इस भावना के साथ अगर आप सुन रहे हैं तो फिर उसे ध्यान से सुनना नहीं कहेंगे
1: जी।
3: और ये एक ध्यान से सुनना मुझे लगता है कि एम्पैथी का भी एक बहुत बड़ा, मैं इसको एलिमेंट मानता हूँ, कि अगर आप तब तक किसी से एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको ठीक से सुनेंगे नहीं। तो सुनना बेहद जरूरी है, ध्यान से सुनना। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से सुन नहीं पाता और सिर्फ धारा प्रवाह बोलने की क्षमता रखता है
1: जी,
3: तो मैं उसको एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं मानूंगा, क्योंकि आपके साथ कम्युनिकेशन फिर पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। अगर आप बोल रही हैं और मैं आपको बिना सुने सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश करूं, या मैं आपका प्रश्न ठीक से ना सुनूं और जो मेरे मन में है सिर्फ वही बोलता रहूं, तो फिर मैं भले ही कितनी अच्छी भाषा में बोलूं, कितने ही सुंदर शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं कहलाऊंगा, मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं बन पाऊंगा अगर मैं ठीक से सुनू नहीं।
1: बिल्कुल।
3: तो सबसे जरूरी मैं तो मानता हूँ कि जितना बोलना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा सुनना जरूरी है। और हम तो अपनी ट्रेनिंग्स में भी ये कहते हैं कि अपनी भाषा को कम से कम शब्दों में कहने के लिए आपको ठीक से सुनना बेहद जरूरी है।
1: सर, हमारे समाज में अक्सर होता ही है कि हम शब्दों की ओर तो ध्यान देते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान अक्सर कम ही जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बोलते वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज की कितनी भूमिका रहती है?
3: देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक वाइटल एलिमेंट, मैं कहूँगा एक बेहद जरूरी हिस्सा है कम्युनिकेशन का
1: जी।
3: क्योंकि आपकी बॉडी झूठ नहीं बोलती, आप अपने शब्दों से
1: जी
3: बोल सकते हैं
1: जी जी,
3: आप किसी की झूठी तारीफ कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको आप झूठा नहीं कर सकते। मतलब हम अपनी ट्रेनिंग्स भी देते हैं कम्युनिकेशंस पब्लिक स्पीकिंग की, तो हम कहते हैं कि ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कि जब आप बोलें तो आपके हाथ खुले हों, आप हाथ को बांध करके ना बैठें या क्लैस्प करना जिसको कहते हैं हाथों को, या मुट्ठी बांधना, या हम क्रॉस आर्म होकर बैठ जाते हैं, तो जब भी हम मंच से बोलें या हम किसी से बात करें तो कहा जाता है कि ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ओपन इसलिए होनी चाहिए, अब मैं आपको इसका ऐतिहासिक पहलू बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पुराने जमाने में जब इतनी सुरक्षा नहीं होती थी, मैं कई हजार साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है, तब जब अपने दोस्तों से मिलते थे तो खुले हाथों से मिलते थे, खुली बाहों से आप मिलते थे। क्यों मिलते थे? आपके उस मित्र को या आपके उस साथी को ये बताने का तरीका होता था कि मैंने कोई हथियार नहीं छुपाया है, कि अगर मैं हाथ पीछे करके आपसे मिल रहा हूँ तो हो सकता है कि मैंने कोई हथियार छुपाया हो। तो आज भी हमारी साइकोलॉजी में, हमारी साइकी में वो बात हमारे जहन में है कि अगर हम किसी को देखते हैं कि वो खुले हाथों से, खुले बाहों से हमसे मिल रहा है, तो हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए भी हमें ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसलिए आप किस तरह से स्टेज पे खड़े हैं, भले स्टेज नहीं, अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, आपके प्रश्नों के क्या उत्तर दे रहा हूँ, उसमें मेरे चेहरे के हाव भाव क्या हैं, तो ये सारी बातें बेहद जरूरी है। और बॉडी लैंग्वेज पे बिना ध्यान दिए कोई अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाएगा। तो ये एक और लिसनिंग के बाद मैं लगता है कि दूसरे नंबर पे मैं बॉडी लैंग्वेज को रखूंगा कि आपके क्या हाव भाव हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या जेस्चर्स हैं, वे सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं।
1: सर, जैसे आपने विश्वसनीयता की बात की कि खुले हाथों से मिलना जो है वो विश्वसनीयता को दिखाता है, हमारे आपस का जो विश्वास का भाव है, भरोसा है, हमें इंडिकेशन देता है। अब बॉडी लैंग्वेज में अगर हम गहराई से बात करें तो हमारे आव भाव, हमारी भाव भंगिमाएं, आई कॉन्टैक्ट हमारे शब्दों से पहले ही बहुत कुछ कह जाते हैं, और इसी से हमारा व्यक्तित्व भी बनता है। तो व्यक्तित्व निर्माण पर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए, व्यक्तित्व निर्माण एक बड़ी ही सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं देखता हूँ कि कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास हो रही है, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण कोई 2 घंटे की क्लास से नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
3: मेरा व्यक्तित्व जैसा आपके सामने है वैसा ही मेरा व्यक्तित्व हर जगह होना चाहिए, तभी वो व्यक्तित्व निर्माण होगा।
1: बिल्कुल,
3: मैं आपके सामने बेहद शालीनता से बात करूं और बाहर निकल करके मैं उदंड व्यवहार करूं तो मेरा व्यक्तित्व शालीन नहीं कहलाएगा। मैंने आपके सामने कुछ देर नाटक किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: वो मेरा अभिनय था आपके सामने। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी भाव भंगिमा आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। आप किस तरह से बैठते हैं
1: जी,
3: आप किस तरह से चलते हैं, सड़क पे आपका कैसा व्यवहार है, ये सब आपके व्यक्तित्व का ही हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
3: तो इसके लिए आप एक हफ्ते का क्रैश कोर्स या 2 महीने की क्लासेस करके आप अपना व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कहा कि एक सूक्ष्म प्रक्रिया है
1: जी,
3: और आपको धीरे धीरे धीरे धीरे वो कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि जब आप खड़े हैं तो आप कैसे खड़े हैं, जब आप बोल रहे हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपकी क्या भाव भंगिमा है। और वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, सटलनेस के साथ वो ग्रेजुअली वो आपका व्यक्तित्व उस तरह से बनेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप उस पाथ पर हैं, उस पथ पर हैं कि आपका व्यक्तित्व निर्माण की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको खुद में बदलाव दिखेगा। लेकिन वो बदलाव 2 या 3 महीने का बदलाव नहीं होगा, वो कई सालों का, कई वर्षों का बदलाव होगा।
1: बिल्कुल,
3: अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिली होती तो शायद मैं किसी अलग तरीके से बात कर रहा होता, और आज से आप 10 साल बाद मिलेंगी तो हो सकता है मुझमें और भी कुछ बदलाव दिखें।
1: बिल्कुल,
3: अब वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या अपने पॉजिटिव साइड में काम कर रहा हूँ या मैं नेगेटिव साइड में काम कर रहा हूँ, तो वो दोनों ही तरफ जाना संभव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: बट वो प्रक्रिया बहुत धीरे होती ही प्रक्रिया है, और उसको आपको, क्योंकि कैरेक्टर में आने के लिए आपको टाइम लगेगा। वो कहेंगे कि हाँ 21 दिन में आपकी हैबिट बदल जाएगी, हैबिट बदलना अलग चीज होती है, कैरेक्टर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज बिल्कुल ही एक अलग चीज है।
1: सर, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल पर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों में उच्चारण दोष होता है, जैसे हकलाना, तुतलाना, वाचिक एक समस्या होती है, तो इस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं कि शब्द जो हमारी जुबान में अटकते हैं, फंसते हैं, जैसे कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि स को श बोलना या श को स बोलना, या नींबू शब्द को लोग लींबू बोल जाते हैं, तो ना में ल का उच्चारण होना, तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सब अलग अलग व्यक्तियों की जुबान पर दिखते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं?
3: अगर कोई ऐसी समस्या है जो सिर्फ आपको है,
1: जी जी,
3: आपके घर में 4 लोग रहते हैं और सिर्फ आपको वो समस्या है, बाकी किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो फिर तो स्पीच थेरेपी और भी अन्य उपाय होंगे जो आप प्रैक्टिस करके उसको ठीक कर सकते हैं। बट मुझे कई बार लगता है कि जैसे आपने बोला कि श को स बोलना,
1: जी जी,
3: या शक्कर को शक्कर बोलना, ज को ज बोलना, ये कई बार कल्चरल भी होता है।
1: जी जी,
3: जैसे मैं बालाघाट जिले से आता हूँ, वहाँ की एक अपनी भाषा शैली है,
1: जी,
3: सभी लोग हिंदी बोलते हैं, बट हर जगह की भाषा में अपनी अलग एक बोली और उसका एक अलग इफेक्ट रहता है।
1: बिल्कुल।
3: तो एक तो एक कल्चरल प्रॉब्लम है, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, भले ये सोसाइटी का, मैं कहूंगा कि सामाजिक समस्या है।
1: जी, जी,
3: समस्या भी नहीं है वो, एक एक तरीका है, उसको समस्या कहना भी ठीक नहीं।
1: हाँ,
3: जीवन में ढल गई है।
1: जी, जी,
3: अब किसी ने बचपन से ही शक्कर को शक्कर बोला है, उसे किसी ने टोका नहीं, स्कूल को स्कूल बोला है, फिर ये है तो ये सामाजिक समस्या।
1: बिल्कुल।
3: बट ऐसी समस्या तो नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सके। पहले तो अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें कॉन्शियस होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे अंदर वो अवेयरनेस आ गई है कि मुझ में, मेरे उच्चारण में यह दोष है, या मुझे यह शब्द बोलने में परेशानी होती है, या मैं मिस प्रोनाउंस करता हूँ, या उसका उच्चारण नहीं करता ठीक से, तो मैं अपने कॉन्शियस एफर्ट से उसको ठीक करूँ।
1: बिल्कुल।
3: अभी भी मुझे कई बार षटकोण का श जो है वो मुझे समझ नहीं आता कि शक्कर के श और षटकोण के श में क्या अंतर है।
1: बिल्कुल। हाँ।
3: तो कहते हैं कि उसमें ज्यादा हवा निकलती है, उसमें कम हवा निकलती है।
1: हाँ।
3: बट क्या हमारे अंदर इतना ठहराव है कि हम रुक करके इस अपने इस उच्चारण दोष को ठीक कर पाए। अब दोष में भी षटकोण का श है, बट कितने लोगों से आप बात करती हैं और आपको उनके उच्चारण में, दोनों श के उच्चारण में अंतर, या किसको पता है? तो बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो आपको ये अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी कि हाँ मेरे अंदर ये समस्या है। उसके लिए आप खुद को रिकॉर्ड करिए, आप सुनिए, और फिर देखिए कि कहाँ मुझसे क्या त्रुटि हो रही है बोलने में। दूसरा जो इसका उपाय है, जो मुझे लगता है कि अक्सर हमसे गलतियां या ये उच्चारण दोष इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, हम तेजी से बोलने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम थोड़ा रुक करके पॉजेज लेकर के बोलना शुरू करेंगे, अगर हम एक वाक्य बोलने के बाद थोड़ा रुकेंगे, अपने अगले जो मन में विचार आ रहा है, जो बोलना है, उससे पहले थोड़ा रुक करके अगर बोलेंगे, थोड़ा धीमी गति से बोलेंगे, तो हमारे उस दोष की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, कि वो गलती करने की संभावना हमसे थोड़ी कम हो जाएगी। तो पहली बात तो अवेयरनेस, और दूसरा उपाय मुझे लगता है कि आपको थोड़ा धीमे बोलने का फिर प्रयास करना चाहिए, और फिर खुद को देखना चाहिए कि क्या मुझसे इस वाक्य को बोलने में, या इस शब्द को, या इस अक्षर को बोलने में कुछ गलती हो रही है। तो इस तरह से उच्चारण दोष ठीक किया जा सकता है। बट कुछ कुछ कई बार होता है कि व्यक्ति की जबान ही नहीं पलटती, तो वो कुछ एक चीजें हैं, फिर उसमें आप स्पीच थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। बट सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें गलती कर रहे हैं।
1: पता होगा तभी तो सुधार होगा।
3: हाँ, और फिर वो अपने जीवन की दौड़ भाग में इतना, क्योंकि देखिए उच्चारण दोष और ये सेकेंडरी चीजें हैं, ये आपके रोटी कपड़ा और मकान को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, अनलेस आपका करियर इस पे डिपेंडेंट हो।
1: बिल्कुल।
3: तो आप लोगों को देखेंगे जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस दोष से, वो ऐसे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन में, उनको जरूरत ही नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के। तो ये भी एक पहलू है।
1: सर, यूं तो कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमें तब और ज्यादा लगती है जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो कैसे वहाँ पर पहले से हम अपनी ऐसी कुछ तैयारी रखें कि हम अपनी इस स्किल को डेवलप कर सकें, कि हमारा जो वहाँ पर परफॉर्म है या प्रेजेंटेशन जो भी है वो हम अच्छे से दे सकें?
3: देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको धीरे धीरे खुद पे काम करना शुरू करना पड़ेगा कि अगर आपका इंटरव्यू एक हफ्ते बाद है तो आप आंसर्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बट अगर हम स्किल्स की बात करें तो किसी भी स्किल सेट को हमें एक्वायर करने में या उसको प्रभावशाली ढंग से अपनाने में समय तो लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जब आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI टूल्स आपके पास हैं, आप कोई भी एक AI टूल लीजिए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए, उस फाइल को अपलोड करिए, एक सिंपल तरीका, और उसको एक प्रॉम्प्ट दीजिए, उससे प्रश्न पूछिए कि क्या मेरे इस बोलने में, मैंने जो बात अपनी कही है, इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, और आपको वो कुछ ना कुछ आपको एक रिस्पांस मिलेगा वहां से, और अच्छा रिस्पांस मिलेगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा AI टूल यूज कर रहे हैं। तो आपको सही AI टूल यूज करके, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए तो हम देखते ही हैं
1: जी,
3: तो आप अच्छे कार्यक्रम देखिए OTT में, जो अच्छी सीरीज हैं जिसमें भाषा और संवाद अच्छा है, भले ही आप अंग्रेजी में खुद को निपुण करना चाहते हो, अंग्रेजी भाषा में या हिंदी में करना चाहते हो, जिस भी भाषा में आप करना चाहते हैं, ये मैंने किया है
1: जी जी।
3: क्योंकि जब हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू किया, जब मैंने शुरू किया उस समय बहुत ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, जब मैं कॉलेज में था 2010-11 में, तब बहुत स्लो इंटरनेट था
1: जी।
3: इंटरनेट रिवॉल्यूशन मेनली 2015-16 के बाद आया। मेरे लैपटॉप में कुछ वेब सीरीज रखी हुई थी तो मैं उसको देखता था, मेरे पास हमेशा एक डिक्शनरी होती थी, कि मुझे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, तो मुझे कोई भी नया शब्द मिलता था तो मैं उसको फटाफट अपनी डिक्शनरी खोलता था और उसका मीनिंग देखता था। तो आपको धीरे धीरे ये काम करना पड़ेगा और आपके पास बहुत सारे अनेकानेक आई थिंक मेरे ख्याल से टूल्स हैं आपके पास, AI टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकती हैं, तो आपको खोजना पड़ेगा। और आप जो भी आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप दिन भर रील्स देख रहे हैं तो आप क्या कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपका कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, क्योंकि जो आप कंज्यूम करेंगे फिर उसी तरह से आप बात भी करेंगे।
1: बिल्कुल।
3: तो एक कॉन्शियस एफर्ट अगर उस तरफ किया जाए तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
1: अच्छा सर, अब उच्चारण के बाद हम बात करते हैं आव भाव की भी, यानी दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो अपनी भाषा शैली में उच्चारण और हमारे आवभाव एक साथ हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मूला है या हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें कोई ट्रिक्स देना चाहेंगे आप?
3: देखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला और ट्रिक मुझे तो नहीं पता
1: जी,
3: हो सकता है हो भी, पर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कम फॉर्मूले और ट्रिक्स में, मैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के साथ काम करने में विश्वास रखता हूँ
1: जी जी,
3: तो उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले काम नहीं करते। बट एक जो मुझे तरीका समझ में आता है, जैसे अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं या आपको अपना डिक्शन सही करना है, उच्चारण सही करना है और आवभाव में भी काम करना है, आज हम सभी के पास स्मार्टफोन है।
1: बिल्कुल।
3: आप कोई भी एक किताब लीजिए, अखबार लीजिए, कैमरा को सेट करिए और आप कैमरे के सामने खुद को रिकॉर्ड करते हुए उसे पढ़िए और आप उस रिकॉर्डिंग को देखिए, आप उसमें ये देखिए कि आपके आवभाव में क्या आपको कमी दिख रही है, क्या वो चीज है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
3: इसमें कई बार हमारी कुछ आदत होती है कि हमारा चेहरा ट्वीक करेगा, कोई एक मसल हिलेगी, हम हाथों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
3: हम कई बार बात करते हुए बहुत सारे फिलर वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फिलर वर्ड्स मतलब
1: बिल्कुल,
3: क्रच वर्ड्स जिसको कहते हैं, जिसको बैसाखी की तरह लेते हैं कि हमें अगला शब्द नहीं पता या अगला विचार हमारे मन में नहीं आ रहा, तो हम इस तरह के शब्दों को, और अंग्रेजी भाषा में जब हम बोलते हैं कई बार, तो क्योंकि वो हमारी मातृभाषा नहीं है तो उसमें कई बार और भी हमसे इस तरह की त्रुटियां होती हैं
1: है। जी जी।
3: तो अगर आप खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, वो अपलोड करने के लिए आप रिकॉर्ड नहीं करें और कर भी लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है
1: जी।
3: पर आप खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करिए पढ़ते हुए, बोलते हुए, और खुद को देखिए कि क्या क्या कैसी आपकी भावभंगिमा है, क्या आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, आपको क्या चीजें हैं। और सबसे कठिन काम होता है खुद को देख करके खुद को सुनना।
1: बिल्कुल। स्वयं का आलोचक,
3: स्वयं का आलोचक होना और स्वयं को सुनना। मेरा बड़ा भय होता है, मैं कभी भी अपने पुराने रिकॉर्डिंग्स पे वापस नहीं जाता।
1: जी। अच्छा सर, एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि कुछ लोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए प्रश्न बहुत पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रश्न पूछना अच्छा माना जाता है?
3: प्रश्न पूछना तो अच्छा ही है क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, पर जरूरत से ज्यादा प्रश्न पूछना सही नहीं है, कम प्रश्न पूछना भी सही नहीं है, तो इसको ऑप्टिमाइज करना बड़ा जरूरी है। देखिए, आपने कहा कि ज्ञान वर्धन के लिए अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो तो अच्छी बात है, पर कई बार हम देखते हैं कि प्रश्न ज्ञान वर्धन के लिए नहीं पूछा जाता, कई बार सामने वाले को टेस्ट करने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, यह देखने के लिए कि क्या अगले व्यक्ति को यह बात आती भी है या नहीं आती। तो देखिए, ये एक व्यवहारिक विषय है, ये बिहेवियरल इशू है कि आप किस तरह से पब्लिक स्पेस में बिहेव कर रहे हैं, कि अगर आप किसी सेमिनार में हैं तो आपको बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आप नहीं हैं और भी लोग हैं, तो प्रश्न सटीक हो, प्रश्न
1: सार्थक हो
3: और उस विषय से रिलेवेंट प्रश्न हो, ये बेहद आवश्यक है
1: जी।
3: और अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न किसी को नीचा दिखाने की दृष्टि से या ज्यादा एयर टाइम लेने की दृष्टि से, ज्यादा फुटेज लेने की दृष्टि से पूछा जाए, तो फिर वो तो उसमें आपके लिए ही फिर वो नेगेटिव आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो प्रश्न पूछना गलत नहीं है, बट कहाँ और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है यह बेहद आवश्यक है।
1: सर, सार्वजनिक रूप से किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जहाँ हम अपने आप को एक अच्छा श्रोता या वक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं?
3: अगर आप सार्वजनिक रूप से बात करें तो तीन चार एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बेहद जरूरी हैं। एक तो होता है आई कॉन्टैक्ट, क्या आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखते हुए बात कर रहे हैं, या आप ऊपर देख रहे हैं, सीलिंग पे देख रहे हैं, या आप नीचे देख रहे हैं, जो आपकी नर्वसनेस को दर्शाता है। अगर आप खुद को एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट आपकी ऑडियंस के साथ होना चाहिए, और अगर बड़ा हॉल है तो कोशिश करिए कि आप सब तरफ एक एक बार जाएं, तो वो आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है
1: जी।
3: वो आपसे जुड़ाव महसूस करती है जब आप उनकी तरफ देख कर बात करते हैं, उनकी आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं। बट उसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि किसी एक सेक्शन को या एक व्यक्ति को पकड़ के सिर्फ उसकी तरफ नहीं देखना है, कई बार इस तरह की गलती लोग करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर ऑडियंस, जितने भी आपके श्रोता हैं, उन सभी की तरफ आपकी नजरें जाएं। एक एलिमेंट है आई कॉन्टैक्ट का। दूसरा है आपको साफ बोलना है
1: जी,
3: धीरे बोलना है, साफ बोलना है, ये एक दूसरा एलिमेंट मैं मानता हूँ। और डिपेंडिंग ऑन द इमोशन कि किस तरह का इमोशन है, अगर आप खुशी की बात कर रहे हैं तो आप धीरे नहीं बोलेंगे,
1: बिल्कुल।
3: अगर आप एक्साइटमेंट के साथ कोई न्यूज़ दे रहे हैं तो आपके इमोशंस और आप किस तरह से बोल रहे हैं वो चीज़ें मैच करनी चाहिए कि अगर मैं आपको कोई दुखी समाचार दूंगा तो मैं धीरे बोल के दूंगा, लेकिन अगर मैं आपको खुश समाचार दूंगा तो मैं आपको इस तरह से बात नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत उत्तेजना के साथ कि मैं फर्स्ट आया क्लास में या मैं ये अवार्ड जीत गया
1: जी जी,
3: एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो मुझे समझ में आता है कि आप किस तरह से खड़े हैं, आपका कैसा पोस्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की ओपन बॉडी लैंग्वेज की, तो अगर आप सार्वजनिक रूप से बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि आप ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें, आप अपने हाथों को बांध कर ना खड़े हों, आपके हाथ अत्यधिक मूव ना कर रहे हों, एक ऑप्टिमम तालमेल हो आपकी भाषा में, आपके शब्दों में और आपके हाथों के और आपके शरीर के मूवमेंट में, बॉडी मूवमेंट में। स्टेज पे बहुत ज्यादा आपको चलना नहीं चाहिए, स्टेज का जो मूवमेंट है वो पर्पसफुल होना चाहिए, वो उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। कई बार मैंने वक्ताओं को देखा है कि वो बहुत ज्यादा स्टेज पे आगे पीछे चलते हैं बिना किसी कारण के, तो आपका स्टेज का मूवमेंट भी एक पर्पसफुल मूवमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है।
1: सर, हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं, कई बार कठिन परिस्थितियों में हमारे मुंह से गलत शब्द भी निकल जाते हैं। कई बार जैसे होता है कि हम अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते, फिर बाद में लगता है कि अरे मुझे तो कुछ और बोलना था और मैं कुछ और बोल गया।
3: okay.
1: तो इस तरह की कुछ बातें और जो आप समझाना चाहते थे वो सामने वाले ने समझा नहीं, उसके मन में गलतफहमी हो गई। तो इस तरह से जब परिस्थितियां बनती हैं तो कैसे आप अपनी भाषा से उसको सुधारें?
3: आपको एक चीज समझनी बड़ी आवश्यक है कि जब भी आप स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो वो आपकी बात है
1: जी,
3: आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपको बोलना कुछ और था और आपने कुछ और बोल दिया, पर ये आपके श्रोताओं को नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले थे।
1: बिल्कुल।
3: तो अगर आपने कुछ ऐसी कोई त्रुटि की है जिसमें आपको बोलना कुछ और था और आप कुछ और बोल गए, तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको ये बताना नहीं है श्रोताओं को कि मैंने कुछ और बोलना था, मैं कुछ और बोल गया हूँ। पहली बात ये समझिए, अनलेस वो बहुत ही जरूरी जानकारी थी जो कि गलत रूप से आ गई, तो फिर आपको करेक्ट करना ठीक है कि आप गलत मैसेज नहीं जा रहा है। अगर आपका मैसेज उससे परिवर्तित नहीं हो रहा है, आपका जो संदेश आप देना चाहते हैं अपने भाषण से या जो, तो हम ये कहते हैं कि आप कभी भी अपने किसी एक शब्द को मिस कर जाने के लिए या कोई एक वाक्य अलग तरीके से बोलने के लिए माफी मत मांगिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है कि आपने गलत बोला है।
1: जी जी।
3: और दूसरा है अभद्र भाषा का प्रयोग
1: जी,
3: तो वो तो देखिए वो तो आपके चरित्र को दर्शाता है। तो कठिन समय में व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। अच्छे समय में तो सभी लोग अच्छी बातें करते हैं, आपके सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, पूरी दुनिया आपके हिसाब से चल रही है, तो आप तो वैसे ही अच्छे से बर्ताव करेंगे। चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब आपके पास सामने विपरीत परिस्थिति आती है और फिर आप किस तरह से बर्ताव करते हैं, आपकी भाषा में संयम है या नहीं है, आप किस तरह से खुद को पेश कर रहे हैं, वो तो फिर आपका वो कैरेक्टर डेवलपमेंट का ही पार्ट है।
1: सर, किसी बड़े संस्थान में या एक बड़े समूह की हम बात करें, जब आप मंच पर होते हैं तो पूरा ऑडियंस आपके सामने होता है और मंच पर ऑडियंस फेस करने के भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, तो कैसे आप उस स्थिति में, जब क्योंकि मंच पर आप अकेले हैं और पूरा फोकस पूरा ऑडियंस का आपके ऊपर है, तो कैसे आप अपनी भाषा से अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि इंसान के अंदर डर हो जाता है या इंसान नर्वस हो जाता है, तो अपने आप को किस तरीके से वहां पर अडिग रखना है, आत्मविश्वास से भरा हुआ रखना और अपनी बात श्रोताओं तक कहना है?
3: ये स्टेज

0: कि अगर आप बड़ी ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं तो हम कहते हैं उसको, उसको भाषा में हुक कहा जाता है, कि कैसे आप हुक करेंगे अपनी ऑडियंस को.
1: जी
0: वो आपस में बात कर रही होगी, हो सकता है कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड होंगे, तो आप एक प्रश्न के साथ शुरू करिए. जो आप प्रश्न करते हैं तो सबका ध्यान आपकी तरफ आता है, या कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आप शुरू करें.
1: जी.
0: बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप भले ही जितने भी नर्वस हों, आपको नर्वस दिखना नहीं है. तो जो हमने कहा कि ओपन बॉडी लैंग्वेज, सीधे खड़े होना, आपके कंधे सीना चौड़ा हो, कंधे तने हुए हों, पैरों के बीच जितना गैप होना चाहिए उतना गैप हो, और आपके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं हो बोलने की, बात को रखने की, तो लोग आपको अपने आप ही समझेंगे कि हाँ ये आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इनको किसी भी बात का कोई डर नहीं है, ये नर्वस नहीं है.
1: जी जी.
0: तो नर्वस आप भले ही अंदर से जितने भी हों, पर आपको दिखना जरूरी नहीं है कि आप नर्वस हैं.
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ बांटी है कम्युनिकेशन स्किल्स पर. तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स पर. हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे भारत स्टोरी टेलर के फाउंडर श्री अविरल पवार. सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप स्टूडियो में आए और आपने अपना इतना समय हमारे साथ साझा किया, हमारे श्रोताओं के लिए साझा किया.
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए.
1: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम आमने सामने. इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना. सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए.
2: आमने सामने. कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी. आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं.

0: आज होगा कहानी पाठ रश्मि शर्मा का।
1: मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है। इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई। अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैना बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजिता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की।
0: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वागर्थ में रश्मि शर्मा का कहानी पाठ।
1: भारत भवन भोपाल का धन्यवाद कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं सबसे पहले कहानी पढ़ना चाहूँगी, उसका शीर्षक है उसका जाना। चारों तरफ खामोश बेचैनी फैली है, आसपास के लोगों के चिंतामग्न चेहरे और उदास भाव मुझे और उदास कर रहे हैं। पिछली कई रातों से सोया नहीं हूँ। मन में बस एक बात ही घुमड़ती है कि अब क्या होगा। पता नहीं इस बार उनको लेकर घर लौट पाऊंगा भी कि नहीं। बस उम्मीद है किसी चमत्कार की, हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर कतई विश्वास नहीं करता। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिसे हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते और उनके बने रहने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। सब परेशान हैं। पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरों ने स्थायी डेरा डाल रखा है। छोटी बहन अनु कुछ नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, अभी उसकी उम्र ही ऐसी है। हाँ भैया थोड़ा प्रैक्टिकल है, कम से कम बाहर से टूटता नज़र नहीं आता। यहाँ दिल्ली में सारा इंतज़ाम उसी ने किया। बेशक वो पिछले बरस आया है, मगर यहाँ के माहौल और रास्तों से खूब परिचित हो गया है और शायद महानगरों में रहने वालों की तरह उसका मन संवेदना के स्तर पर छिछला हो चला है, इसलिए मेरी तरह भावुक नहीं होता या हमारे सामने दिखता नहीं। डर से भरा हूँ बेतरह। माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ाव मेरा ही रहा है। कई बार माँ कहती है तुम कभी बड़े नहीं बनोगे क्या प्रियम, हर बात काम में मामा की रट लगाए रहते हो। मैं हंसकर कहता माँ के लिए बच्चा कब बड़ा होता है, मुझे तुम्हारा आंचल पकड़कर घूमना अच्छा लगता है। माँ हंस पड़ती और कहती आ जाओ मेरे पास, और मैं लाड़ जताते हुए उनके गले में बाहें डाल देता। आज उनकी चौथी केमो है, बहुत सारे बाल गिर गए हैं, अब लंबे घने केश कंधों तक छोटे हो गए। कितने घने केश हुआ करते थे माँ के, उन्हें अपने बालों से मोह भी था बहुत। जब भी उनका ध्यान अपने बालों पर जाता वो रुवासी हो जाती है। मैं सोचता हूँ क्या लोगों को वही वस्तुएँ ज़्यादा प्रिय होती हैं जो किस्मत उनसे छीन लेने को तैयार बैठी रहती है। माँ का कैंसर जब तीसरे स्टेज पर पहुँच गया तब हमें मालूम हुआ। ऐसा कुछ बाहर से बिल्कुल पता नहीं चला हमें न उन्हें, बस कमजोरी की शिकायत थी और बार बार बुखार होता था। कौन जानता था ऐसी गंभीर बीमारी से घिरी हुई हैं वो, अब तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। कई बार बड़ी बेबस निगाहों से देखती है मुझे तो रोने का मन हो आता है। वह घर से दूर यहाँ आना भी नहीं चाहती थी दिल्ली, उन्हें अपना मोहल्ला और शहर ही पसंद। स्मृति की गलियों से बाहर आकर मैं माँ को खाना खिलाना चाहता हूँ तो वो मना करती हैं। ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश में कई बार घुड़क देता हूँ उन्हें। दूसरे ही पल लगता है कि मेरे नहीं खाने पर माँ कितना पीछे पड़ी रहती थी, पर उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं गुड़का मुझे, बस मनाती रहती पुचकारती रहती। खा लो जरा सा, अच्छा चावल नहीं पसंद तो रोटी बना देती हूँ, ठीक है बाबा आज हलवा खा लो, कल खीर बना दूंगी ढेर सारा किशमिश डालकर। मन को काटने लगा कोई, बाहर निकल आया हूँ कैंटीन की तरफ। मैं अपनी हताशा उनके सामने प्रकट करना नहीं चाहता, सोचता हूँ मेरा चुलबुलापन बरकरार रहे, हंसता हंसाता रहूँ सबको। ओह मैं तो अपनी क्लास भी मिस कर रहा हूँ, अभी अभी मास कम्युनिकेशन में दाखिला हुआ है, ग्रेजुएशन में टॉप आने की खुशी भी नहीं शेयर कर पाया। दाखिले के बाद मुश्किल से 8-10 दिन ही क्लास कर पाया और माँ के साथ दिल्ली सफदरजंग अस्पताल आना पड़ा। सपना, हाँ सपना ही नाम है उस लड़की का, मेरे होठों पर उसकी याद ने मुस्कुराहट ला दी। पहली क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज पहुँचा था, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट दूसरे तल्ले पर था, खूब भीड़ भाड़ चारों तरफ। जो शहर के विभिन्न कॉलेजों और आसपास के शहरों से आगे पढ़ने की इच्छा लिए आ गए थे पत्रकारिता में सभी अनजाने थे सिवाय मेरे मोहल्ले की एक लड़की भावना की, जो स्कूल में भी मेरे साथ थी। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मगर मुझे पता है कि क्लास नोट उससे मिल ही जाएंगे सभी। बस माँ को लेकर एक बार लौट तो जाऊँ, मुझे लगा कोई घूर रहा है। पलट कर देखा तो दो लड़कियों की पीठ दिखाई दी जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुँचा। ग्रिल के पास सारे स्टूडेंट जमा थे। एक दूसरे से परिचय का दौर चल रहा था। सब ऐसे चहक रहे थे जैसे सुबह के वक्त ढेर सारी चिड़ियाँ पेड़ पर एक साथ चहकती। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र दूर से आती हुई भावना पर पड़ी। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की चली आ रही थी। गोल चेहरा, दरमियाना कद और खिलता रंग। उसने गुलाबी रंग का पारदर्शी सूट पहना था। सब चुप होकर कभी मेरी ओर तो कभी उस लड़की की ओर ताकने लगी। वो लड़की भी बौचक्की होकर मेरा मुंह देखने लगी। हम नहायत अजनबी थे। आज से पहले न कभी एक दूसरे को देखा और न ही कुछ और भी जानते थे। मुझे एहसास हुआ कि बहुत गलत बात निकल गई मेरे मुंह से। अब तो तभी भावना ठिठाकर हंस पड़ी। कहा, तुम वाकई कभी नहीं सुधरोगे प्रियम। फिर अपनी सहेली को मेरा परिचय दिया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है प्रियम, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ऐसी उठपटांग हरकत करता रहता है। मैंने देखा सपना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई और भावना के साथ क्लास की तरफ चली गई। मेरी जान में जान आई। लगा आज अगर भावना न होती तो पिटाई निश्चित थी। पता नहीं क्यों यह लड़की सपना पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक बात गौर की मैंने कि सपना पर हर रंग अच्छा लगता है। आज वो पीले रंग की कुर्ती और ब्लू जींस में थी। कपड़े की पीली आभा से उसका चेहरा और ज़्यादा खिला लग रहा था। वाकई बेहद खूबसूरत और समझदार है वो। सुंदर तो मेरी माँ भी बहुत लगती हैं। अब इन दिनों जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ज़रूर चेहरा बहुत उतर आया है। वैसे माँ बहुत चटक रंग पसंद नहीं करती हैं, अक्सर वो ग्रे कलर या नेवी ब्लू कलर की साड़ी खरीद ले आती। पापा से इस बात पर मीठी नोकझोंक हो जाती। चटक रंग पहनने के इसरार पर वो कहती, नई नेवी ली दुल्हन नहीं हूँ मैं जो रोज़ केवल लाल पीला पहन कर घूमूं, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मगर उन पर फपते थे सारे रंग। पूजा पाठ के अवसर पर अक्सर गाढ़ा रंग पहनती थी। मुझे याद है मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर हुई उनकी झड़प। माँ ने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहनी और मोतियों की माला के साथ बेहद खूबसूरती से तैयार हुई थी शाम को बाहर जाने के लिए। पापा ने त्योरियाँ चढ़ा ली थी यह देखकर। मैंने बाद में पापा को कहा भी था, पापा माँ को जो रंग पसंद है उन्हें वही पहनने से आप क्यों रोकते हैं। पापा जवाब में खामोश रहे। अचानक सब गड़मट हो गया। सपना और माँ, मैं कहीं खोया हूँ। इसका तब पता चला जब नंदू काका की दुकान में भावना ने मेरी बाँह झिझोड़ कर कहा कि क्लास का टाइम हुआ, हम जा रहे हैं, चाय खत्म कर तुम भी आओ। मैं अपने घर और कॉलेज के बीच उलझा सा चल पड़ा। उस रोज़ घर आकर भी उदासी छाई रही। मैं बेमन से खाना खाते हुए सोच रहा था कि जल्दी ही माँ के पास चला जाऊँ। अभी शुरुआत में उतनी पढ़ाई नहीं होगी, क्लास मिस कर दिया तो भी ज़्यादा हर्ज नहीं होगा। एक बार मिल रहा हूँ माँ से, तब आकर गंभीरता से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। तभी लैंडलाइन पर पापा का फ़ोन आया। माँ के बारे में सभी बातें बताई उन्होंने। कहा, कीमो तो चल रहा है, वो बहुत तकलीफ़ होती है माँ को, वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। 15 दिन के लिए तुम दिल्ली आ जाओ, मैं रांची आ रहा हूँ कुछ काम से। जी मैं कल ही करा लेता हूँ टिकट, माँ से मिल सकूँगा इसकी बेहद खुशी हो रही थी मुझे। बस अब कल कॉलेज चला जाऊँ और वहाँ मेहता जी के पास 15 दिनों छुट्टी का एप्लीकेशन दे दूँ, फिर कल ही रेलवे स्टेशन जाकर टिकट करा लूँगा। सुबह कॉलेज गया, पीआर की पहली क्लास थी, मैम पढ़ाने आई। हल्की बैंगनी साड़ी और बड़ी सी कत्थई बिंदी में वो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। कक्षा में आती उन्होंने नोट्स लिखवाना शुरू किया। जब पीरियड समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ लो। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, उन्होंने मुझे खड़ा किया और कहा, बोलो क्या कहना है, क्या समझ नहीं आया। मैंने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, मैम कहना यह था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। पूरा क्लास ठहाकों से भर गया। मैम ने भी मुस्कुराते हुए अपना रजिस्टर उठाया और निकल गई। कुछ दोस्तों ने पीठ पर धौल लगा मेरे साहस को शाबाशी दी तो लड़कियों ने घूरा, मगर यह महसूस किया कि सब समझने लगे हैं मुझे और मेरी इन हरकतों को अन्यथा नहीं लेते। घर के लिए निकलते वक्त भावना और सपना को अपने दिल्ली जाने की बात बता दी और नोट संभाल कर रखने की ताकीद भी कर दी। तीसरी सुबह मैं अस्पताल में था। माँ बड़ी निरीह सी दिख रही थी, बदन की तकलीफ चेहरे पर उभर आई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, माथे पर हाथ फिरा, प्यार किया पूछा, पहली बार अकेले रहे हो ना, डर तो नहीं लगा तुम्हें? मैं झेंक गया। माँ आप भी समझती हैं कि मैं अकेले में डरता हूँ, सच तो यह है कि मैं अकेला रहना नहीं चाहता। माँ कहीं ना जाए मुझे छोड़कर, इसलिए कहता था उनसे कि आप साथ रहो। मुझे डर लगता है अकेले में, मगर यह तो बहुत पुरानी बात हुई, तब स्कूल में था मैं। क्या माँ की यादों में वक्त छलांग लगाकर पीछे जा रहा है इन दिनों? अब रोज की दिनचर्या वही हो गई, दिन भर माँ के पास। माँ कह रही थी उस दिन कि प्रथम की शादी हो जाती तो थोड़ी जिम्मेदारी कम होती मेरी, मगर पापा का कहना है कि भैया की अभी अभी नौकरी लगी है, उसे कुछ दिन तो काम करने दो, फिर गृहस्थी का भार उठाना ही है। मगर अब तो जिंदगी की कोई भी बात बहुत पीछे, बस माँ है सामने, उनका स्वास्थ्य और हमारी जिंदगी जुड़ गई है, सब कुछ उनके मुताबिक। अस्पताल में माँ के पास कभी मैं तो कभी भैया रात को रुकते, बचपन के किस्से सुनाकर माँ को हंसाते। माँ जीने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, अभी जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पर, जानती हैं इसलिए जल्दी ठीक होकर घर वापस आना चाहती हैं। उन्हें अपने तुलसी के पौधों का भी पूरा ध्यान है, ऐसे में आते ही पूछा था, मेरे तुलसी के पौधों में रोज पानी देता है ना प्रियम? जवाब में हाँ मिलने पर मुस्कुरा पड़ी थी वो। आज शाम की ट्रेन से चला जाऊँगा, पापा 15 दिन के बजाय 10 दिनों में ही लौट आए हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा रांची, टिकट ले लिया। मैं माँ को उनके हवाले कर दिल्ली के आकाश से अपने शहर की आकाश की तुलना करता हुआ बहुत देर से यादों की गलियों में घूमता रहा हूँ। माँ के पास कुछ देर रह लूँ फिर तो चला ही जाऊँगा। माँ मुस्कुराती है मुझे देखकर, सोचता हूँ पीड़ा से उपजी मुस्कान दिल को भेद देती है। माँ को लगता है कि वो मेरे सामने खुश रहेंगी तो मैं भी उतना ही खुश रहूँगा। सच है कि मैं उनका भ्रम तोड़ना नहीं चाहता और वो मेरा, हम दोनों दर्द की लहरों पर तैर रहे हैं, मगर मेरा दर्द मानसिक है और माँ मन के साथ साथ तन के दर्द को भी अपने से दूर करने के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं ऐसा जताता हूँ कि माँ जानबूझ कर यहाँ है और रांची वापस चलने के लिए बहाना कर रही हैं, हम दोनों एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, सब अच्छा हो जाएगा, मगर दोनों को पता है कि शायद डॉक्टर्स भी खुलकर कुछ नहीं कहते। लौटा हूँ वापस अपने शहर, सूना घर काटने को दौड़ता है। माँ पापा भाई बहन सब वहीं हैं, मुझे घर भेज दिया गया है कि जाओ घर खाली है, किसी न किसी को देखभाल के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरी कक्षाएँ भी छूट रही थी, सोचता हूँ छोटी अनु भी तो आ जाती यहाँ, उसका भी तो स्कूल छूट रहा है, मेरा मन भी लगा रहता, मगर उसे छोटी होने का फ़ायदा मिला है, पापा उसकी भी देखभाल करते हैं माँ के साथ साथ। कितनी लकी है अनु, माँ के पास है, केवल मैं ही इस बार दिल्ली से लौटने के बाद सपना के घर पहली बार गया अकेले। भावना को कुछ काम था इसलिए वह नहीं आई मेरे साथ। मुझे सपना की माँ बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, खूब प्यार से बातें की, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी पूछा। जरूर सपना ने सब बताया होगा, हमने स्कूल कॉलेज के किस्से कहे, हमारी बातचीत में सपना का छोटा भाई भी शामिल था, चंचल सा गोल मटोल बच्चा जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हमारी हर बात में बीच में टांग अड़ाता, सपना जितना उसे दूर भगाती वो हमारे बीच आकर बैठ जाता। आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, छोले आलू की सब्जी, सत्तू वाली कचौरी और खीर। अचानक मेरे मुंह से निकला, माँ मुझे खीर बहुत पसंद है और दो ना, कहकर मैं एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे कह गया, जाने इस बात का क्या अर्थ लगाएगी सपना। मैंने तुरंत कहा, आंटी आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना? अवचेतन में माँ इन दिनों हमेशा मेरे साथ होती है, क्या ये भी हो सकता है कि मैं उनसे इतना जुड़ा हूँ कि हमेशा पास होने का एहसास होता है? आंटी ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम मुझे अब माँ ही कहना, तब से उन्हें मैं माँ ही कहने लगा। माँ के दिल्ली जाने के बाद की वह दोपहर बहुत अच्छी गुजरी, बिल्कुल घर सा माहौल, सबका एक साथ खाना खाना, चहलबाजी और सपना की माँ का भी इसमें शामिल रहना। मैं बिल्कुल भूल गया कि माँ से मैं अपनी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ती हुई अस्पताल के बेड पर होगी। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब माँ की बात कर रहे थे। मैं एक कोने में दुबका बैठा हूँ, दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से माँ को घर लाया जा रहा है, लोग अंतिम दर्शन के लिए बेकरार हैं। अचानक रंजिता का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मैं चीहूँक उठा, वह चाय लेकर आई है, कहती है पी लो ज़रा, माँ के आने में देर है, खुद को संभालो। मैं एकटक देखता हूँ उसके चेहरे की तरफ, माँ होती तो कहती, देख प्रियम रंजिता की बात माना कर, बहुत समझदार लड़की है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। रंजिता बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती है, इतना अपनापन है कि कोई भी सब्जी दोनों घर में बिना बटे खाता नहीं कोई, अक्सर रंजिता ही कटोरदान लिए आवाज़ लगाती थी, चाची माँ ने उल्की सब्जी भिजवाई है आपके लिए, माँ सबको वहीं बुला रही है। ये बैनर बांटने का काम माँ फिर मुझसे करवाती। साल दो साल की बड़ी थी रंजीता मुझसे, मगर माँ को बहुत पसंद थी यह लड़की। तभी सुबुकने की आवाज़ आई। देखा, बुआ जोर जोर से रो रही। पापा की इकलौती बहन है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ अचानक। रंजीता कहाँ गई, बुआ क्यों रोई, समझ नहीं आता कि मैं वर्तमान में हूँ या अतीत में। तभी हलचल मची, बॉडी आ गई। मेरी जीती जागती माँ बॉडी में कैसे तब्दील हो सकती है। मैं देखना चाहता हूँ माँ कहाँ है। माँ तो अभी यहीं थी, मुझे खीर परोसती हुई, किसमिस वाली ठंडे की। अभी तो माँ ने सीने से लगाया था, चाय का प्याला पकड़ाते हुए कह रही थी, जा जरा रंजीता की माँ को बुला ला, ऊन के लच्छे देने हैं, गोला बना देगी तो अन्नू के लिए स्वेटर बुनूंगी। माँ ने गुलाबी रंग ड्रेस पहना है। माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो। माँ कहाँ हो माँ, मुझे नहीं जाना रंजीता के घर, कॉलेज को देर हो रही। नंदू काका ने अभी गर्म समोसा निकाला है, माँ एक खा लो। सपना कहाँ जा रही हो तुम, भावना पीआर की क्लास नहीं है क्या आज। बुआ आकर कंधे पर हाथ रखती है, जाओ प्रियम माँ को अंतिम प्रणाम कर लो। मुड़कर देखता हूँ पापा के चेहरे की तरफ, बेहद उदास, शून्य में विलीन हो जैसे। माँ को देखा, आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी माँ ने। पापा कहाँ है, मैं आवाज़ देता हूँ, पापा पापा। चटाख की आवाज़ से तंद्रा टूटी, कपाल क्रिया संपन्न हुई। मैं ठहरा हूँ यहीं, रुकूंगा उतनी देर जब तक चिता की राख ठंडी ना हो जाए। मित्रों के हाथ अपने कंधे पर पा रहा हूँ। सांत्वना के बोल कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सब जानते हैं इनका कोई असर नहीं होगा मुझ पर, जबकि कोई अपना हमेशा के लिए साथ छोड़ गया हो। लोग पीठ पर हाथ धरते और वापस मुड़ जाते। पापा ने भी सबकी तरह आकर कहा, चलो अब सब खत्म हुआ। मैं कहता हूँ, आप जाइए, मैं कुछ और देर रहना चाहता हूँ यहाँ। पापा समझते हैं मुझे, कहते हैं ठीक है, मैं भी बैठा हूँ, साथ चलेंगे वापस। धीरे धीरे चिंगारियों का ताप कम होता जा रहा है, सन्नाटा है सबूर, सांझ खिराई है, सफ़ेद बादल जाने कहाँ चले गए। चिता से उठते धुएं की एक मोटी परत समूचे परिवेश में फैली हुई है। स्वर्णरेखा नदी की पतली धार किसी पगडंडी से दिख रही है। दूर जहाँ आसमान का नीला छोर धरती से मिलकर हरा हो जाता है, वहाँ जैसे गुलाबी साड़ी में लिपटी माँ खड़ी है। मैं झटके से खड़ा होकर पुकारता हूँ, माँ माँ, पर माँ के कदम रुकते नहीं, अपनी सीध में बढ़ते जाते हैं। मेरी पुकार की विकल प्रतिध्वनियाँ जैसे दसों दिशाओं से लौट कर मुझ तक वापस आ रही हैं। पापा ने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। जाती हुई माँ को उनकी पसंद के रंग की साड़ी में देख मेरे भीतर की बेचैनी हौले से तड़पती है। मेरे हाथ पर पापा की पकड़ और मजबूत हो गई है। माँ को उनके पसंद की रंग की साड़ी में देख हमारी हथेलियाँ सुकून की उष्मा से भर उठी। मुझे से धन्यवाद।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक न करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी न चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है रक्षाबंधन। प्रकृति के लिए भी एक रक्षा सूत्र जरूरी है।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। सावन का महीना है, बाहर बारिश की रिमझिम है, पेड़ धुले धुले से लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। सच कहूं तो सावन आते ही मन भी जैसे हरा हरा हो जाता है। भाग दौड़ के बीच भी मन करता है कि थोड़ी देर रुक कर बारिश को देखें, पेड़ों के पास बैठें और इस मौसम को महसूस करें। तो बस आज स्टूडियो में मैंने सोचा क्यों ना हम सावन के इस बहुत ही सुंदर से रंग को और सावन में आने वाले एक और भी सुंदर त्योहार को आप सब बच्चों के साथ मनाएं। तो बच्चों, रक्षाबंधन का तो बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार रहता ही है, और जब ये त्यौहार आने वाला है और हम इसे मना रहे हैं, तब ये ज़रूरी है कि हम कुछ कुछ बातें और सोचें। और आपको ये भी पता है कि जब भी बाल सभा होती है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा, कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, कुछ ना कुछ ऐसा फूड ज़रूर तैयार करती हूँ जो आपके दिमाग के लिए हो, विचारों के लिए हो, क्योंकि बच्चों सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचने से दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तो एक वो गाना था ना एक फिल्म में, सोचो सोचो क्या ये पेड़ है, तो वही वाली बात है कि हम ज़रा चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से सोचें तो बच्चों हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो आज हम लोग जो सोचने वाले हैं वो यही कि क्या रक्षाबंधन हम जैसे मनाते हैं उसमें हम कुछ थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा ट्विस्ट दे सकते हैं क्या, क्योंकि बहनें तो इंतज़ार कर रही हैं भाई को राखी बांधने के लिए और उससे कोई सुंदर सी गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन हम आपको ऐसे रक्षाबंधन की बात बताने वाले हैं बच्चों, जो आपको गिफ्ट में हो सकता है उस समय कुछ ना दे, लेकिन जीवन भर बहुत कुछ देता रहेगा। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ सुनाने वाले हैं जो मुझे एक बच्चे ने लिखकर भेजी थी। उसने लिखकर भेजा था कि रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, हरियाली की आई कहानी, पेड़ हंसे और धरती मुस्काए, सावन सबके मन को भाए। ये बच्ची है मेदिनी और वो आ जाने वाली थी। उसने मुझे ये छोटी सी कविता लिख के भेजी, लेकिन वो क्या हुआ ना, सावन में भीग गई, और भीग गई तो तबीयत खराब हो गई बच्चों। तो बस मैंने कहा जब तुमने छोटी छोटी सी कविताएं लिखी हैं वो मुझे भेजो, मैं आज बच्चों को सुनाऊंगी। अब क्या होता है बच्चों कि हम बाकी दिनों में कितनी भी चीज़ों में उलझे रहें, स्कूल, पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, घर का काम, लेकिन बारिश आते ही हम और आप खिड़की के बाहर झांकते ज़रूर हैं, पेड़ों को देखते ज़रूर हैं, बारिश की आवाज़ सुनते ज़रूर हैं, मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं। यानी हमें प्रकृति थोड़ा रुकना सिखाती है ना? और इसी को बच्चों माइंडफुल लिविंग कहा जाता है। यानी हम जिस पल में जी रहे हैं उसे हमें ध्यान से जीना है, और प्रकृति इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, अच्छा लगता है ना, पत्तियां हिलती हैं, कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं बच्चे तो भी ऊपर से पत्तियां गिर रही होती हैं, और कभी कभी हवा चलती है तो बच्चों को और मज़ा आ जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो हमारे मन को बहुत सुकून देती हैं, जैसे किसी पेड़ के पास बैठना, उसे छूना, उसकी छाया में सांस लेना, ये सब हमें प्रकृति से जोड़ता है। और पता है बच्चों, कुछ लोग तो पेड़ों को गले भी लगाते हैं, जैसे हम किसी अपने से मिलकर गले लगते हैं ना, वैसे ही, और इससे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस होता है। आप पता है, आज जब मैं यहाँ आ रही थी, बहुत झिमिर झिमिर, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा कुछ बच्चे, एक जगह पानी भर गया था, तो उस जगह ना बहुत तेजी तेजी से उछल रहे थे और वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे कि उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं। बस यही बचपना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए आज जो बात मैं करने वाली हूँ आपसे रक्षाबंधन की, वो ये है कि बच्चों रक्षाबंधन पे हम भाई को राखी बांधते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन या फिर कभी भी आपको जब लगे तब एक रक्षा सूत्र किसी पेड़ को किसी पौधे को बांध कर देखिए। इसलिए क्योंकि वो आपका प्रकृति से एक अलग तरह का रिश्ता बनाएगा बच्चों। क्योंकि रक्षा सूत्र अगर हम रक्षा के लिए कहें तो पेड़ और प्रकृति भी तो कितनी चीजों से हमारी रक्षा करती है। ये पेड़ हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, और उससे बड़ा क्या है बताइए। और जब हम उनको रक्षा सूत्र बांधेंगे तब हमारा एक रिश्ता कायम होगा पेड़ के साथ। कुछ बच्चे तो पौधों में पानी देते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई फूल ना तोड़े, कोई फल ना तोड़े, कोई पत्थर ना मारे पेड़ पर, ये सब ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, अगर आम लगा हुआ है तो फट से कंकड़ मार देंगे और आम तोड़ लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। हाँ, तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, पेड़ को एक रक्षा सूत्र बांधना है, और हो सके तो कुछ और बच्चों को भी ले जाइए अपने साथ। जब आप ढेर सारे बच्चे लेकर पेड़ के पास जाएंगे, उसको तिलक करेंगे ऐसे सांकेतिक रूप से और रक्षा सूत्र बांधेंगे, और कॉलोनी और मोहल्ले के बच्चों को जब आप ये बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन हम प्रकृति के साथ भी मनाएंगे, है ना, तो फिर आप देखिएगा कि आपका उस पेड़ के साथ कितना गहरा नाता हो जाएगा, उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। अब एक बहुत सुंदर सी बात है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्म देने वाली माँ और हमें पालने पोषण करने वाली मातृभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग के सुखों से भी ऊपर और महान होता है। तो बच्चों इस धरती के लिए, इस जन्मभूमि के लिए अगर हम बच्चे कुछ सबसे अच्छा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं अपनी प्रकृति की रक्षा और सेवा। ऐसे ही एक और गतिविधि मैंने देखी कि कुछ लोग नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं, कलश में जल भरते हैं और जल पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। और बच्चों यही देखने के बाद आज मैंने आपसे ये बात कही है, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जब वो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो एक खुद से संकल्प भी लेते हैं कि अब से हम जल को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। नर्मदा नदी आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, सालों से लाखों वर्षों से ये नदी बह रही है बच्चों। और खास बात यह है बच्चों कि इस नदी के पास कोई ग्लेशियर से पानी नहीं आता। जो ये जंगल, जो ये बड़े बड़े पेड़, जो बहुत सारे जंगल मिलकर जो पानी को बचाते हैं, अपनी जड़ों में जो पानी को सोखते हैं, वो पानी धीरे धीरे रिस कर इस नदी में आता है और फिर ये जाने कितने लोगों को जीवन देती हुई बहती है। तो कितनी बड़ी भूमिका है ना पेड़ों की। तो इस बार आप याद रखिए कि आपको पेड़ों के साथ, जल के साथ और प्रकृति प्रदत्त हर चीज के साथ रक्षा सूत्र का एक बंधन मन ही मन जरूर बांधना है, ताकि आप प्रकृति की सेवा करने का एक संकल्प अपने भीतर जरूर लें। और जो बच्चे ऐसा करेंगे वो मुझे बाल सभा में बाद में भी बता सकते हैं। आप लोगों को तो मैं मिलती ही रहती हूँ, कभी आपके स्कूल से निकलते वक्त, कभी आपकी कॉलोनी, कभी आपके मोहल्ले, बहुत सारी जगह आप मुझसे मिल सकते हैं। और मुझसे ही क्या, आप अपनी माँ को बता सकते हैं, पिताजी को बता सकते हैं कि हमने इस बार रक्षाबंधन पर प्रकृति की जितनी भी संसाधन है, चाहे वो जल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, किसी ना किसी को रक्षा सूत्र बांधिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा, या नल खुला देखूंगा तो बंद कर दूंगा, और पेड़ों के साथ भी ये वचन निभाऊंगा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा या रक्षा करूंगी। कुछ बच्चे मुझसे बता रहे थे कि हम पेड़ों को पानी रोज़ देते हैं, लेकिन मैडम क्या होता है ना, कुछ बच्चे आकर वहाँ बहुत कचरा कर देते हैं, घर का सारा कचरा लाकर पेड़ के पास फेंक देते हैं। तो मैंने बोला ये चीज़ कि बच्चों सब लोग मिल जाओ और एक छोटा सा क्लब बना लो, कॉलोनी का, मोहल्ले का। वो क्या होगा, आपका किड्स क्लब हो जाएगा, वो आपका बच्चों का क्लब हो जाएगा। और उसमें यही सब शिकायतें आए, आप लोग कहानियों की किताबें पढ़ो और उन्हीं कहानियों को फिर आप डिस्कस करो। कम से कम सप्ताह में एक बार तो मिलो सारे लोग मिलकर। फिर अगर कोई बच्चा कंकड़ पत्थर फेंक रहा है पेड़ों के पास, या पेड़ों के पास अपने घर का कचरा लाकर फेंक रहा है, तो उस आपकी जो समिति या क्लब बनाओगे बच्चों का, उसमें उन चीज़ों को डिस्कस करो। फिर आप में धीरे धीरे सिर्फ ये डिस्कशन ही नहीं होगा, आप में धीरे धीरे लीडरशिप आएगी, आप धीरे धीरे अपनी बातों को ओन करना शुरू करोगे, आप में गंभीरता आएगी, आप चर्चा करोगे उन बातों की। और बच्चों वो कॉन्फिडेंस अलग होता है जब आप कोई निर्णय लेते हो, जब आप सबके साथ बैठते हो, कुछ अच्छी बातें करते हो, खुद से प्रॉमिसेस करते हो, उन्हें निभाते हो, तो बड़ा मजा आता है बच्चों। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि एक बच्चों का क्लब जल्दी से बनने वाला है और फिर मुझे आप लोग बताने वाले हो? एक कहानी सुना दूं इसी बात पर आप लोगों को, एक ईमानदार बच्चे की कहानी सुनाती हूं, ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। माता पिता की इकलौती संतान, बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। बटुआ समझते हो, जो हाथ में लोग लेकर चलते हैं ना, बटुआ कपड़े का भी बनता है और उसमें वो पैसे रखे रहते हैं, मतलब पर्स समझ लीजिए आप एक तरह से। तो जैसे ही रामू ने बटुए को देखा, उसने बटुए को उठाया, उसने क्या देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही है। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उसी दिशा में चल पड़ा। वो पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि उसमें सभी पैसे बहुत सुरक्षित थे। वो रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया हूँ। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के स्वरूप कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। तब रामू के पिता ने कहा कि मुझे इसे आगे की पढ़ाई करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उस व्यापारी ने कहा कि जब आप इतनी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, तो इतनी मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ कि आपसे रामू की पढ़ाई लिखाई सब का खर्च मैं उठाऊंगा। फिर क्या था, उस व्यापारी ने रामू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और देखते ही देखते रामू ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की और एक दिन बड़ा होकर वो एक सफल डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो फिर गांव लौटा और उसने जाकर उस व्यापारी के पैर छुए और कहा कि अगर आप ना होते तो मैं आज डॉक्टर ना होता। उस व्यापारी ने पता है क्या जवाब दिया? उस व्यापारी ने जवाब दिया, रामू, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे माता पिता की परवरिश का आज ये रिजल्ट मिला है तुम्हें, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुमने मेरे पैसे लौटाए थे, तब मैं चकित था कि कोई बच्चा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है, कितने सारे पैसे देखने के बावजूद उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया। ऐसे बच्चे की मदद तो मुझे करनी ही थी। रामू ने उसके पैर छुए और वहां से निकल गया। फिर उसी गांव में गांव वालों के लिए एक क्लिनिक खोला। तो बच्चों, सुना आपने कि किस तरीके से छोटी सी घटना आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल देती है। अगर उस दिन रामू पैसे वापस ना करता और उनसे नहीं मिलता तो क्या वो पढ़ने के लिए शहर जा पाता? हो सकता है चला जाता, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि नहीं जा पाता, क्योंकि उनके माता पिता के पास बच्चों इतने पैसे नहीं थे। वो गांव के ही किसी स्कूल में फिर आगे पढ़ाई करने के लिए भेजते नहीं भेजते, ये सब भविष्य के हाथों में था। लेकिन उस दिन की एक घटना ने रामू का भविष्य ही बदल दिया। तो कई बार आपके अच्छे काम का अंजाम हो सकता है आपको बच्चों उस वक्त दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में भविष्य में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होता है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जो बार बार मैं आप लोगों से बच्चों बात करती हूँ ना, कि आप अपने विचारों को बहुत अच्छा रखिए, अपनी बातचीत का लहजा, अपने बातचीत की तहजीब, बड़ों के प्रति सम्मान, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, बच्चों ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपका हर दिन, हर पल, हर प्रतिपल आप जो व्यवहार करते हो बच्चों, आपको उसका ही रिजल्ट मिलता है। तो जिस तरह रामू अपनी ईमानदारी के बल पर इतना अच्छा व्यक्ति बनकर निकला, उसी तरह आप लोग भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए बच्चों। और फिर से हम उसी बात पर लौटते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी है, और इस रक्षाबंधन हमको क्या करना है, रक्षा सूत्र पेड़ों को या जल के कलश को भी बांधने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों। रक्षा का जो भाव होता है वो केवल हमारे परिवार तक क्यों रहे, हमारे जीवन में पेड़ हैं, नदियां हैं, जल हैं, इनके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए प्रकृति के नाम यदि हम रक्षा सूत्र बांधें तो हमको उस समय ये नहीं सोचना है कि ये हम सिर्फ धागा बांध रहे हैं, इससे एक कदम और आगे बढ़िए। एक छोटा सा वादा करिए कि इस पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसको पानी देंगे, इसको बड़ा होते हुए देखेंगे। जब आप लोग अपने आप वादा करेंगे, और वो जो किड्स क्लब की बात मैंने कही, एक छोटी सी समिति बच्चों की बनाइए, वहां भी जब ये बात रखेंगे तो और बच्चों को भी समझाइएगा, और मिलकर अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में कोई जगह आपको खाली दिखे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मिट्टी है और खाली जगह है, वहां पौधे लगा दीजिए। क्योंकि बच्चों पौधे आपसे कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी जगह, और बदले में कितना कुछ देते हैं। एक आम का पौधा बड़ा होकर जब बड़ा आम का वृक्ष बनता है तो कितने लोगों को आम के फल देता है, देता है कि नहीं देता है? आपने सुबह सुबह देखा है नीम के पेड़ से कितने सारे आंटी अंकल जब निकल रहे होते हैं तो पत्तियां तोड़ते हुए चबाते हुए जाते हैं, कोई नीम की पत्तियां उबाल कर नहाने के लिए ले जाता है, क्योंकि नीम बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, हमारी सेहत की बेहतरी के लिए भी। ऐसे कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं बच्चों, जो बहुत अच्छी गिलोय की बेल होती है बच्चों, जो अगर हम उसके पत्ते खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है गिलोय। ऐसे कितने पेड़, कितने फूल, कितने फल हैं जिनकी कहानियां अगर मैं आपको सुनाने बैठूं तो वो बच्चों खत्म ही ना हो। गुलाब के फूल तो आपने देखे ही हैं, टीचर्स डे हो या कोई भी खास दिन हो, आप बाहर से लेकर जाते हो, सोचो खरीदते हो आप, कितने लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही पौधे लगे हों और खूब सारे फूल आ रहे हों, तो बस पौधे से जरा सी विनती कीजिए और एक छोटा सा फूल ले लीजिए। लेकिन इन सब के लिए हल्की फुल्की मेहनत तो लगती है, थोड़ा आपका डिटर्मिनेशन लगता है, थोड़ा आपका खुद के प्रति ईमानदारी लगती है कि अब आप पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अच्छा, मुझे एक बच्चा ये भी बता रहा था पिछली बार कि जब वो स्कूल में होता है हमेशा हाथ धोता है और भाग जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, घर में होता है मम्मी डांटती है तो बंद कर देता है, और ये बात उसने खुद ही एक्सेप्ट की। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए गलती कर रहा है लेकिन स्वीकार भी कर रहा है। तो क्या आप में से भी कोई बच्चा है क्या बच्चों, जो नल खुला छोड़ने की आदत है जिसकी, अगर आप घर में हो, ब्रश कर रहे हो, नल बह रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है आप लोग के साथ? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी बात हुई ना कि आपको पानी व्यर्थ नहीं बहाना है। याद रखना है बच्चों हमें कि प्रकृति के जो भी संसाधन है वो सीमित संसाधन है। आपने देखा है बच्चों, हम कई बार खरीद के पानी पीते हैं, बोतल का पानी खरीदते हैं और फिर पीते हैं। तो क्यों ना जब भी हम घर से निकलें, भले ही हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं या हम खेलने जा रहे हैं, तो अपने लिए एक बोतल में पानी लेकर जाएं। उससे दो फायदे होंगे बच्चों। पूछे क्या? पूछ लिया आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के, बोल दिया क्या? अब मैं बताती हूँ, फायदे ये होंगे। एक तो हर बार बच्चों जो प्लास्टिक की बोतल आप खरीद रहे हो ना, वो नहीं आपको लेनी पड़ेगी। वो बड़ी बड़ी लंबे समय तक परेशान करने वाली चीज़ है। और दूसरी बात, आपके पैसे भी खर्च होते हैं हर बार जब आप पानी खरीदते हो। कभी किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ आपका पानी खत्म हो गया है, वहाँ ठीक है, लेकिन एक आदत डालिए कि अपने घर से जब भी निकलेंगे तब हम पानी की बोतल लेकर ही निकलेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो प्लास्टिक की ना हो। कोशिश ये भी करेंगे कि जब हम कुछ खरीदने जाएंगे, या आपकी मम्मी या आपके पापा कुछ खरीदने जाएंगे, तो क्या बोलेंगे आप? आपने थैला लिया या नहीं? क्योंकि जब हम घर से कपड़े का थैला लेकर चलते हैं ना बच्चों, तब फिर हमें वो पॉलीथिन नहीं लेनी पड़ती जो सामान के साथ बेवजह हमारे घर में आ जाती है। और एक पॉलीथिन, एक जो वो पन्नी भी बोलते हैं, पॉलीथिन भी बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली भी बोलते हैं, उस एक पॉलीथिन को डिस्ट्रॉय होने में बहुत लंबा समय लगता है बच्चों, बहुत लंबा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो ज़मीन में बरसों बरस पड़ी रहती है, नष्ट नहीं होती, और उसके कारण कई बार जानवरों को बहुत नुकसान होता है। कई बार जब नदी में आप जाते हैं और पॉलीथिन कोई छोड़ आते हैं, अपना सामान जो आप पॉलीथिन में लेकर आते हैं, तो जो जलीय जीव हैं उनको बहुत नुकसान होता है बच्चों। कई ऐसे रिसर्च हैं बच्चों, कई। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत थोड़े से दिन पहले की बात है, बच्चे कुछ बात कर रहे थे कि महासागर, अगर हम नदी को गंदा कर रहे हैं तो क्या महासागर भी गंदे हो जाएंगे? हाँ, एक छोटी सी की जाने वाली गलती बहुत लंबे समय तक, कई कई वर्षों तक वो गलती ही रहती है। जैसे नदी में अगर आप पानी गंदा कर रहे हैं, तो आप सिर्फ नदी में नहीं कर रहे हैं, वो समुद्र तक, फिर समुद्र से महासागर तक, वो सब कुछ पहुंच रहा है। कहते हैं ना कि पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा भाग पर जल है ना बच्चों? तो उस जल को सुरक्षित रखने के लिए, उस जल को स्वच्छ रखने के लिए, हमारी नदियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है हमको? हमको नदियों के पास केमिकल यूज़ नहीं करना है। जब हम नदियों के पास जाएं तो हमें साबुन से नहीं नहाना है, है ना, जो साबुन में भी केमिकल होते हैं और वो नदी के पानी को ख़राब करते हैं बच्चों। केमिकल फ्री साबुन, अब आप सोचोगे कि केमिकल फ्री साबुन कैसे ले जाएं? तो बच्चों, जो मुल्तानी मिट्टी होती है और जो खुद नदी की मिट्टी होती है, वो भी बड़ी अच्छी होती है। आप चाहें तो नदी में आप वैसे ही पानी से नहाकर आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि कोई गंदगी नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ना, अगर उनको आप अपनाएंगे तो आप थोड़े से और समृद्ध हो जाएंगे, आपका व्यक्तित्व और बेहतर हो जाएगा। तो बस इस बार त्योहारों के इस मौसम में हमें अपनी प्रकृति के किसी भी संसाधन को, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, आपको किसी ना किसी को रक्षा सूत्र जरूर बांधना है। ध्यान रखिए, जल को कलश में लेकर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं आप। और जब आप बांधेंगे तो खुद से एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कि हम प्रकृति के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब चलिए थोड़े से संकल्प ले लेते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। आज के बाद मैं कभी भी जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा या बहाऊंगी। रक्षा का रिश्ता इंसानों के अलावा प्रकृति के साथ भी निभाऊंगा या निभाऊंगी। अपनी नदियों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। मैं प्रकृति से प्रेम करूंगी या करूंगा। अब एक आखिरी संकल्प, जहां तक संभव हो घर से थैला लेकर निकलेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। बस अब आंखें खोल लीजिए, हल्के हल्के से अपने दोनों हाथों को मलिए और अपनी आंखों पर लगा लीजिए। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगता है बच्चों, जब भी हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दो पल ठहर कर कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही लगता है। अब बस आज से नई शुरुआत और रक्षाबंधन के लिए भी एक नया विचार। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगी आपसे कुछ और बातें करने के लिए, लेकिन अभी के लिए

बाल सभा। कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां बुधवार की शाम स्वर उत्सव कार्यक्रम के तहत कलाकारों ने अपने गायन की दिलकश प्रस्तुतियां दीं।

कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इतिहास, इस देश का इतिहास, जो आ पहुंचा है आपके पास आपको सुनाने फिर से एक वीर की गाथा। लेकिन तारीख कहाँ है? अरे तारीख, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी तारीख, आपकी अपनी तारीख, जो यहाँ आ पहुँची है देने इतिहास का साथ। और आज तो इतिहास से पहले ही आ गई हूँ मैं।
1: क्या बात है, आज तो बड़े उत्साह में दिखाई पड़ती हो। भाई बात क्या है, हम भी तो जाने।
2: बिल्कुल सही कहा, मैं तो हूँ ही उत्साहित। अब भाई आखिर मैं तारीख हूँ, उत्साहित नहीं रहूंगी क्या? लेकिन आज मेरे उत्साह का एक और कारण है।
1: अच्छा, तो हम सबको भी तो बताओ वो कारण।
2: इतिहास, आपने ही तो कहा था कि आज आप ऐसे नायक के बारे में बताएंगे जिसे राजनीति में ऋषि का प्रादर्श कह सकते हैं।
1: बिल्कुल तारीख, देखो राजनीति का ऋषि पहले एक प्रादर्श क्रांतिकारी होता है, इसलिए ये कहना चाहिए कि क्रांति नायक राजर्षि।
2: ओ हाँ, अब याद आया, आप आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में हम सबको बताने वाले हैं, है ना? जिन्हें राजर्षि की उपाधि स्वयं जनता ने दी है।
1: वाह, तुम्हें याद है, बहुत खूब तारीख। भाई मान गए तुम्हें, देर से ही सही लेकिन तुम्हें याद तो आया।
2: अरे आप मेरी तारीफ छोड़िए और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में बताइए।
1: ये तो मेरा सौभाग्य होगा तारीख, तुम्हें पता है उनके लिए एक कविता हमेशा कही जाती है।
2: वाह कविता, अरे मैं क्या, हम सब सुनना चाहेंगे इतिहास, जरूर सुनाइए।
1: तो सुनो, दे राजर्षि की उपाधि, देश ने जिनका था सम्मान किया, निरासक्त उन महतापी ने क्या था अपना नहीं दिया, व्रति भीष्म सदृश थे वे, शिव सामान अवढर थे, पुत्र भारती का हो कोई उनके सबके हित कर थे।
2: सुना है वो हिंदी की उन्नति के लिए भीष्म थे और हरीशचंद्र की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आज हिंदी अगर राष्ट्रभाषा के पद पर है तो वो उन्हीं की साधना का फल है।
1: हाँ तारीख, बिल्कुल सही सुना है तुमने। चलो अब हम और हमारे साथी सुनते हैं एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत।

0: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1882 की 1 अगस्त को प्रयाग के खुशहाल पर्वत नामक मोहल्ले में हुआ था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के पिताजी का नाम सालिग्राम और माताजी का नाम बिट्टन देवी था, जो कि बाद में राधास्वामी धर्म में दीक्षित होने के चलते शरण देवी हो गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रारंभिक शिक्षा घर पे लेने के बाद 1897 में गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और 1899 में कायस्थ पाठशाला कॉलेज से इंटर और उसके पश्चात 1904 में म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए और फिर 1906 में वकालत की परीक्षा पास की। इसके साथ ही साथ वकालत की पढ़ाई करते हुए उन्होंने इतिहास में एमए भी किया।
1: हाँ, और 1899 में ही उनका विवाह चंद्रमुखी देवी से करवा दिया गया था और चंद्रमुखी देवी ने भी कस्तूरबा जी की ही तरह हमेशा अपने पति के सिद्धांतों का अनुसरण किया। इस प्रकार चंद्रमुखी देवी भी ऋषि पत्नी होने का एक प्रादर्श हैं।
0: वकालत करते करते राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का संपर्क महामना मालवीय जी से हुआ। 1914 में मालवीय जी ने राजर्षि को पंजाब के नाभा राज्य के दीवान के पद पर नियुक्ति दिलवाई, लेकिन उसे अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के प्रतिकूल पाकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने जल्द ही उस पद से मुक्ति ले ली।
1: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जन्मजात देशभक्त तो थे ही साथ जन्मजात रूप से अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध निडर होकर खड़े होने वाले योद्धा भी थे। जब वे एक विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी देशभक्ति के चलते कांग्रेस का साथ मिला और वो कांग्रेस के साथ हो लिए।
0: हाँ, तारीख कांग्रेस पार्टी में वे सबसे पहले 1905 में वाराणसी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए और उस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद 1908 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि।

0: वो समय आ चुका था जबकि भारत का इतिहास करवट बदल रहा था। शांतिपूर्वक भारत का शासन भारतीयों को देने के वादे से अंग्रेज सरकार मुकर गई थी। और तो और इससे भी बढ़कर एक जो बहुत ही बुरी बात हुई थी वो ये कि रोलेट एक्ट कानून भी पास कर दिया गया था। क्रांतिकारी कांग्रेस सरकार ने उसे काला कानून नाम दिया और इस कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन छिड़ गया।
1: इसी समय की बात है, देश में जलियांवाला कांड भी हो चुका था। कांग्रेस ने इस क्रूर कांड की जांच समिति बनाई जिसके एक सदस्य पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि भी नियुक्त किए गए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। पुरुषोत्तम दास टंडन भी राजसी आय वाली वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। सारे ठाट बाट छोड़कर उन्होंने अपने परिवार को भी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। वे गांव गांव घूमकर विदेशी कपड़ों की होली जलाते, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते, चरखे का प्रचार, अदालतों का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते और इस तरह आजादी की अलख जगाने में जुट गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1.5 बरस का कारावास हुआ।
0: कितने महान होते थे वो वीर सपूत जो अपनी सारी सुविधाएं भूलकर भारत माता की आजादी के लिए जेल जाने में अपना सुख खोज लेते थे। कितने खुशनसीब थे वो जेल जिनमें ऐसे सपूतों के चरण पड़ते थे।

0: समय धीरे धीरे करवट ले रहा था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए गए थे।
1: इस दौर में पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि की पत्नी चंद्रमुखी जी ने अपने पति को दिए वचन का पालन करने के लिए न किसी की मदद ली और न ही याचना की।
0: जेल से निकलने के बाद लाला लाजपत राय ने उनकी प्रचारक क्षमता को ध्यान में रखते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन को अछूतोद्धार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए उन्हें 500 रुपए मासिक वेतन देने का वायदा भी किया। लाला जी चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ जाए, बस राजर्षि इस बात को भांप गए और मदद न लेने की अपनी नीति के चलते उन्होंने लाला जी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि का मानना था कि देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए।
1: वाह, क्या विचार थे! देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए। हाँ, परंतु लाला जी ने भी हार नहीं मानी होगी, है ना?
0: हाँ, लाला जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। आखिरकार लाला लाजपत राय ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी को लाहौर बुलाकर उनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक के सचिव के पद पर करवा ही दी। यहाँ राजर्षि लाला जी का लिहाज करके काम भी करते रहे, लेकिन 1928 में जब लाला जी इस दुनिया को त्याग कर चले गए, तब पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी अपने पद का त्याग कर दिया और ये नौकरी छोड़ दी। और फिर राजर्षि लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष के रूप में फिर से इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के सहयोग में नमक कानून तोड़ा, जिसके फलस्वरूप वे अंग्रेज शासन द्वारा पुनः जेल भेज दिए गए। 1935 में गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन वापस ले लिया और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट गए।
1: इस दफे पुरुषोत्तम दास टंडन ने किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनकी कोशिशों से इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री वल्लभ भाई पटेल ने की।
0: उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें बतौर स्पीकर चुना, लेकिन 1940 में उन्होंने इस पद को भी त्याग दिया। कांग्रेस ने देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें राजर्षि की सक्रियता को देखकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और 1945 तक वे जेल में ही रहे।
1: कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, उन्हें कांग्रेस ने आर्थिक सहायता भी पहुंचाई, लेकिन राजर्षि की पत्नी ने ये सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया।
0: फिर कांग्रेस की सरकार बनी और 1945 में पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट कर आए और पुनः चुनाव जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन राजर्षि विभाजन के विरुद्ध थे। जब सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एकांत में बैठकर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वो ये विभाजन कभी नहीं चाहते थे।

0: 1950 में भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित समिति में एक सदस्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उन्हीं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1952 में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए और 1955 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया।
1: अंततः एक निरासक्त कर्मयोगी ने 1 जुलाई 1932 में बीमारी के चलते अपनी अंतिम सांस ली। वे एक सिद्ध के आशीर्वाद स्वरूप इस धरती पर जन्मे थे और एक सिद्ध के रूप में ही दूसरों के लिए सोचते करते चिर निद्रा में लीन हुए। एक सिद्ध योगी के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इतिहास में भी अपना नाम सिद्ध पुरुष के रूप में दर्ज करा गए।
0: उन्होंने अपने जीवन में जितने काम किए दूसरों के लिए ही किए। दूसरों की खुशियों, दूसरों के सुख से ही स्वयं सुख की अनुभूति पाने वाले उस कर्मवीर को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। सच्चे शब्दों में सदा उन्हें राजर्षि के रूप में याद किया जाएगा। क्रांति नायक राजर्षि।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी कला प्रेमियों, संगीत साधकों और रसिकों का कला कल्लोनिनी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। आज हमारे शब्दों में ग्वालियर घराने की शुद्धता है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की तपोभूमि की सौंधी खुशबू है और नाट्य संगीत की वो अद्भुत ठसक है जिसे पूरी दुनिया पंडित विनायक राव पटवर्धन के नाम से जानती है।
1: पंडित विनायक राव पटवर्धन भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो स्तंभ जिन्होंने न केवल रागों की शुद्धता को जीवित रखा बल्कि संगीत के शिक्षण को एक संस्थागत रूप देकर घर घर तक पहुंचाया। आज की ये विशेष प्रस्तुति उस महान विभूति की जीवन यात्रा, उनके कड़े रियाज, उनकी गुरु भक्ति और उनकी अमर गाथा को समर्पित है। तो चलिए श्रोताओं, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक में।

0: तारीख 22 जुलाई 1888 और स्थान महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर मिरज। मिरज जो अपनी मिट्टी में ही संगीत की तरंगें समेटे हुए था, जहां के तानपुरे पूरी दुनिया में अपनी गूंज के लिए जाने जाते थे, इसी मिरज के एक बेहद सुसंस्कृत और पारंपरिक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में बाल विनायक का जन्म हुआ।
1: विनायक के पिता और उनके चाचा संगीत के गहरे पारखी थे। विनायक का बचपन जब मिरज की गलियों में बीत रहा था, तो उनके कानों में हर समय तानपुरे का सुर और तबले की थाप गूंजती थी। बचपन से ही इस बालक

0: विनायक की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। अनाथ बालक के सामने जीवन का अंधकार था, लेकिन उनके चाचा नारायण राव ने विनायक को अपनी संतान से बढ़कर पाला। नारायण राव खुद मिरज के प्रसिद्ध गायक पंडित बाल कृष्ण बुवा इचल करंजीकर के शिष्यों के संपर्क में थे। उन्होंने तय किया कि विनायक के जीवन की नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो संगीत है।
1: और तभी मिरज की उस पावन भूमि पर एक युगांतकारी घटना घटी। भारतीय संगीत के पुनरुद्धारक महान संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का मिरज आगमन हुआ। पलुस्कर जी उस समय पूरे भारत में संगीत के प्रचार प्रसार और उसे कुलीन समाज में सम्मान दिलाने के लिए एक महान अभियान पर निकले थे। जब नारायण राव बाल विनायक को लेकर पलुस्कर जी के सामने पहुंचे तो पलुस्कर जी ने बालक के चेहरे के तेज और उसकी सुरीली आवाज को एक ही नजर में पहचान लिया।
0: जी हाँ, पलुस्कर जी ने कहा, ये बालक मुझे सौंप दो, ये संगीत की सेवा करेगा और पूरी दुनिया में ग्वालियर घराने का नाम रोशन करेगा। और इस तरह मात्र 9-10 वर्ष की आयु में विनायक राव पटवर्धन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रथम शिष्यों में शामिल हो गए। ये केवल एक गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत थी।
1: श्रोताओं, उस दौर में गुरु के आश्रम में रहना कोई आसान काम नहीं था। वह महज एक संगीत विद्यालय नहीं बल्कि एक कठोर तपोभूमि थी। विनायक राव को लाहौर के गंधर्व विद्यालय में ले जाया गया, जिसकी स्थापना पलुस्कर जी ने की थी। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, बालक विनायक को अपने गुरु के साथ खरज यानी मंद्र सप्तक का रियाज करने बैठना पड़ता था। ठंड के दिनों में भी ठंडे पानी से स्नान करके सूती कुर्ता पहने तानपुरा लेकर बैठना और लगातार 4 घंटे तक केवल सा का अभ्यास करना, यह थी वो तपस्या जिसने विनायक राव के कंठ को फौलादी और सुरीला बनाया।
0: लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भारतीय संगीत के इतिहास का वो मील का पत्थर था, जहां पहली बार संगीत को किसी बंद कोठरी या राजा के दरबार से निकलकर एक आधुनिक पाठ्यक्रम के तहत ढाला जा रहा था। विनायक राव यहाँ न केवल संगीत सीख रहे थे, बल्कि वो संगीत के प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों को भी आत्मसात कर रहे थे। पलुस्कर जी अपने शिष्यों को केवल गायक नहीं बल्कि संगीत का प्रचारक बनाना चाहते थे।
1: विनायक राव ने अपने गुरु के हर आदेश को शिरोधारी किया। रियाज के साथ साथ आश्रम की सफाई करना, गुरु के कपड़े धोना, भोजन की व्यवस्था करना और गंधर्व महाविद्यालय की पत्रिकाओं के संपादन में हाथ बटाना, विनायक राव हर काम में अव्वल रहते थे। इसी कठिन दिनचर्या ने उनके भीतर विनम्रता और अनुशासन का वो बीज बोया जो जीवन भर उनके साथ रहा। उन्होंने यहाँ रहकर संगीत के साथ साथ संस्कृत साहित्य और कला के सैद्धांतिक पक्षों का भी गहन अध्ययन किया।
0: श्रोताओं, 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र में संगीत नाटक यानी म्यूजिकल थिएटर का दौर अपने चरम पर था। बाल गंधर्व जैसी विभूतियां मंच पर उतरती थीं, तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने का ये सबसे सशक्त माध्यम था। जब विनायक राव पटवर्धन की शिक्षा पूरी हुई तो उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उन्हें एक नया निर्देश दिया। उन्होंने कहा, विनायक जाओ और नाट्य मंच पर शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराओ।
1: और फिर गुरु की आज्ञा पाकर विनायक राव पटवर्धन सुप्रसिद्ध गंधर्व नाटक मंडली में शामिल हो गए। मंच पर उनका आगमन किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। उनकी बुलंदी, साफ और 3 सप्तकों में आसानी से घूमने वाली आवाज ने नाट्य प्रेमियों को दीवाना बना दिया। उन्होंने शाकुंतलम, सौभद्र, मृच्छकटिक और संशय कल्लोल जैसे नाटकों में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जब वे मंच पर गाते थे तो नाट्य गृह का एक एक कोना उनकी आवाज से गूंज उठता था। बिना किसी लाउडस्पीकर या माइक के हॉल के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक उनकी तान का एक एक कण स्पष्ट सुनाई देता था।
0: बिल्कुल सही। श्रोताओं, जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? बाल गंधर्व जैसी महान हस्तियों के साथ मंच साझा करते हुए भी विनायक राव ने कभी अपनी शास्त्रीय शुद्धता से समझौता नहीं किया। वे नाटक के गीतों में भी ग्वालियर घराने की ताने, गमक और मीण का ऐसा बेजोड़ प्रयोग करते थे कि नाटक देखने आए आम लोग भी शास्त्रीय संगीत के रस में सराबोर हो जाते थे। उनके गाए हुए नाट्य गीत आज भी मराठी संस्कृति का अनमोल हिस्सा है।
1: जब बात शास्त्रीय गायन की आती है तो पंडित विनायक राव पटवर्धन का नाम इतिहास में तराना विधा के पर्याय के रूप में दर्ज है। तराना जिसमें शब्दों के बजाय तनों, दरें, दानी, तदिम जैसे निरर्थक लगने वाले बोलों के जरिए राग के पूरे सौंदर्य को एक अत्यंत तेज गति में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी भी गायक के फेफड़ों, उसकी सांस के नियंत्रण और उसकी जीभ की गति की अंतिम परीक्षा होती है।
0: श्रोताओं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मानते थे कि विनायक राव जैसा तराना गायन किसी के बस की बात नहीं है। जब वे अपनी द्रुत लय में तराना शुरू करते थे तो उनकी उंगलियां तानपुरे पर उनके स्वर हवा की गति से मुकाबला करते थे, लेकिन इस गति में भी कहीं कोई कटुता नहीं होती थी। स्वरों का माधुर्य और ग्वालियर घराने की गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। भारत के महान संगीत समीक्षकों ने उन्हें तराना का जादूगर की उपाधि दी।
1: नाट्य मंच पर अपार सफलता, धन और कीर्ति कमाने के बाद भी विनायक राव के मन में एक छटपटाहट थी। उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था और लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भी कई संकटों से गुजर रहा था। विनायक राव को लगा कि उनकी कीर्ति तब तक अधूरी है जब तक वे अपने गुरु के मिशन को आगे नहीं बढ़ाते। सन 1932 में उन्होंने नाट्य दुनिया को अलविदा कह दिया, एक ऐसे समय पर जब वे सफलता के शिखर पर थे।
0: श्रोताओं, ये कितना बड़ा त्याग था। लोग पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं और वहीं विनायक राव पटवर्धन ने पुणे का रुख किया और 8 मई 1932 को पुणे में भारतीय संगीत प्रसारक मंडल के तहत गंधर्व महाविद्यालय की पुनर्स्थापना की। ये कोई व्यवसायिक स्कूल नहीं था, बल्कि संगीत का ऐसा मंदिर था जहां गरीब से गरीब बच्चा भी आकर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकता था।
1: विनायक राव खुद साइकिल चलाकर स्कूल आते थे। वे बच्चों को जमीन पर बैठकर सिखाते थे। उन्होंने संगीत के पाठ्यक्रम को इतना सरल और सुलभ बनाया कि आम परिवारों के बच्चे भी शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने संगीत शिक्षा के लिए राग विज्ञान नामक एक विशाल पुस्तक श्रृंखला लिखी। 7 में प्रकाशित यह ग्रंथ आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों के लिए बाइबल माना जाता है। इसमें उन्होंने रागों के लक्षण, उनकी बंदिशें और उनकी बारीकियों को इतनी सरलता से समझाया है कि कोई भी जिज्ञासु इसे आसानी से समझ सकता है।
0: एक सच्चे गुरु की पहचान उसके अपने गायन से तो होती ही है, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान इस बात से होती है कि उसने समाज को कैसे शिष्य दिए हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन इस मामले में बेहद भाग्यशाली और महान थे। उनके शिष्यों की सूची भारतीय संगीत जगत के दिग्गजों की सूची है। उनके सबसे प्रमुख और लाडले शिष्य थे पंडित डीवी पलुस्कर, यानी दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, जो उनके गुरु पलुस्कर जी के सुपुत्र थे।
1: जी हाँ, जब पलुस्कर जी का अवसान हुआ तो बालक दत्तात्रेय बहुत छोटे थे। विनायक राव ने अपने गुरु पुत्र को अपनी संतान की तरह पाला और उन्हें संगीत की वो बारीकियां सिखाई कि आगे चलकर पंडित डीवी पलुस्कर ने संगीत जगत में एक अमर स्थान बनाया। उनके अलावा पंडित विनायक राव के अन्य महान शिष्यों में पंडित नारायण राव व्यास, उनके बेटे पंडित राव पटवर्धन के साथ ही कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने देश विदेश में ग्वालियर घराने की गायकी को फैलाया।
0: पंडित विनायक राव पटवर्धन केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। आजादी के बाद जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा था, तब भारत सरकार ने पंडित जी को एक सांस्कृतिक दूत के रूप में चुना। सन 1954 में वो एक भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ, पोलैंड और चीन की यात्रा पर गए।
1: सोवियत संघ के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉलों में, जहां पश्चिमी ओपेरा और क्लासिकल संगीत सुनने वाली भीड़ बैठती थी, जब धोती कुर्ता पहने माथे पर तिलक लगाए इस भारतीय मनीषी ने तानपुरा संभाला और अपनी बुलंद आवाज में भारतीय रागों का चमत्कार दिखाया, तो विदेशी समीक्षक अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बिना किसी भारी ऑर्केस्ट्रा के केवल एक कंठ और तीन तारों की झनकार से कैसे पूरे हॉल को सम्मोहित किया जा सकता है। इस तरह विनायक राव ने साबित कर दिया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा सार्वभौमिक है।
0: श्रोताओं, तात्कालीन सोवियत अखबारों और सांस्कृतिक पत्रिकाओं ने लिखा था कि पंडित जी का कंठ नियंत्रण मानव क्षमता से परे प्रतीत होता है। विदेशी मीडिया ने लिखा कि केवल एक तानपुरे और तबले की संगति में एक अकेला गायक पूरे हॉल को अपनी गूंज से भर देता है। उनकी आवाज में वो प्राकृतिक बल है जिसके आगे पश्चिमी ओपेरा गायक भी नतमस्तक हो जाएं। इसके साथ ही विदेशी संगीत पत्रिकाओं ने उनके ताल और लय के साथ खेले जाने वाली चक्करदार तानों की तुलना पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक के जटिल रिदम पैटर्न से की। उनके लय ज्ञान की बहुत प्रशंसा हुई।
1: और हम यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा भी बताना चाहेंगे। हुआ यूं कि कार्यक्रम के बाद जब सोवियत नेता उनसे मिलने पहुंचे, तो उन्होंने अचरज में पंडित जी से पूछा था कि क्या आपने अपने मुंह या गले में कोई यांत्रिकी उपकरण यानी मैकेनिकल डिवाइस छिपा रखा है जो इतनी तेज गति से आवाज निकाल रहा है। और श्रोताओं, 1984 की इस यात्रा की कवरेज करते हुए सोवियत और पूर्वी यूरोपीय समाचार पत्रों ने पंडित विनायक राव पटवर्धन और उनके दल को प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवंत ध्वजवाहक करार दिया। मीडिया का कहना था कि भारत केवल दर्शन और अध्यात्म का देश नहीं है, बल्कि उसके पास संगीत की एक अत्यंत वैज्ञानिक, अनुशासित और समृद्ध परंपरा है।
0: पंडित जी का पूरा जीवन सादगी और उच्च विचारों का एक जीवंत उदाहरण था। अपार धन और सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। पुणे के लोग गवाह हैं कि पंडित जी जीवन के अंतिम पड़ाव तक एक साधारण नागरिक की तरह ही रहते थे। वो कभी किसी तामझाम या अहंकार में नहीं रहे। उनके घर का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहता था जो संगीत सीखने का इच्छुक हो।
1: और उनकी वैचारिक दृढ़ता ऐसी थी कि उन्होंने संगीत के व्यवसायीकरण का हमेशा विरोध किया। वे मानते थे कि संगीत एक विद्या है, कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार में बेचा जाए। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय के जरिए जो भी कमाया, उसे वापस संगीत के विकास और गरीब छात्रों की फेलोशिप में लगा दिया। उनकी इसी निष्काम सेवा के कारण उन्हें संगीत जगत में एक संत का दर्जा प्राप्त था।
0: दोस्तों, पंडित जी को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों और अलंकरणों से विभूषित किया गया। उसमें से यदि हम प्रमुख सम्मानों की बात करें तो 1964 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 1962 में हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी से, 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य, 1972 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया।
1: दोस्तों, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने अपने जीवन काल में रंगमंच, संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी पर कई ऐतिहासिक प्रस्तुतियां दी। गंधर्व नाटक मंडली के दिनों में उन्होंने बाल गंधर्व के साथ शाकुंतलम, सौभद्र, संशय कल्लोल और मृचकटिक जैसे ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और साथ में गाया।
0: 1930 से 1950 के दशकों में पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास की जोड़ी शास्त्रीय संगीत सम्मेलनों में बहुत प्रसिद्ध थी। दोनों गुरु भाई मिलकर जब ग्वालियर घराने की बंदिशें और तराना गाते थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के ऐतिहासिक आर्काइव में मौजूद सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान और तबला वादक पंडित प्रेम वल्लभ जैसे दिग्गज संगीत दाताओं के साथ राग केदार, राग मालगुंजी, राग नायकी कान्हड़ा जैसी कालजयी रिकॉर्डिंग्स आज भी संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर हैं। लेकिन श्रोताओं, समय की गति अबाध है। जो सुर उसे एक दिन अनंत के मौन में विलीन होना ही था, 23 अगस्त 1975 का वो दिन भारतीय संगीत इतिहास के लिए एक गहरा शोक लेकर आया। 77 वर्ष की आयु में सुरों के इस महान शिल्पी, गंधर्व महाविद्यालय के इस अथक सारथी ने पुणे में अपनी अंतिम सांस ली।
1: विनायक राव पटवर्धन जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में एक ऐसा सम्मानित स्थान था कि उनके समकालीन दिग्गज, उनके शिष्य और समकालीन संगीतकारों और दिग्गज संगीताचार्य उनका नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर से लेते थे। ग्वालियर घराने की शुद्धता और गंधर्व महाविद्यालय के जरिए संगीत सेवा के लिए महान कलाकारों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, अब हम आपको ये बताते हैं। मराठी नाट्य संगीत के महान ध्वजवाहक बाल गंधर्व का कहना था कि जब विनायक राव मंच पर गाते हैं तो वे केवल अभिनय या गाना नहीं गाते, बल्कि पूरे नाट्य गृह को शास्त्रीय संगीत की पवित्रता से भर देते हैं। उनकी आवाज को किसी बनावटी साधन की जरूरत नहीं, वह सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं।
0: और बाल गंधर्व जी, जिनके साथ विनायक राव जी ने गंधर्व नाटक मंडली में वर्षों काम किया, पटवर्धन जी की इस बात के मुरीद थे कि उन्होंने व्यवसायिक नाट्य मंच पर रहते हुए भी कभी अपने शास्त्रीय संगीत की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया। और भारतीय संगीत के महान गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि विनायक राव जी की आवाज में पहाड़ जैसी स्थिरता और बहती नदी जैसी शुद्धता है। तराना और द्रुत लय की गायकी पर उनका जो अधिकार है, वैसा हमारी पीढ़ी में किसी अन्य कलाकार के लिए हासिल करना असंभव है।
1: श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के वरिष्ठ गुरु भाइयों के रूप में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन जी ने देश भर में संगीत का प्रचार किया। ओंकारनाथ जी उनकी बेजोड़ लयकारी और तान की सटीकता की हमेशा सराहना करते थे और उनके शिष्य एवं गुरु पुत्र पंडित डीवी पुलस्कर तो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे कहते थे कि आज संगीत जगत में मैं जो कुछ भी हूं, उसका सारा श्रेय पंडित विनायक राव पटवर्धन जी को जाता है। मेरे पूज्य पिता के जाने के बाद उन्होंने न केवल मुझे संगीत सिखाया, बल्कि एक पिता की तरह मेरा पालन पोषण भी किया। उनके जाने से ग्वालियर घराने का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या पंडित विनायक राव पटवर्धन सचमुच चले गए? नहीं, जब तक इस देश में गंधर्व महाविद्यालय की किसी शाखा में कोई छोटा बच्चा अपना पहला सा साधेगा, जब तक राग विज्ञान के पन्नों को पलटकर कोई शोधकर्ता किसी बंदिश की तान को सुधारेगा, और जब भी भारतीय संगीत के इतिहास में तराना विधा की बात चलेगी, पंडित विनायक राव पटवर्धन अपने शुद्ध स्वरों और अपनी अमर विरासत के साथ हमारे बीच जीवित रहेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, सुर कभी मरते नहीं, वो केवल अपना माध्यम बदल लेते हैं। श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष एपिसोड को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के अनमोल पन्नों के साथ। लेकिन इस कार्यक्रम के समापन से पहले हम अपने उन सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन और प्रयास से ये कड़ियां आप तक पहुंच रही हैं।
1: इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और श्रोताओं मैं था आपके साथ दानिश
0: और मैं थी मनीषा।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।
2: कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, जन्मों के रिश्ते और भरोसे का प्यार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र बंधन है राखी, भाई से बहन की रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत ये धागा है राखी, जात पात और भेदभाव से दूर है राखी, भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि विवेकानंद कन्याकुमारी, रामेश्वरम आदि स्थानों की यात्रा करके मद्रास गए थे। वहां श्री सुंदर राम के घर पर ठहरे थे। उन्होंने स्वामी जी को कई संभ्रांत लोगों से मिलवाया था। मद्रास पहुंचने के थोड़े ही दिनों बाद स्वामी जी की विद्वत्ता और प्रतिभा की ख्याति शिक्षित समाज की चर्चा का विषय बन गई। थोड़े दिनों बाद वे मन्मथ बाबू के पास रहने चले गए। मन्मथ बाबू का घर शीघ्र ही धर्म चर्चा का एक केंद्र बन गया।
1: ये जानकर कि विश्वविद्यालय के सर्वोच्च उपाधिधारी युवकगण स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, मद्रास नगर के सुप्रसिद्ध नास्तिक क्रिश्चियन कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक श्री सिंगरावेलु मुदलियार अपने हंसी रोक न सके और एक दिन दल बल के साथ उन्होंने स्वामी जी को तर्क युद्ध में आह्वान किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वामी जी किसी भी तरह युक्तियों का खंडन नहीं कर सकेंगे, परंतु थोड़े ही समय में वे चुप होने के लिए बाध्य हो गए और उनके अनुगत भक्त हो गए।
0: स्वामी जी उन्हें विशेष स्नेह करते थे और उनका नाम किड़ी यानी बालक रखा था। वे किड़ी से मजाक करते हुए कहते,
2: जूलियस सीजर ने कहा था, विनी वीसी वीडी, यानी मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया, किंतु यहाँ तो किड़ी आया, उसने देखा और वो पराजित हो गया।
1: कुछ काल के उपरांत किड़ी ने स्वामी जी के कार्य के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था तथा बाद में स्वामी जी की इच्छा अनुसार मद्रास में जब प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका प्रकाशित हुई तब वे उसके अवैतनिक व्यवस्थापक हुए थे। इसके उपरांत वे संसार त्याग कर तपस्या में लीन हुए और साधु के रूप में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया।
0: मद्रास के एक युवक श्री वी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा है,
3: हम लोग मजाक करने के लिए अपने कुछ सहपाठी युवकों को साथ लेकर भट्टाचार्य महोदय के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि स्वामी जी हुक्का पी रहे हैं, जैसे किसी गहन चिंतन में लीन हो। मैं उन दिनों क्रिश्चियन कॉलेज का छात्र था और ईसाई धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा रखता था, यहां तक कि हम एक बार धर्म ग्रहण करने के इच्छुक भी हो गए थे। स्वामी जी के पास आने के पहले ही हम लोगों ने अनेक सवाल तय कर लिए थे और इन सवालों के पक्ष और विपक्ष में जो कुछ कहना संभव हो सकता है वो सब सोच रखा था, ताकि अचानक हारना ना पड़े। स्वामी जी को उस रूप में देखकर हम संकोच में पड़े थे। तभी एक युवक अपेक्षाकृत साहस दिखाकर पूछ बैठा, महाशय, भगवान किसे कहते हैं? स्वामी जी मानो कुछ सुन नहीं पाए, पूर्ववत अपने ही धुन में हुक्का पीते रहे। फिर मानो उत्तर देने के लिए आंखें खोल कर कहा,
2: अच्छा बच्चा, बता सकते हो कि ऊर्जा या शक्ति क्या है? चुप क्यों हूं? ये कैसी बात है? तुम लोग जिस शक्ति शब्द का जीवन में प्रतिक्षण व्यवहार करते हो, उस साधारण शब्द तक की परिभाषा नहीं बता सकते, परंतु मुझे भगवान की परिभाषा बताने कहते हो।
0: उन लोगों ने और भी बहुत से प्रश्न किए थे, किंतु स्वामी जी ने उन लोगों को निरुत्तर कर दिया। अंत में सबके चले जाने पर भी अय्यर महाशय स्वामी जी की कथावार्ता से मुग्ध हो बैठे रहे और स्वामी जी जब समुद्र तट पर संध्या भ्रमण के लिए बाहर निकले तब अय्यर भी उनके साथ चले। हठात स्वामी जी ने अय्यर से पूछा,
2: क्या तुम कुश्ती लड़ना जानते हो?
3: जी, कुश्ती?
2: हाँ हाँ, कुश्ती जानते हो?
3: जी, थोड़ा बहुत।
2: तो चलो आओ, थोड़ा लड़ा जाए।
0: दोनों समुद्र तट पर रेत में ही कुश्ती लड़ने लगे। स्वामी जी के व्यायाम कौशल और मांसपेशियों की मजबूती देखकर अय्यर आश्चर्यचकित हो गए और बाद में स्वामी जी का नाम रखा पहलवान स्वामी।
1: स्वामी जी ने एक बार गौर किया कि मैसूर के महाराजा ने उन्हें जो हुक्का दिया था उसे भट्टाचार्य महाशय का रसोईया बड़ी ही ललचाई नजरों से देख रहा है। उन्होंने तुरंत उससे पूछा,
2: इधर आओ, तुम्हें ये हुक्का पसंद है?
4: जी हाँ, बहुत अच्छा है।
2: तुम्हें चाहिए?
4: जी, हम गरीब लोग हैं, ये तो बहुत महंगा होगा।
2: तो क्या हुआ, ये लो, इसे रख लो।
4: अरे, पर ये तो आपकी बहुत पसंद की चीज है।
2: हाँ, है तो पसंद की चीज, पर तुम्हें भी तो पसंद है ना? लो, रख लो इसे।
1: रसोईया अभिभूत हो गया। ऐसे ही थे स्वामी जी, अगर कोई उनकी किसी चीज की तारीफ करता तो वे उसे तुरंत ही वो चीज दे देते।
0: एक बार की घटना है, स्वामी जी को भूतों ने घेर लिया था। कैसे छूटे तो सुनिए। मद्रास प्रवास में उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेतात्माओं के उत्पात का अनुभव किया। वे उन्हें तरह तरह की उल्टी सीधी सूचनाएं देते और स्वामी जी परेशान हो जाते। थोड़े दिन तो वे उत्पात सहते रहे, फिर रौद्र रूप धारण कर बोले,
2: देखो तुम लोग अब इस दुनिया में नहीं हो, अपने प्रेत लोक में जाकर क्यों नहीं रहते? यहां का मोह क्या अब तक नहीं छूटा? चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अपनी तपस्या के बल से मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोगों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
0: भूतों ने उन्हें बताया कि वे बड़े कष्ट में हैं, स्वामी जी उनका उद्धार करें। स्वामी जी सोच विचार कर समुद्र तट पर गए और तिल चावल की जगह मुट्ठी में रेत भर भर कर पिंडदान किया और तब से भूतों का उत्पात भी रुक गया।
1: ऐसा ही एक और अनुभव उन्हें हुआ था, पर उसका नतीजा अच्छा ही हुआ था। मद्रास में मन्नाथ बाबू के घर पर रहते समय स्वामी जी ने सपने में देखा कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। वे सुबह जागकर व्यथित हो गए। मन्नाथ बाबू ने समाचार जाने के लिए कलकत्ते में तार भेजा। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि पास ही एक पिशाच सिद्ध व्यक्ति रहता है, वो गणना करके भूत भविष्य की बातें बता सकता है। लोगों के बार बार कहने पर स्वामी जी वहां जाने के लिए राजी हो गए। उनके साथ मन्मथ बाबू, आला सिंगा और इंडिया बैंक के मैनेजर श्री बालाजी राव भी चल पड़े। वो स्थान शमशान के पास था। एक काला कलूटा विशालकाय व्यक्ति को यज्ञ कर रहा था। उस व्यक्ति के साथियों ने उस तांत्रिक पिशाच सिद्ध से उन लोगों का परिचय करवाया। पहले तो उसने ज्यादा आग्रह नहीं दिखाया। जब स्वामी जी लौटने के लिए मुड़े तो उसने उन्हें रोका, इशारे से बैठने को कहा और लकड़ी से जमीन पर कुछ रेखाएं खींच दी। फिर उसने स्वामी जी के पुरखों के नाम बताए, उनके बीते दिनों की बातें बताई और फिर कहा कि उनकी माँ स्वस्थ हैं, ठीक हैं। घबराने की जरूरत नहीं, विदेश यात्रा की बात भी उसने कही थी। सभी लोग निश्चित होकर लौट आए। तार का जवाब भी आ गया था, माँ ठीक थी। इस पिशाच सिद्ध व्यक्ति का नाम था गोविंद चेट्टी। कहते हैं अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी जी की मुलाकात उनसे फिर कुंभकोणम में हुई थी। स्वामी जी ने उसका आलिंगन किया था। स्वामी जी के प्रभाव से उसने तंत्र विद्या छोड़ दी थी।
0: मद्रास में स्वामी जी का प्रभाव किस प्रकार फैल रहा था, इसे बताने के लिए श्री के व्यास राव ने उन दिनों की बातों को याद कर लिखा था।
4: उन सन्यासी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया था। उनका मस्तक मुंडित था, अत्यंत सुंदर रूप था, परिधान में गेरुआ वस्त्र था। वे अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते थे। विरोधी की बातों का जवाब देने की अतुल्य क्षमता रखते थे। मुक्त कंठ से सुललित स्वर में जब गाना शुरू करते थे तब लगता था मानो विश्वात्मा के साथ वे एक हो चले हैं।
1: वे स्वस्थ एवं दीर्घदेही थे, रसिक थे। वे सिद्धाई के प्रदर्शन से घृणा करते थे, सुस्वादु भोजन से आनंदित होते थे। हुक्के के प्रति और तमाकू सेवन में उन्हें विशेष प्रीति थी, तथापि ऐसी सरलता से वैराग्य की बातें करते कि लोग मुग्ध हो जाते थे। कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी, लाठी भांजना उन्हें खूब अच्छे से आता था। बात बात में हंसी मजाक करते थे, पर इन सबसे ऊपर था उनका विशुद्ध देश प्रेम। यही गुण सबको मोह लेता था।
0: जिन युवक ने सांसारिक समस्त संबंधों को तोड़ दिया था एवं बंधन मुक्त हो गए थे, उनकी एकमात्र प्रेम की वस्तु थी स्वदेश, और एकमात्र विषाद का कारण था उसी स्वदेश का पतन। व्यास राव जी और भी लिखते हैं कि
4: इन विषयों में चिंता मग्न होकर वे ऐसी बातें कहते जिनसे श्रोतागण मंत्र मुग्धवत बैठे रहते। हुगली नदी से ताम्रपर्णी नदी तक का पर्यटन करने वाले स्वामी जी का यही स्वरूप था। वे मुक्त कंठ से हम युवक वर्ग की कायरता पर दुख व्यक्त करते तथा उसकी निंदा करते। उनकी वाणी फौलाद की भांति राह चीर कर चलती। वे सबके प्राणों में उत्साह का संचार करते। अनेकों लोगों के हृदय में विश्वास का दीप उन्होंने प्रज्वलित कर दिया था।
1: कई विद्वानों के लिखे हुए संस्मरण हमें प्राप्त हुए हैं। स्वामी जी भारतीय दर्शन, योग और संस्कृति के मूर्त विग्रह थे। उनके विचारों में पश्चिमी दर्शन और वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी जगह बनाई थी। अपने पांडित्य के लिए विख्यात कुछ व्यक्तियों ने उस समय उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात लिखा था,
3: स्वामी जी के मन तथा ज्ञान का प्रसार देखकर मैं स्तंभित और विमोहित हो गया। ऋग्वेद से रघुवंश तक, वेदांत के दार्शनिक चिंतन से आधुनिक कांट और हीगेल तक, प्राचीन और आधुनिक हर प्रकार का साहित्य, कला, संगीत, नीतिवाद एवं प्राचीन योग शास्त्र की सूक्ष्मता से आधुनिक प्रयोगशाला के जटिल विषयों तक, सभी विषय जैसे उनकी दृष्टि के सामने स्पष्ट थे। इसी ने मुझे चमत्कृत कर दिया था और मुझे उनका दास बना दिया था।
2: उन्हें अक्सर प्रश्नकर्ता के स्तर पर उतरकर उसी की भाषा में अपने उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को व्यक्त करना पड़ता था, जैसे पहले से ही प्रश्नकर्ता के प्रश्नों को जानते हों और इस तरह उसका जवाब देते कि दूसरा प्रश्न किए बिना ही प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा शांत हो जाती। यदि कोई ये जानना चाहता कि वे कैसे पहले से ही प्रश्न जान जाते हैं, तब वे मुस्कुराते हुए उत्तर देते, सन्यासी मनुष्य के मन के चिकित्सक होते हैं, इसीलिए दवा देने के पहले ही रोग का पता कर लेते हैं। किसी किसी मौके पर अनेक व्यक्तियों के विचार एक साथ ही उनके मन में कौंध जाते, वे एक साथ ही अनेक समस्याओं का समाधान कर जिज्ञासुओं को संतुष्ट कर देते। जिन लोगों के प्रति वे खुश थे, उन लोगों के प्रति उनका व्यवहार कोमल तथा प्यार भरा होता, पर दूसरों के लिए उनके समीप रहना मानो खतरनाक विस्फोटक पदार्थ के पास रहने के समान था। जिस क्षण किसी के मन में कुविचार उठता, उसकी भनक मानो उनके मन में हो जाती थी, और उस समय उनके ओंठों पर जो मृदु हंसी होती और बातों के क्रम में जो दो चार शब्द उनके श्रीमुख से निकल पड़ते, उससे ही उस व्यक्ति को जान पड़ता कि स्वामी जी को मालूम पड़ गया है।
0: मद्रास में स्वामी जी 3 सप्ताह ठहरे थे। उन दिनों वे बार बार विदेश यात्रा की बातें करते थे। भक्तगण उनकी मंशा जानकर 500 रुपए इकट्ठा कर लाए, किंतु रुपयों को देखकर स्वामी जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा,
2: ये धन तो विदेश यात्रा के लिए नगण्य है, किंतु विदेश यात्रा यदि विधाता की ही इच्छा है तो फिर आयोजन ऐसा तुच्छ क्यों? भक्तों का प्रयास इस प्रकार असफल क्यों? कहीं मैं अपनी इच्छा से तो नहीं चल रहा हूं? उत्साह से भरकर अपने को बहा तो नहीं दे रहा हूं? जिस प्रकार सोच रहा हूं और जैसी परिकल्पना कर रहा हूं, इसके भीतर कोई सच्चाई है या नहीं? मां, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? मां, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो, कहो मां, कहो।
1: उन्होंने भक्तों को बुलाकर कहा,
2: बच्चों, मैं मां की इच्छा उनसे ही जान लेना चाहता हूं, पर यह तो अंधकार में कूदकर गिरने के अलावा और कुछ नहीं है। अतएव मां को प्रमाण देना होगा कि ये उन्हीं की इच्छा है। यदि ये उनकी इच्छा है तो धन अपने आप आ जाएगा। अतः ये रुपए ले जाओ और गरीबों में बांट दो।
0: शिष्यों ने उनका आदेश सुनकर अवाक होने पर भी उसका पालन किया और स्वामी जी ने अनुभव किया मानो उनके कंधे से एक बोझ उतर गया। उनका इस समय का मनोभाव हैदराबाद से अपने शिष्य आलासिंगा को लिखित एक पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। पत्र से ज्ञात होता है कि वे अमेरिका जाने के लिए उत्सुक थे, पर घटना चक्र से जाने की व्यवस्था न होने के कारण उसे भगवान का विधान समझकर किसी को दोष नहीं देना चाहा। पत्र का अंश इस प्रकार है,
2: अत्यंत दुख के साथ तुम्हें ये सूचित कर रहा हूं कि इस समय मेरे लिए पुनः राजपुताना लौटना संभव नहीं है। अभी से यहां अत्यंत गर्मी पड़ रही है, पता नहीं राजपुताने में और भी कितनी भीषण गर्मी होगी, और मैं गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। अतः इसके बाद यहां से मुझे बंगलोर जाना पड़ेगा, और ऊटक मंड जाकर मुझे गर्मी बिताना है। गर्मी में मानो मेरा दिमाग खोल जाता है। अतः मेरी सारी योजना काफूर हो गई और इसलिए मैं पहले ही मद्रास से जल्दी चल देने के लिए व्यग्र था। तब मुझे अमेरिका भेजने के लिए उत्तरी भारत के किसी राजा का सहयोग प्राप्त करने के लिए महीनों का समय मिल जाता, किंतु क्या करूं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। पहले तो ऐसी गर्मी में कहीं दौड़ धूप न कर सकूंगा। ऐसा करने से मुझे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा और दूसरे राजपुताने के मेरे घनिष्ठ मित्र मुझे पाकर अपने पास से हिलने न देंगे और मुझे वे पश्चिम देश में जाने भी न देंगे। अतः अपने मित्रों से न मिलकर उसी नए व्यक्ति का आश्रय लेने का मेरा विचार था, परंतु मद्रास में विलंब हो जाने के कारण मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। अत्यंत दुख के साथ अब उस प्रयास को त्याग देना पड़ा। ईश्वर की जो इच्छा हो वही पूर्ण हो, किंतु तुम प्रायः निश्चित समझो कि मैं जल्दी ही दो एक दिन के लिए मद्रास आकर तुम लोगों से मिलने के बाद बंगलोर और फिर वहां से ऊटक मंड जाऊंगा। देखूं यदि मैसूर के महाराजा मुझे भेज दें।
1: बातों बातों में हम लोग हैदराबाद आ गए हैं, पर अभी मद्रास का विवरण खत्म नहीं हुआ। धन संग्रह की चेष्टा विफल होने पर स्वामी जी ने पुनः धर्म चर्चा में मन लगाया। स्वदेश प्रेमी सन्यासी उन दिनों मानो असहाय बालक की तरह माँ की पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें मालूम था माँ की जो इच्छा होगी वही होगा, उनके आदेश के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता।
0: मद्रास के भक्तों से स्वामी जी के गुणों का समाचार पाकर हैदराबाद के लोग उन्हें अपने बीच पाने के लिए उत्सुक हो उठे। ये आमंत्रण स्वामी जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया। श्री मन्मथ भट्टाचार्य ने निजाम राज्य के अधीक्षक अभियंता अपने मित्र श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय को तार द्वारा सूचित किया कि स्वामी जी 10 फरवरी को हैदराबाद पहुंचकर उनके अतिथि होंगे। संवाद प्रचारित होते ही लोग उत्साह से भर गए। स्वामी जी हैदराबाद स्टेशन पर उनके स्वागतार्थ मौजूद लगभग 500 लोगों की भीड़ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। स्टेशन जयकारे से गूंज उठा।
1: इन लोगों में थे राजा बहादुर श्रीनिवास राव, महाराजा बहादुर रंभा राव, पंडित रतनलाल, कैप्टन रघुनाथ, शमसुल उलेमा, सैयद अली बिलग्रामी, नवाज बहादुर इमाद, नवाज जंग, नवाब बहादुर सिकंदर नवाज जंग, मिस्टर एच दोराबजी, मिस्टर एम एस मांडन, राय हुकुमचंद, सेठ चतुर्भुज, सेठ मतिलाल एवं श्री मधुसूदन चट्टोपाध्याय तथा उनके पुत्र श्री कालीचरण बाबू, जो स्वामी जी को उनके कलकत्ता रहने के समय से ही पहचानते थे, अतः उन्होंने ही आगे बढ़कर सबसे उनका परिचय करा दिया। फिर स्वामी जी को पुष्पमालाओं से लाद दिया गया। उस दिन वहां उपस्थित एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा था,
5: स्वामी जी उस समय एक परम बलिष्ठ युवक परम हंस की वेशभूषा में हाथ में कमंडल धारण किए हुए प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतरे। उन्हें मधुसूदन बाबू के बंगले में ले जाया गया और अनेक संभ्रांत नागरिक उनके साथ साथ वहां गए। जो लोग स्टेशन नहीं जा सके थे वे बंगले में उनका दर्शन करने आए। निश्चित ही हम लोगों ने हैदराबाद में किसी सन्यासी का स्वागत करने उमड़ी ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक भव्य स्वागत समारोह था, बिल्कुल एक प्रतापी राजकुमार के उपयुक्त।
0: 11 फरवरी के प्रातःकाल सिकंदराबाद के लगभग 100 लोग फल मिठाई और दूध लेकर उनके समीप उपस्थित हुए और वहां के महबूब महाविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए उनसे अनुरोध किया। स्वामी जी 13 फरवरी को व्याख्यान देने को राजी हुए। उसके बाद वे कालीचरण बाबू के साथ गाड़ी पर गोलकुंडा का इतिहास प्रसिद्ध किला देखने गए। अपने निवास स्थान में लौटकर उन्होंने देखा कि हैदराबाद के महाराजा के साले नवाब बहादुर सर खुर्शीद जाह अमीरी ई कबीर KCSI के प्राइवेट सेक्रेटरी ने अपने एक नौकर को पत्र के साथ उनके पास भेजा है। इस पत्र में ये अनुरोध किया गया है कि वे दूसरे दिन प्रातःकाल राजप्रसाद में आने की कृपा करें। यथा समय कालीचरण बाबू के साथ वहां पहुंचने पर नवाब बहादुर के एड डी कैंप ने उनका स्वागत किया। नवाब खुर्शीद जाह धर्म के संबंध में अत्यंत उदारवादी थे तथा वे हिमालय से कन्याकुमारी तक हिंदुओं के सभी प्रमुख तीर्थों का श्रद्धापूर्ण हृदय से दर्शन कराए थे। उन्होंने स्वामी जी का आदर पूर्वक स्वागत किया। उन लोगों में 2 घंटों तक हुई बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्मों के सार तत्व के संबंध में गंभीर चर्चा की। नवाब बहादुर हिंदुओं की साकार उपासना के विरोधी और एक पक्के मुस्लिम की तरह निराकार उपासना के पक्षधर थे। स्वामी जी ने इस विरोध के समाधान की भी चेष्टा की।
1: नवाब के साथ स्वामी जी की घंटों चर्चा हुई। नवाब बहादुर उनकी विद्वता देख मुग्ध हो गए। विचारों के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर स्वामी जी ने नवाब के मन में ये विश्वास उत्पन्न किया,
2: मनुष्य में भगवत बुद्धि आदि जो कुछ आध्यात्मिक विश्वास देखे जाते हैं वे सब मानव प्रकृति के गहनतम प्रदेश के सत्य के साक्षात्कार के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। सभी आदर्श सत्य हैं और विभिन्न धर्म उन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के उपायों के अलावा और कुछ नहीं है, और इनमें से किसी भी एक मार्ग का मन से अनुसरण करने पर मनुष्य में छुपा देवत्व निश्चित ही प्रकाशित होगा। ईश्वर द्वारा रचित सभी जीवों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अध्यात्म से प्रभावित मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ही संसार के सारे उच्च तत्वों का आविष्कार हुआ है तथा उसके सहारे ही मनुष्य अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देवत्व में प्रतिष्ठित हुआ है।
1: अंत में उन्होंने पाश्चात्य देश जाकर सनातन धर्म के प्रचार की अभिलाषा व्यक्त की। नवाब बहादुर ने उनकी वाग्मिता और कथनों से मुग्ध होकर कहा था,
6: स्वामी जी आपके इस प्रयत्न के लिए मैं 1,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ।
0: पर स्वामी जी ने पैसे नहीं लिए, कहा कि यात्रा की सारी प्रस्तुति हो जाने पर ले लेंगे।
1: इसके बाद 12 फरवरी को उन्होंने हैदराबाद के कई दर्शनीय स्थानों मक्का मस्जिद, चार मीनार, फलकनामा, बशीर बाग, निजाम के राजमहल और अन्य अनेक दर्शनीय महलों आदि का दर्शन किया। 13 फरवरी सुबह उन्होंने तय व्यवस्था के अनुसार हैदराबाद के प्रधानमंत्री सर आसमान जाह, KCSI, राज्य के पेशाकार महाराज नरेंद्र कृष्ण बहादुर एवं महाराजा शिवराज बहादुर से मुलाकात की। इनमें से प्रत्येक ने उनके अमेरिका में प्रचार के लिए सहायता प्रदान करने का वचन दिया। शाम को महबूब महाविद्यालय में मेरी पाश्चात्य यात्रा का उद्देश्य विषय पर उनका व्याख्यान हुआ। पंडित रतनलाल ने उस सभा की अध्यक्षता की। अनेक यूरोप वासियों के साथ 1,000 से अधिक श्रोता सभा में उपस्थित थे। अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़, उनका ज्ञान, शब्द विन्यास का माधुर्य और भाव भंगिमा देखकर सब के सब प्रभावित हो गए।
0: दूसरे दिन बेगम बाजार के व्यापारियों ने सेठ मोतीलाल के नेतृत्व में उनसे साक्षात्कार किया और कहा वे उनकी सहायता करने को तैयार हैं। स्थानीय थियोसोफिकल सोसाइटी एवं संस्कृत धर्म मंडल सभा के कोई कोई सदस्य भी मिलने आए। 15 फरवरी को पुणे से उनके नाम एक तार आया। उस तार के द्वारा पुणे की विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें वहां आने का अनुरोध किया था। उत्तर में स्वामी जी ने सूचित कर दिया कि उनके लिए तत्काल जाना संभव नहीं होगा, भविष्य में वे आने का प्रयास करेंगे।
1: 16 फरवरी को स्वामी जी ने मंदिरों के खंडहरों, बाबा सरफुद्दीन का मजार और सर सालार जंग के महल को देखा। 17 फरवरी को मद्रास से लौटते समय रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। श्री कालीचरण बाबू ने लिखा है, उनकी पवित्र सरलता, सतत आत्मसंयम एवं गहन भाव ने हैदराबाद वासियों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दी थी और उसके बाद वे मद्रास चले गए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हार

राखी भाई की कलाई पर चमकता नूर है राखी, बचपन की यादों का संसार है राखी, हर घर में खुशियों का त्योहार है राखी, दिल का सुकून और मीठा सा जज्बात है राखी, शब्दों की नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी, पवित्र दिलों की बात है राखी। आप सबको रेडियो आजाद हिंद की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।